सुप्रभात। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा, कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम

0: 7 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हम बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: प्रकृति का कुछ ऐसा विधान है कि उत्थान के साथ पतन स्वाभाविक है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए परिश्रम, लगन, संयम, उत्साह और निष्ठा की आवश्यकता होती है, जबकि पतन भी स्वयं अपने साधन खोज लेता है, जैसे कुसंगति और गलत साहित्य। अतः हमें गलत संगति और गलत साहित्य से बचना चाहिए। मन गतिशील है और चंचल भी। मन की गति को सबसे तेज चलने वाला कहा गया है और मन वो पानी को एक तरह से देखा गया है। इसलिए हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि पतन की स्थिति को हावी नहीं होने देंगे। ये तभी संभव हो सकता है जब आपके संकल्प में शक्ति हो। ये शक्ति लगातार संकल्प से आती है। वर्तमान में जिधर देखें, लोग बुराई को ही भलाई कहते हैं और गलत कार्यों की तरफ उनका मनन और चिंतन चल रहा है। इस कारण व्यक्ति के चरित्र में गिरावट आ रही है। अगर इस वातावरण से ऊपर उठना है तो हम सबको संयम के साथ संकल्प लेना होगा। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक, आर्थिक हो या राजनीतिक, विकास हेतु संकल्प की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटे सफलता बिना परिश्रम संभव नहीं। पत्थर को ऊपर फेंकने में हमें मेहनत करनी होती है, जबकि नीचे फेंकने में कोई खास श्रम नहीं लगता। व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से जो इच्छा करता है उसे प्राप्त कर लेता है, जिसका आधार परिश्रम है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारतीय इतिहास साक्षी है कि जितने भी सफल आविष्कारक, योग्य चिंतक, श्रेष्ठ विचारक हुए हैं, सभी के पीछे संकल्प और परिश्रम की भूमिका है। हमारे संतों, ऋषि मुनियों ने भी मन को मजबूत बनाने की बात कही है, क्योंकि मन बलवान होगा तो विचार उज्जवल होंगे, संकल्प शक्ति बढ़ेगी। शास्त्रों में भी संकल्प शक्ति का प्रभाव बताया गया है। संकल्प शक्ति सर्वोपरि शक्ति है, इसी से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। संकल्प शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अतः प्रत्येक सफलता की कुंजी है संकल्प शक्ति और परिश्रम। इनके अभाव में संसार की गति रुक जाएगी और व्यक्ति उत्थान के स्थान पर पतन के अथाह सागर में डूब जाएगा। संकल्प शक्ति से मनुष्य के हर उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है और मनुष्य प्रगति के शिखर पर पहुंच सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अब श्रोताओं, समय हो चला है भक्ति संगीत से रचा कार्यक्रम वंदना का। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं समूह स्वर में गाए इस मात्र वंदना के साथ।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृ वंदना। आरंभ हो तुम, अंत हो तुम, कर्ता हो तुम, विघ्नहर्ता हो तुम, पालनहारी हो तुम, गजमुखधारी हो तुम, आदि हो तुम, अनंत हो तुम। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर यूं ही बने रहे। हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में ना आए कोई कम। आइए इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं ये गणेश चालीसा अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

प्रसन्नता का सबसे सरल मार्ग समर्पण है। जब हम अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो चिंता का स्थान विश्वास ले लेता है और मन शांत हो जाता है, तनिक भी विचलित नहीं होता और जीवन के हर कांटे फूल बन जाते हैं।

भगवान शिव जी की महिमा अपरंपार है। जो मनुष्य शिव जी की शरण में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, वह मनुष्य सभी कष्ट और बाधाओं से परे हो जाता है। शिव जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि काल भी टल जाता है।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से रचा कार्यक्रम वंदना। अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में मोहम्मद रफी के स्वर में ये नात।

श्रोताओं, इसी के साथ ये वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अब लीजिए, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

पक्षराज गरुड़ को श्रीराम की महिमा सुनाते हुए काकभुशुंडी वो प्रसंग छेड़ देते हैं जब स्वयं उनके अपने मन में संशय उत्पन्न हुआ था। प्रभु की ये बाण अर्थात अभिलक्षण है कि वे अपने भक्त के मन में अभिमान नहीं पनपने देते और यदि ऐसा होता देखते हैं तो वैसा ही उपचार करते हैं जैसे एक माता अपने शिशु की पीड़ा की परवाह न करते हुए उसका घाव चिरवा देती है। काकभुशुंडी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब जब प्रभु मनुष्य रूप धारण करते हैं तब तब वे अवधपुरी जाते हैं। वहां श्रीराम जन्मोत्सव देखते हैं और 5 वर्षों तक वहां निवास करके श्रीराम की बाल लीलाएं देखने का आनंद प्राप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:50 हो चुके हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि 10 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे खेल पत्रिका कार्यक्रम। रात 10:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा आपकी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा रात 9:30 पर। स्पॉटलाइट ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:15 पर। रात 8:30 पर प्रस्तुत किए जाएंगे कुछ फिल्मी तराने। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे सुमन कल्याणपुर के गाए गीत रात 8:15 पर। रात्रि 8 बजे समय रहेगा भेंट वार्ता का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत।

आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति में पेश किया जाएगा विशेष कार्यक्रम उम्मीद की किरण शाम 7:50 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:40 का। साय 7:00 हमारे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत पेश किया जाएगा, जिसमें होगी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और मक्के की खेती विषयों पर। साथ ही होगी भेंटवार्ता उत्तराखंड में औषधीय पौधों की खेती विषय पर। पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा 5:45 का। शाम 5:10 पर युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा 4:00। दोपहर 3:02 पर आनंद लीजिएगा गाने नए तराने कार्यक्रम का।

0: 2:30 पर सैनिकों के लिए खास कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हमारे श्रोता सुनेंगे 2:30 पर। 12:30 पर समय रहेगा हमारी बहनों के खास कार्यक्रम महिला जगत का। सुगम संगीत में आज आप आनंद लीजिएगा नीलम नेगी के गाए भजनों का 12:12 पर। श्रोताओं, आपके मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का समय वही प्रातः 11:00 का रहेगा। 10:35 पर लोक संगीत में रमेश जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत पेश किए जाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रस्तुत किया जाएगा प्रातः 10:02 पर। सदाबहार फिल्मी नगमों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:05 से। सुबह 9:00 आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति में सुनिएगा जिले की चिट्ठी। दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून को सुनना ना भूलिएगा प्रातः 8:30 पर। ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को है। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पंचराष्ट्र यात्रायाः पंचमं अन्तिमं प्रचरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोग रूपेण स्वसंबंधस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानं इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य, आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीनसभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिककूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानां च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषि वैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमंत्री अमित शाहः, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः प्रधानमंत्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थं अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विक नेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषि प्रतिरूपं समग्र विश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिम बंगाल राज्ये दक्षिण चतुर्विंशतिः परगण मण्डलस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे पुनर्मतदानं अधुना 7वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक

0: यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi.

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं शीर्षक गीत के अंतर्गत हम तुम फिल्म से ये अगला गीत अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ शीर्षक गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। 7:20 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नई वीबीजी रामजी योजना 1 जुलाई से लागू होगी। ग्रामीण श्रमिकों को अब साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा और टिहरी गढ़वाल में किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए सामूहिक चेन लिंक फेंसिंग योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राज्य में लगातार बढ़ते तापमान और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी स्वास्थ्य इकाइयों को हीट संबंधित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी दिशा निर्देशों में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हीट संबंधित बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां करने को कहा गया है। राज्य के जिला और उपजिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन कक्षों में मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए कूलिंग सिस्टम, आइस बैग और पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। पहले ठंडा करें फिर परिवहन करें प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि राज्य सरकार हीट वेव की चुनौती को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सभी जिलों को समय रहते तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र दत्त केरोला।
0: गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने हरिद्वार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात कर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को लेकर चर्चा की। सांसद ने विशेष रूप से लंबे समय से लंबित कोटद्वार नजीबाबाद मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक के दौरान श्री बलूनी के आग्रह पर मंत्री ने नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग और गुमखाल सतपुली मार्ग के निर्माण कार्य के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए। आगामी मानसून को देखते हुए सांसद ने लैंडस्लाइड जोन में आने वाले मार्गों की तत्काल जांच और मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली के उप राज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने पंज प्यारों के नेतृत्व में हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्प वर्षा, बैंड बाजों की धुन और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों के बीच श्रद्धालु का जत्था अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ। उपराज्यपाल ने संगत को संबोधित करते हुए सिख धर्म की महिमा, हेमकुंड साहिब यात्रा की पावन परंपरा और यात्रा की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के लिए सुखद, सुरक्षित और निर्विघ्न यात्रा की कामना करते हुए गुरु महाराज के समक्ष अरदास भी की। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: देश के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास और रोजगार की नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने वीबीजी रामजी कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी। नया कानून मनरेगा का स्थान लेगा। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शास्त्री ने बताया कि नई योजना को 4 श्रेणियों और 28 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं, जबकि मनरेगा में 266 प्रकार के कार्य शामिल थे।
3: 1 जुलाई से जो एमजी नरेगा हमारी एक्ट थी उसको रिप्लेस करके वीबीजी रामजी जो एक्ट है वो इन्फोर्स हो जाएगी। इसमें कुछ मुख्य तौर पे ऐसे इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जिससे कि जो हमारी आज की डेट में ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज जो हम लोग नरेगा में फेस कर रहे थे वो अब नहीं हमें होपफुली फेस करने पड़ेंगे। एंड इस एक्ट के थ्रू जो ब्रॉडली हमारे जो वर्क्स हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वाटर सिक्योरिटी, हमारा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा लाइवलीहुड एनहांसमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो 4 कैटेगरी है इसके अंदर अलग से 29 सब कैटेगरीज और उसके अंदर ओवर 300 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हैं।

0: मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत जल सुरक्षा और संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम से निपटने से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। टिहरी गढ़वाल में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि विभाग सामूहिक चेन लिंक फेंसिंग योजना को प्राथमिकता दे रहा है। मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराणी ने बताया कि कृषि विभाग ने सामूहिक रूप से चेन लिंक फेंसिंग कराने की योजना तैयार की है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। जिला योजना के अंतर्गत इस वर्ष टिहरी जिले में 50 किलोमीटर फेंसिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है।
1: जंगली जानवरों की समस्या बहुत व्यापक समस्या है और सभी ग्रामों में जंगली जानवरों से फसल को व्यापक क्षति पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयास किया जा रहा है सामूहिक घेरबाड़ की। विगत वर्ष 2025-26 में हमारे द्वारा लगभग 105 ग्रामों के तहत घेरबाड़ योजना कार्य किया गया और इसमें जो है लगभग 16 किलोमीटर घेरबाड़ हमारे द्वारा बनाई गई है और इसमें अब जंगली जानवरों से जो फसलों की सुरक्षा हुई है। लास्ट ईयर तक जो हम कार्य कर रहे थे वो हम कॉन्ट्रैक्टर मोड में कर रहे थे। इस बार से प्रतिवर्ष 26-27 से जो हम कार्य करेंगे वो हम सामुदायिक मोड में करने जा रहे हैं। लगभग हमारे पास जिला योजना के तहत ही 50 किलोमीटर के घेरबाड़ प्रस्तावित है।
0: विभाग के अनुसार योजना के तहत कुल लागत का 80% खर्च कृषि विभाग वहन करेगा जबकि 20% राशि किसानों को देनी होगी। इससे किसानों की सहभागिता बढ़ेगी और अधिक लोग योजना से जुड़ सकेंगे। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के बड़ाहाट रेंज में ज्ञानसू क्षेत्र के जंगलों में सिविल भूमि पर लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। तेज गर्मी और हवा के कारण आग तेजी से फैलते हुए बड़ाहाट रेंज के वन क्षेत्र तक पहुंच गई। वन विभाग के कर्मचारी वर्णावर क्षेत्र में फायर कटिंग कर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर वन विभाग की कई टीमें तैनात हैं जो लगातार जंगलों को आग से बचाने में जुटी हुई हैं। बड़ाहाट रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकेश रतूड़ी ने बताया कि आग पहले सिविल भूमि में लगी थी लेकिन बाद में परिस्थितियों के कारण ये वन क्षेत्र की ओर फैल गई। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार में बाघ की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से बातचीत कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ठोस पैरवी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में किसी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उच्च स्तरीय जांच कर उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दून में अस्पताल में लगी आग, महिला की मौत, 10 घायल, इस समाचार शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है अस्पताल में एसी में हो गया शॉर्ट सर्किट। इस खबर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है धुएं से दम घुटने के कारण महिला मरीज की मौत, पूरा अस्पताल खाली कराया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री की अंतिम विदाई को आज सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है पूर्व सीएम जनरल खंडूड़ी को नम आंखों से अंतिम विदाई, पंचतत्व में विलीन। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर हिंदुस्तान की सुर्खी है एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। एक अन्य खबर पर हिंदुस्तान का शीर्षक है सोन प्रयाग में फंसे 10,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से कोटद्वार नजीबाबाद मार्ग सहित कई सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की मांग की। हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को ऋषिकेश से रवाना किया गया। 23 मई को खुलेंगे कपाट। केंद्र सरकार की नई VBG रामजी योजना 1 जुलाई से लागू होगी। ग्रामीण श्रमिकों को अब साल में 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और टिहरी गढ़वाल में किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए सामूहिक चेन लिंक फेंसिंग योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है शैल संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे रतन सिंह जौनसारी के गाए जौनसारी लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जा

रतन सिंह जो अंसारी के गाए जो अंसारी लोकगीतों को अभी आप सुन रहे थे शैल संगीत के अंतर्गत FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को

0: संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं।

0: आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
3: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
4: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep

सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा की ओर से। श्रोताओं, आज 21 मई का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बात करें एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने केवल हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सुंदर महिला का खिताब हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मॉडल सुष्मिता सेन की, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में दुनिया भर की 76 सुंदरियों को पछाड़कर ये सफलता हासिल की थी। फिलीपींस के मनीला में आयोजित इस प्रतियोगिता में यह ताज हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। सुष्मिता सेन ने राष्ट्र की बढ़ती उपस्थिति को विश्व मंच पर

साबित कर दिखाया। आज वे एक सफल अभिनेत्री और मॉडल हैं। और श्रोताओं, आपको एक बात और बता दें, जिस वर्ष उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, उसी वर्ष उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी जीता था। सुष्मिता सेन को उनकी फिल्मों, सामाजिक कार्य और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए भारत में महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा माना जाता है। अब आइए श्रोताओं, उन्हीं की फिल्म से आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक श्रोताओं, अब आइए पढ़ते हैं अखबार की सुर्खियां। हेमकुंड साहिब के श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिखाई झंडे। द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर धाम की कपाट आज गुरुवार सुबह 11 बजे विधि विधान से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। प्रतिदिन 200 यात्रियों को ही मिलेगी रुद्रनाथ धाम जाने की अनुमति। सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री पार, लू ने किया बेहाल। आर्थिक तंगी के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं को मिलेगी बड़ी सुविधा, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में बालिकाओं को मिलेगी छात्रावास सुविधा। चाय की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर है उत्तराखंड। श्रोताओं, ये थी स्थानीय महत्व की खबरें अखबारों के पन्नों से। अब आइए श्रोताओं, आपको बताते हैं 21 मई यानी आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है। आज के दिन यानी 21 मई को 1991 में भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनाव प्रचार के दौरान आत्मघाती हमले में दुखद हत्या कर दी गई थी। इस दुखद घटना से आज के दिन यानी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा से दूर रखना है। आज के दिन 1981 को अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत का पहला अभियान आज के दिन ही लॉन्च किया गया था। 1904 को पेरिस में फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था फीफा की स्थापना की गई। आज के दिन 1851 में कोलंबिया में गुलामी की प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया था। 1994 को सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मॉडल सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब हासिल किया। मानवीय प्रयासों के वैश्विक प्रभाव को दर्शाते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आज के दिन यानी 21 मई 1920 को हुई। श्रोताओं, ये थी आज के दिन का जो इतिहास है। अब बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में आप कुछ आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें। समय का ध्यान रखकर ही घर से बाहर निकले। सुबह 11 से 4 बजे तक यदि आवश्यकता ना हो तो बाहर ना जाएं। यदि बाहर जाना भी पड़े तो सिर पर टोपी गमछा ढककर जाएं या छाता लेकर निकलें। सूती ढीले हल्के रंग के कपड़े पहने। धूप का चश्मा भी आप यूज कर सकते हैं, जो हमारी आंखों को यूवी किरणों से बचाता है। समय समय पर पानी भी पीते रहें। आप नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, खीरा, ककड़ी आदि का सेवन कर सकते हैं। बच्चे और बुजुर्गों का खास जो है ध्यान रखें, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा है। अब आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7088-00-731 नंबर पर, जिसे हम शामिल करेंगे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में। और हाँ, मैसेज में आपका पत्र मिला जरूर लिखें। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, इन गर्मियों में खूब हाइड्रेट रहें। इसी के साथ अपने रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, देहरादून।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति में अब लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। जिले की चिट्ठी के क्रम में अब आप आशुतोष उनियाल से नैनीताल जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है सुमित तिवारी का। श्रोताओं, नैनीताल जिले की चिट्ठी। इस बार जिले में वन्य जीव संरक्षण, प्रभावी कानून व्यवस्था बनाने हेतु प्रशासनिक क्रियाशीलता, पाइप नेचुरल गैस जैसी ऊर्जा अवसंरचना के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में जिले की प्रगति की खबर लेकर आई है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नैनीताल जिले की चिट्ठी। भीषण गर्मी और बढ़ रहे तापमान के दृष्टिगत तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा वन रेंज में वन्य जीवों के लिए दो विशाल जलाशयों का निर्माण कराया गया है। इन जलाशयों के समीप लगभग 200 फीट गहरे आर्टिजियन वेल, जिन्हें पाताल तोड़ कुएं के रूप में जाना जाता है, स्थापित किए गए हैं। इनसे वन्य जीवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों को जलाशयों की निगरानी के लिए 24 घंटे तैनात किया गया है। इन जल स्रोतों पर हाथी, तेंदुआ, नीलगाय, हिरण तथा बारहसिंगा सहित अनेक वन्य जीवों की आवाजाही निरंतर बढ़ रही है। वहीं नैनीताल जिले में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार सृजन की एक कहानी भी सामने आई है। नैनीताल जनपद के बैल पड़ाव क्षेत्र में रेखा गोस्वामी, गौरा समूह तथा विकास CLF यानी संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को नई दिशा दे रही हैं। समूह आधारित और व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित इकाइयों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। ग्रामोत्थान रीप परियोजना के अंतर्गत रेखा गोस्वामी को 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिसके माध्यम से लगभग 7 लाख रुपए की लागत से इकाई स्थापित की गई। विशेषज्ञों के अनुसार आगामी 3 वर्षों में ये इकाई 6 से 7 टन तक उत्पादन करने में सक्षम होगी, जिससे संबंधित परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नगर पंचायत लालकुआं से संबंधित विभिन्न कार्यों में संभावित वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्राप्त शिकायतों में लगभग 3 लाख रुपए की लागत से कूड़ादान की खरीद बिना विधिवत निविदा प्रक्रिया अपनाए किए जाने, विभिन्न वार्डों में लगभग 5 वर्ष पूर्व निर्मित शौचालयों को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण कराए जाने, छठ पूजा स्थल पर कराए गए पुनर्निर्माण कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान शीतकाल में अलाव हेतु लकड़ी की असामान्य खपत

0: और उससे संबंधित भुगतान प्रक्रियाओं की पारदर्शिता एवं वैधता से जुड़े विषय शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही परिलक्षित होती है तो संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही निर्धारित की जाए। दूसरी ओर जिले के हल्द्वानी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन प्रदान करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हल्द्वानी शहर में PNG गैस कनेक्शन हीरानगर, आकाशदीप कॉलोनी, बजरंग विहार, उदय भवानी, उत्तरांचल विहार, जज फार्म, दुर्गापाल गार्डन, मृदुल विहार एवं जोशी कॉलोनी क्षेत्रों में PNG का संयोजन कर दिया गया है। और अब जिले की चिट्ठी के अंत में आपको बता दें कि नैनीताल के मेधावी छात्र छात्राओं, उत्कृष्ट शिक्षकों एवं विद्यालयों को सम्मानित करने हेतु ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज हल्द्वानी में जनपद स्तरीय मेधा सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 34 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त परिषदीय परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कराने वाले 14 विषय अध्यापकों को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही CBSE ICSE परीक्षा 2026 में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले 7 प्रधानाचार्यों, राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के 6 प्रधानाचार्यों तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 खंड शिक्षा अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। श्रोताओं, इसी के साथ नैनीताल जिले की चिट्ठी का यह अंक यहीं पर समाप्त हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी जिले की चिट्ठी के एक और नए अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: जिले की चिट्ठी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे RNU देहरादून की प्रस्तुति में। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। 9:05 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत।

श्रोताओं, गुलामी फिल्म के इस गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का सफ़र जो है शुरू हो गया है, और इस सफ़र में मैं आपकी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा आपके साथ बनी हुई हूँ। श्रोताओं, गीत संगीत हमें मानसिक तनाव से दूर रखता है। संगीत दिल के तार को दिमाग से जोड़कर हमें दिशा प्रदान करता है। संगीत का खुशियों से अत्यंत गहरा रिश्ता है, क्योंकि गीत सीधा हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। हम चाहे कितने भी उदास क्यों

ना हो, लेकिन इन गीतों को सुनकर वही ताजगी फिर से लौट आती है। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अखियों के झरों के फिल्म से ये अगला गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने जीने की राह फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में दुनियादारी फिल्म से ये अगला गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को अपनी आवाज़ से सजाया था लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। श्रोताओं, पुराने फिल्मी गीतों में वो कशिश है, वो नज़ाकत है जो इनको कभी भी पुराना नहीं होने देते। आज भी ये गीत उतने ही कर्णप्रिय हैं और मधुर हैं जैसे वो पहले थे। पुराने गीतों की एक अलग ही शोभा होती है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा मधुर गीत जो कि है सफ़र फिल्म से। मन्ना डे की आवाज़ है, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

सच में श्रोताओं, जीवन जो है चलने का नाम ही तो है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम उनसे डर के बैठ जाएंगे तो हम एक कदम पीछे हो जाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास ही सफलता की पूंजी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला प्यारा सा गीत, जो कि है सच्चा झूठा फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। ऐसे गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीतों को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने दिल ही तो है फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और इसे संगीतबद्ध किया था रोशन ने। अब आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला सदाबहार नगमा, जो कि है हंसते जख्म फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना कैफी आजमी की है और इसे संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।
1: तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप पंकज सनवाल खुलबे से न्यूज हेडलाइंस सुनिए। राज्य में लगातार बढ़ते तापमान और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी निर्देशों में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हीट संबंधित बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां करने को कहा गया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने हरिद्वार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात कर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को लेकर चर्चा की। सांसद ने विशेष रूप से लंबे समय से लंबित कोटद्वार नजीबाबाद मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने पंज प्यारों के नेतृत्व में हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्प वर्षा, बैंड बाजों की धुन और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का जत्था अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ। देहरादून स्थित लेखक गांव में 24 मई को रस्किन बॉन्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। स्टोन एक्स ग्लोबल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य, संगीत, सिनेमा और लोक संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित होंगी। नैनीताल जिले के अंतर्गत सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखंड की पहल पर कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागियों को ABDM, HMIS के उपयोग समेत विभिन्न जानकारियां दी गईं और देश के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास और रोजगार की नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने VBG रामजी कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी। नया कानून मनरेगा का स्थान लेगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि यह उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और यह जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में यह वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का

कौशल विकसित करते हैं तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं, जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। यह रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाएं। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाएं कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाएं। बच्चा जो कुछ भी कहे उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाए। कोई भी समस्या हो उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जी हाँ, उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने मेजर साहब फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। अब आइए सुनते हैं तलाश फिल्म से विशाल ददलानी की आवाज़ में ये अगला गीत।

0: यार नाटक लेकर, नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, भैन की सगाई च तो भाई नचना ही पैंदा है।
1: हाँ हाँ तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ऐ गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं मुझे नहीं नाचना।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देहरादून में रिस्पना पुल के पास स्थित एक हॉस्पिटल में आग लगने की घटना के राज्य सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित मरीजों को बेहतर उपचार व हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि इस हॉस्पिटल के आईसीयू में कल वहां लगे एसी में ब्लास्ट होने से आग लग गई थी, जिससे कि एक बुजुर्ग महिला मरीज की मृत्यु हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। राज्य में लगातार बढ़ते तापमान और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी निर्देशों में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हीट संबंधित बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां करने को कहा गया है। राज्य के जिला और उप जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन कक्षों में मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए कूलिंग सिस्टम, आइस पैक और पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि राज्य सरकार हीट वेव की चुनौती को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सभी जिलों को समय रहते तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून स्थित लेखक गांव में 24 मई को रस्किन बॉन्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्य, संगीत, सिनेमा और लोक संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित होंगी। फेस्टिवल का आयोजन प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के जीवन, साहित्य और उनके रचनात्मक योगदान को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को साहित्य, कला और संस्कृति से जोड़ना है। आयोजक संस्था के अधिकारी सुशांत पाठक ने बताया कि ये आयोजन अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें कहानी कहने की विभिन्न विधाओं को एक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। नैनीताल जिले के अंतर्गत सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखंड की पहल पर कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागियों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS के उपयोग समेत विभिन्न जानकारियां दी गईं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्वेता भंडारी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने हरिद्वार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात कर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को लेकर चर्चा की। सांसद ने विशेष रूप से लंबे समय से लंबित कोटद्वार नजीबाबाद मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। बैठक के दौरान श्री बलूनी के आग्रह पर मंत्री ने नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग और गुमखाल सतपुली मार्ग के निर्माण कार्य के लिए भी आवश्यक देश जारी किए। हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा परिसर से दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने पंज प्यारों के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्प वर्षा, बैंड बाजों की धुन और जो बोले सुनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं का जत्था अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास और रोजगार की नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने VBG रामजी कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी। नया कानून मनरेगा का स्थान लेगा। टिहरी गढ़वाल में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि विभाग सामूहिक चेन लिंक फेंसिंग योजना को प्राथमिकता दे रहा है। मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवरानी ने बताया कि कृषि विभाग ने सामूहिक रूप से चेन लिंक फेंसिंग कराने की योजना तैयार की है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। जिला योजना के अंतर्गत इस वर्ष टिहरी जिले में 50 किलोमीटर फेंसिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रातः के 10:35 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे रमेश जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: रमेश जोशी के गाए कुमाऊनी लोकगीतों को अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर।

FM 100.5 MHz भी ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। तो आप सभी श्रोताओं को रेशमा का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आपके फरमाइशी गीतों का सिलसिला और सुनवाते हैं आपको आपकी ही पसंद के गीत। तो कार्यक्रम में देखते हैं पहली फरमाइश हमें कहाँ से मिली है। तो ये पहली फरमाइश हमें लिख भेजी है तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयु श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास और ग्राम कोरबी बेलतला छत्तीसगढ़ से आप हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमू और साथ में है मानस राज। आइए देखते हैं अगली फरमाइश हमें कहाँ से मिली है। तो हमारे श्रोता ने फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम उमेड़ा निजामाबाद तिंगला से। आप हैं मोहम्मद जैनुद्दीन, आबिदा आयशा और साथ में है स्नेहा भानु जैनुद्दीन। बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश की ओर जो हमें मिली है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से। आप हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल और बेबी आराध्या साहू। ये फरमाइश हमें मिली है टाइगर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ में है स्वीटी छाबड़ा। ये फरमाइश मिली है दादरी गेट भिवानी से। आप है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और साथ में है कुणाल मेहरा जी। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है सियोहरा जिला बिजनौर से। आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है रेलवे रोड गंज डुडवारा से। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर डबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवर, नाजमन बेगम नास और भाभी सरिता गौतम। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है मजनूका टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से। आप हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और साथ में है माही मलिक। आइए देखते हैं अगली फरमाइश हमें कहाँ से मिली है। तो ये फरमाइश हमें लिख भेजी है आकोट से। आप हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे और पवन जरिया और के संजीव डाबेराव। ये फरमाइश मिली है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से। आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। तो चलिए श्रोताओं, सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं को आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है राजा और रंक और गीत को मधुर आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी ने। तो सुनते हैं ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश और लगातार बहुत सारे श्रोताओं हमें फरमाइश भी भेज रहे हैं, तो आइए ज्यादा वक्त न लेते हुए आपका शुरू करते हैं आपकी फरमाइश गीतों का सिलसिला। तो ये फरमाइश हमें मिली है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरिंजर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। ये फरमाइश हमें मिली है मेन रोड तेलहारा से। आप हैं प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर। ये फरमाइश हमें मिली है मधुबनी एक्सटेंशन राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंकारानी, रुद्र गुप्ता, माला मिश्रा, ऐशबाग।

नौ से आप हैं रानी मुकेश गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें मिली है। मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से आप है बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एका भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह। बढ़ते अगली फरमाइश की ओर जो मिली है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। ये फरमाइश हमें मिली है। किसी भी गीत में शामिल होने की फरमाइश इन्होंने हमसे की है। कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से आप हैं कानूगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रवलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश। मलियान सरदना मेरठ से आप हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवन यन जैन। ये फरमाइश मिली है मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा, मुस्कान और अफजल अली और साथ में है नगमा नाज मंसूरी। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से आप हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और साथ में हैं सविता भाकरे। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिली है। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश भट्ट, नीलम भत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंशवत। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो मिली है बाबा कुटी रायगढ़ से। शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। गांव कैरू जिला तरन तारण पंजाब से आप हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशब्द। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो हमें लिख भेजी है। पसंद करता है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बल्लू निषाद और साथ में है तरुण यादव। ये फरमाइश मिली है। खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नलेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से आप हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू सिक्का। तो चलिए श्रोताओं सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश पे कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म घर से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन के नए कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश, और शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश को, जो हमें लिख भेजी है चौटाला हरियाणा से। भेजने वाले हमारे श्रोते हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। ये फरमाइश हमें मिली है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जय और दर्शन भाई। बढ़ते अगली फरमाइश की ओर, जो मिली है खमरिया छत्तीसगढ़ से, आप हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। और मोताला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है कर्नाटका स्टेट नासिक त्रुपति से, आप हैं प्रकाश, श्यामाला, अश्विनी, आनंद और मनवीनाथ। ये फरमाइश हमें मिली है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से, कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को, जो हमें मिली है गाड़गे नगर यवतमाल से, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, शैलेश लोखंडे, स्वप्ननील लोखंडे, रक्षाता लोखंडे और रियांश लोखंडे। ग्राम लसूरिया पाता तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से आप हैं गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डागी। अगली फरमाइश हमें मिली है हनोई यूनिवर्सिटी वियतनाम से, आप हैं प्रभुसा प्रोफेसर वसुधा व्रजसेन, डॉक्टर स्वर्णलता युगेन और जलगांव जंक्शन से आप हैं दिनेश काले, वंदना काले और आदेश कुमार काले। ये फरमाइश हमें मिली है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं, जो हमें मिली है बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मैंग मोड़ा और चेतन नाहटा। गंजडुडवारा गणेशपुर से आप हैं फिरासत हुसैन, अलकमर जहां और शिफा सिमरन। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है गोकुल चौक गंगा जला सहरसा बिहार से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना जहां। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को, जो मिली है सप्त रंग श्रोता परिवार कुम्हार गली श्रीरामपुर से, आप हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले और पुनावले पोड़े से आप हैं जय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवड़े। नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं मुसरत जहानास, शिक्षिका तलहत जहानास, फरज जहानास, रिफा जहानास, नुसरत जहानास, शाजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नास। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को, जो हमें मिली है तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से, आप हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकाला पोपलघट और देवीदास पोपलघट। ये फरमाइश शामिल कर रहे हैं, जो हमें लिख भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल नुहाकर और मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्जे, आशीष मुरहेकर। ये फरमाइश मिली है तिरुपति नगर नांदूरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक और दिंडोरी नाशिक से आप हैं विशाल गवली, सोनाली गवली, समर्पण गवली और भक्ति गवली। तो चलिए श्रोताओं, सुनाते हैं आप सभी की पसंद पे कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

गीत के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। तो आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश को जो हमें लिख भेजी है। विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से आप हैं मनोहर लाल गांधी। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो मिली है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय टवल और पीबी कुल थे। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम महेश्वरी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नेनाजी धाड़े और स्वप्ननील धाड़े। ये फरमाइश शामिल कर रहे हैं गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। ये फरमाइश हमें मिली है जिला कासगंज यूपी से आप हैं योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया फरुखाबादी। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से आप हैं सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजनी और तुषार करांगले। और ये फरमाइश हमें मिली है कल्याण मुंबई से आप हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो मिली है उत्तम कुमार बंघेल, रुक्मणी बंघेल, साहिल भारती बंघेल। आपने ये फरमाइश हमें भेजी है लगान पंढरिया छत्तीसगढ़ से। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो मिली है श्रोता है रघुबीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और साथ में है लड्डू। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो मिली है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से आप हैं बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल। और ये फरमाइश मिली है मोरटका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो मिली है चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। और अबूधाबी यूई से आप हैं शेख जियाउर अताउर रहमान। मोताला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार सुरलकर। और कैथल हरियाणा से आप हैं जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। मोहाली से आप हैं टीडी मल्होत्रा और शुभचंद्र बजाद। ये फरमाइश मिली है काटर रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशी और मायरा सुरोशी। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। ये फरमाइश मिली है बपोस लदावली से आप हैं माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो मिली है सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरु चौहान और प्रतीक रायन। और नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, पवन सुधार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुधार। और बढ़ते अगली फरमाइश की ओर जो मिली है छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से आप हैं सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोढ़ाने, हीरामन शेंडे जी और प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंढाने। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो मिली है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी और सीता और गीता। ये फरमाइश हमें मिली है नास पहले सजमेर शरीफ से आप हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनास सलमा, असद अरहम और साथ में हैं इनके मोहम्मद आलम हाशमी। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर गांधी रोड गंज डुडवारा से आप हैं मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद जावी शेख, फातिमा गाजी शेख और मुन्ने सलमानी और मोहम्मद के मोहम्मदी। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें लिख भेजी है मेहरनगर उमरखे महाराष्ट्र से अभिजीत घ्वाड़कर राही, श्रीमती सरिता घ्वाड़कर, प्रिंस एकाश घ्वाड़कर। और बदलापुर मुंबई से आप हैं प्रणीता घ्वाड़कर, सिद्धांत घ्वाड़कर, अर्जुन घ्वाड़कर, टुक टुक। और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली, शैलेश घ्वाड़कर, सुमित घ्वाड़कर और कुमारी ध्वनि घ्वाड़कर उर्फ परी। ये जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से आप हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से आप हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। तो चलिए श्रोताओं सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की खूबसूरत आवाज में। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर।

गीक के बाद स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में और श्रोताओं का कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो हमें लिख भेजी है एयरपोर्ट रोड वंदनगर इंदौर मध्य प्रदेश से। आप हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी। और अगली फरमाइश हमें मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तंगवी बोत और अंकित कांगड़ा। ये फरमाइश मिली है पुटपाक तेलंगाना से भवानी मैंकेट, मास्टर मिथुन, महादेव। और हैदराबाद बीएन रेड्डी नगर से आप हैं मोनिका बालू और विनय कुमार। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से आप हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा। ये फरमाइश हमें मिली है जलालाबाद वेस्ट से आप हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दीशानी और साथ में है निमित आहूजा। करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से आप हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजोत। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो हमें मिली है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आप हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खारोना। ये फरमाइश हमें मिली है आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। ये फरमाइश मिली है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये फरमाइश हमें मिली है सागर लखना दौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से आप हैं लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर जो मिली है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां। और ये फरमाइश मिली है नई बस्ती गजडुंडवारा से मोहम्मद यासिन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। किशनगंज बिहार से आप हैं रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, वर्षा सुमन और माधुरी किरण। ये फरमाइश मिली है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। और सहेली रेडियो श्रोता संघ आजाद रोड सनावत से आप हैं बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा और मोहम्मद सगर खत्री। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिली है सहारनपुर ITI से ब्रजेश कुमार सैनी, अजय सैनी, सिमरन सैनी, राजेश सैनी। और ये फरमाइश मिली है आप हैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूवाल वाक्तरिया, धाकर भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश वाक्तरिया और प्रतीक वाक्तरिया। चलिए श्रोताओं सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र से।

एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है व्हाट्सएप फरमाइश, आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश को जो हमें लिख भेजी है। आप हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा। ये फरमाइश हमें मिली है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती माहेश्वरी देवी जी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और साथ में हैं दिनेश। ये फरमाइश मिली है खालापार मुजफ्फरनगर से शाहिना परवीन, फातिमा, खुशबू, आयजा, मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को जो हमें लिख भेजी है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी और बेबी राय हिमांश। ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। ये फरमाइश मिली है पहाड़गंज मुल्तानी भ्राणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से आप है मधु नायक। ये फरमाइश मिली है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाजिद शाहिद और गोविंदपुर अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल, जैनब मुजावर। शामिल करते अगली फरमाइश को जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा ही संघई परिवार। वारसी क्लब सिंघोली मीरगंज बरेली से आप हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से आप हैं अयूम खान, ईरम गुड़िया और शुएब खान। ये फरमाइश हमें मिली है कच्छ गुजरात से गंगा वड़कर, गोविंद वड़कर, प्रीति जूली, गीता महिमा, विशाल विकास, विजय विराट, रमेश महेश जयंती। और ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हमें मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। झज्जर हरियाणा से आप है बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया और उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु खोरवाल और गीतिका खोरवाल। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से आप हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, शैलेश लोखंडे, स्वप्ननी लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और रेयांश लोखंडे। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। तो चलिए श्रोता सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत किशोर कुमार के स्वर में फिल्म परिचय से।

श्रोताओं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगली फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से। आप हैं बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो मिली है ग्राम जाखड़ गाँव अहमदनगर से। आप हैं नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल। ये फरमाइश मिली है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। किसी भी गीत में शामिल होने की अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से। आप हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। ये फरमाइश मिली है डापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो मिली है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। और ये फरमाइश मिली है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। शामिल करते हैं अगली फरमाइश को, जो हमें मिली है मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनाम अब्बासी, यशफ अब्बासी और सिकंदरा राव से। आप हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो मिली है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा, निखिल वर्मा और साथ में है यशस्वी वर्मा। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से आप हैं कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आरती आकर्षण। और ये फरमाइश मिली है सहारनपुर उत्तर प्रदेश, आसरा नारंग सोनाली और चकला बाजार सामना शहर पंजाब से। आप हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुखलाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल और संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। ये फरमाइश हमें मिली है बोरावके नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा, हर्षा जेठवा, जूही जेठवा कसार और बेबी अवीरा। ये फरमाइश मिली है पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू, कुमार विमल और नवरत्न हारता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से, ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडू, दीक्षा देव देवांशु और डब्ल्यू जी। आई श्रोताओं, सुनाते हैं आप सभी के पसंद पे कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म चमत्कार से। आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

घाट का। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और अब्बान अब्बासी के सभी सदस्य। उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं बोधराज खोलवार, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से आप हैं राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े, छकुलीताई खोबरखेड़े और खांडवड़ी बुलढाड़ा से आप हैं दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़ी और थिलोरी अमरावती से आप हैं सुनैना तनुजे भोंडे। ये फरमाइश हमें मिली है सेक्टर 24 कुंडेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती और अभय गुजराती, और श्री गणेश अविकार श्रीरामपुर से आप हैं डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सानू कुंभार, अर्चना कुंभार और कोयते वस्ती पुनावले से आप हैं अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े और साइशा सोनवड़े। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं, मिली है शेरवानी स्कूल गंजडूडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। तेलंगाना निजामाबाद से आप हैं शेख अल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिफ आशिफ शेख। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़ी, वनिता गंगराड़ी और मोहम्मद हसनैन पवार। ये फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो मिली है गांव उमेड़ा निजामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबिदा आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। ये फरमाइश हमें मिली है नांदेड़ महाराष्ट्र से आप हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। गांव जखो राजस्थान से आप हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। तो चलिए श्रोताओं सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश पे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है पगला कहीं का। और श्रोताओं इसी गीत के साथ कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर सम्पन्न हुआ। नमस्कार।

0: श्रोतों, कार्यक्रम वर्ष फरमाइश अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पे। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे।

0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: चट्टान से गिरने के कारण मौत हो गई। देहरादून में रिस्पना पुल के पास स्थित एक हॉस्पिटल में आग लगने की घटना के राज्य सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी निर्देशों में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हीट संबंधित बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां करने को कहा गया है। देहरादून स्थित लेखक गांव में 24 मई को रस्किन बॉन्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्य, संगीत, सिनेमा और लोक संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित होंगी। फेस्टिवल का आयोजन प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के जीवन, साहित्य और उनके रचनात्मक योगदान को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। नैनीताल जिले के अंतर्गत सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखंड की पहल पर कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के उप राज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू ने पंज प्यारों के नेतृत्व में हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे को ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने हरिद्वार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात कर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को लेकर चर्चा की और टिहरी गढ़वाल में किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि विभाग सामूहिक चेन लिंक फेंसिंग योजना को प्राथमिकता दे रहा है। जिला योजना के अंतर्गत इस वर्ष टिहरी जिले में 50 किलोमीटर फेंसिंग कराने का लक्ष्य रखा गया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे नीलम नेगी के स्वर में भजन। इनके साथ संगत कलाकार हैं तबला पर सैकेत मंडल और सितार पर विशाल मिश्रा।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं नीलम नेगी के स्वर में भजन

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नीलम नेगी के स्वर में भजन। आपके साथ संगत कलाकार पर थी तबला पर सकेत मंडल और सितार पर विशाल मिश्रा। FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत रेडियो सखी।

0: नमस्कार, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, हमारी सभी सखियों का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो सखी में, जो कि एक फोन इन प्रोग्राम है। कार्यक्रम के माध्यम से सखियों के साथ करते हैं ढेर सारी बातें, साझा करते हैं उनके साथ जरूरी जानकारियां और साथ ही सुनवाते हैं हमारी सखियों की पसंदीदा गीतों को भी। सखियों, आज की तारीख है 21 मई और आज के दिन यानी 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आतंकवाद और हिंसा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना तथा देश में शांति और एकता का संदेश फैलाना है। सखियों, आतंकवाद केवल हिंसा नहीं है, बल्कि ये समाज में भय, असुरक्षा और अशांति फैलाने का प्रयास है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। आतंकवाद किसी धर्म, जाति या भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि ये मानवता का दुश्मन है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें एकजुट होकर शांति, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए। युवाओं को विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है, ताकि वो किसी भी प्रकार की गलत विचारधारा या हिंसक गतिविधियों से दूर रहें। सखियों, आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और शांति और सद्भाव का संदेश फैलाएंगे। सखियों, जैसे कि गर्मियां अपने चरम सीमा में हैं, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप और गर्म हवाएं लेकर आता है। ऐसे समय में अपने परिवार की सेहत और आराम का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सही खान पान, पर्याप्त मात्रा में पानी, साफ सफाई और थोड़ी सी सावधानी से हम अपने बच्चों, बुजुर्गों और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए हम अपनी सखियों से बात करते हैं और जानेंगे कि वो गर्मियों में अपने परिवार का कैसे ख्याल रखती हैं। तो चलते हैं अपनी पहली कॉल की तरफ। हेलो रेडियो सखी, हमसे कौन बात कर रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं मुजफ्फरनगर से राबिया बात कर रही हूँ।
0: राबिया जी, कैसी हैं आप?
1: दीदी जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ।
0: अच्छा, गर्मियों का कैसा हाल है आपके शहर में? गर्मियाँ ठीक ठाक पड़ रही हैं?
1: हाँ जी, खेलते जब बोला जी, गर्मी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन तब इस ज्यादा हो रही है कि पैरों पर खड़े होकर भी देखना है, खड़ा भी नहीं हो जाने का।
0: जी, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं लेकर तो आता ही है। ऐसे में राबिया जी, ये बताइए कि अपने परिवार की सेहत का और आराम का आप किस तरह से ध्यान रखती हैं?
1: जी, हम अपने परिवार की सेहत का इस तरह ध्यान रखती हैं कि उनको ये बताती हैं कि अगर आप बीमार हो, आपको जुकाम हो रहा है, कि आप ठंडा पानी मत पिए, तो आप मटके का ही पानी पिए, सादा पानी पिए, ये करती हैं हम।
0: जी, अच्छा, गर्मियों में बाहर का खाना खाने से किन समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है?
1: हाँ जी, खतरा बढ़ता है दीदी जी, ये पदहजमी हो जाती है, उल्टियाँ हो जाती है, खाना खाने से बाहर का जो ज्यादा खा लेते हैं पेट भर खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा खाना चाहिए।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही राबिया जी। ये बताइए राबिया जी, गर्मियों में तेज धूप में बाहर निकलना नुकसानदायक हो सकता है ना?
1: हाँ जी, नुकसानदायक हो सकता है, 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी बाहर ना निकले, अगर जरूरत पड़ जाए तो छाता लगा कर ही बाहर जाए। गर्मी से बचाव के लिए दीदी जी, छाता लगा के ही निकलना पड़ेगा बाहर, तब जाकर ही गर्मी से बचाव किया जाएगा, और इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात कही राबिया जी आपने। घर में बुजुर्ग लोग होंगे आपके, बूढ़े लोग हैं आपके परिवार में?
1: है।
0: तो आप उनकी सेहत का कैसे ध्यान रखती हैं? जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेहत का किस तरह से आप ध्यान रखती हैं?
1: उनकी सेहत का ध्यान भी हम इसी तरह रखते हैं, उनको भी इसी तरह समझाते हैं जिस तरह छोटे बच्चों को समझाते हैं कि अगर तुम बीमार पड़ जाओ, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, तो ठंडा पानी ना पिए, उनका भी इसी तरह से ही ख्याल करती है।
0: ठीक है राबिया जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कहिए, आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: दीदी जी, हमारा कॉल का जरूर सुनवाइए मैम, हमारा कॉल सबसे पहले नंबर पर लीजिए दीदी जी।
0: ठीक है राबिया जी, बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: दीदी जी, कीर्ति जगमला है अगर आपका नाम, तो आप सुबह में ये वाला गाना सुनवाइएगा, सारे चेहरों से अच्छे है चेहरा तेरा।
0: ठीक है राबिया जी, आपकी पसंदीदा गीत को हम कार्यक्रम में जरूर शामिल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: दीदी जी, मैं कुछ मित्रों का नाम लेना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बोलिए।
1: दीदी जी, मेरे मित्र है महाराज मलिक, शहनाज मलिक, सानिया मलिक, सबना मम्तासी, शहनाज कुरैशी, तिला मलिक, यही मेरे मित्र है। लड़के है फरा है वो जो फजगर से, और हीना कोसर है जोरकोट जिला बिजनौर से।
0: उन सभी को हमारा नमस्कार।
1: ठीक है।

0: हेलो रेडियो सखी।
1: हेलो,
0: हाँ जी, हमसे कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सानिया बटिक बात कर रही हूँ। हम
0: सानिया जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे, आप बताइए कीर्ति जगमोला मैम कैसे हो आप?
0: सरप्राइज कर देती हैं आप मुझे।
1: जी मैम, मुझे बहुत खुश होती है मैम आपसे बात करके।
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सानिया जी। और कहिए, कैसी हैं आप?
1: हाय मैम, मेरे लड़के ने एकदम चैटी सी हो गई। मैंने कहा पता नहीं आज कौन सी मैम होगी।
0: कहिए सानिया जी, कैसी पड़ रही है आपके शहर में गर्मी?
1: मैम गर्मी की तो बात पूछ रही ना, बहुत तपत पड़ रही है आसमान से, जैसे जैसो कि आग बरस रही है वैसा हो रहा है।
0: जी, जैसे कि गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप और गर्म हवाएं लेकर आता है, ऐसे में अपने परिवार का और सेहत का और उनके आराम का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। सही खान पान, पर्याप्त मात्रा में पानी, साफ सफाई और थोड़ी सी सावधानी से हम अपने बुजुर्गों और बच्चों को या पूरे परिवार को ही सुरक्षित रख सकते हैं। आप गर्मियों
1: मैम
0: में अपने परिवार का किस तरह से ख्याल रखती हैं?
1: जी, मैम देखो हमारे घर में छोटे बच्चे भी है, यानी कि मेरे भतीजे है, उनको ज्यादा धूप में निकलने नहीं देते, मतलब बस 11-12 बजे बाहर निकलने नहीं देते हैं, शाम तक 4-5 बजे तक अभी भी वे सो रहे हैं। फिर समय समय पर उन्हें पानी पिलाते हैं, खान पान का भी ध्यान रखते हैं, ताजा भोजन देते हैं, ना कि बासी नहीं देते हैं, ज्यादा ठंडा देते हैं, नींबू पानी पिलाते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं।
0: बहुत अच्छा, सुरक्षित उपाय आप कर रही हैं अपने परिवार के लिए। तो जैसे कि आपने पानी की बात करी, तो आप फ्रिज का पानी यूज करती हैं या मिट्टी का घड़ा का, आजकल जो बहुत चलन में है कि मिट्टी के घड़े का पानी यूज किया जाता है?
1: जी, शुद्धता होती है मिट्टी के घड़े के पानी में, शुद्धता होती है, हम वही यूज करते हैं फ्रिज का भी।
0: अच्छा सानिया जी, गर्मियों में बाहर का खाना खाने से किन समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है?
1: जी मैम, बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है,
0: जी, जैसे कि
1: जैसे कि मैम लीवर समस्या हो जाती है, किडनी समस्या हो जाती है, हार्ट समस्या हो जाती है बाहर के खान पान की, क्योंकि उनमें मिलावटी चीजें होती है ना, तेल मसाले ज्यादा डालते हैं।
0: अच्छा ये बताइए सानिया जी, परिवार के लिए गर्मियों में सबसे अच्छा दैनिक रूटीन जो आप रूटीन फॉलो करती हैं वो क्या हो सकता है?
1: प्रबंधन करते हैं सुबह उठकर, ऐसे रात को तो सुबह रात को तो सो जाते हैं 9 बजे, ताकि सुबह जल्दी उठ सके और फिर समय का प्रबंधन बना सके, फिर समय पर सारे काम निपटा देते हैं और टाइम से एक सब कमरे में लेट जाते हैं सोने के लिए, फिर 4 बजे निकलते हैं बाहर।
0: कहिए सानिया जी, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: मैडम बत्ती गुरु मूवी का शौक सुनना, सोचता हूँ कि वो फिर मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते, बत्ती गुरु मूवी का।
0: ठीक है, बहुत ही अच्छी आवाज है सानिया जी आपकी।
1: मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पूरा सुनाना, मुझे पसंद आया सॉन्ग।
0: पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है सानिया
1: हम
0: जी,
1: आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप समझती हो ना।
0: ठीक है सानिया जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम,
0: नमस्ते। हमसे कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सानिया हूँ,
0: सानिया से तो अभी बात हुई थी हमारी।
1: गांव हरपाल से बोलती हूँ, जिला सहारनपुर के पास से। मैम
0: ठीक है सानिया जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: बस हम भी ठीक, और घर परिवार में सब ठीक हैं?
1: जी मैम, सब।
0: तो गर्मियों का क्या हाल है आपके शहर में? किस तरह से पड़ रही है गर्मी?
1: मैम गर्मी तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। मैम
0: तो ये बताइए, अपने परिवार का किस तरह से बचाव करती हैं इस भीषण गर्मी से?
1: हम ज्यादा बाहर नहीं निकलने देते और सारे काम निपटा लेते हैं, और धूप का अगर कोई भी काम होना तो शाम के टाइम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं शाम के टाइम ही लोगों का।
0: अच्छा सानिया जी, अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में त्वचा से या आंखों से संबंधित दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो आप
1: जी
0: इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, अपनी त्वचा का और आंखों का देखभाल किस तरह से करती हैं?
1: मैम, हम ज्यादातर तो चश्मा पहनने चाहिए वैसे, और पूरे आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए, जी ठंडा पानी भी देने चाहिए, मुंह भी धो लेना चाहिए क्योंकि गर्मी हो रही है ना, और ठंडा पानी पीना चाहिए, और पशु पक्षियों के लिए भी रखना चाहिए ठंडा पानी,
0: बिल्कुल सही बात है कि अपने साथ साथ हमें,
1: पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये
1: मैम
0: बताइए,
1: हम तो फ्रिज का पानी रखते हैं पशु पक्षियों के लिए।
0: तो ये बताइए कि आप परिवार में खुद को या अपने परिवार वालों को डिहाइड्रेशन से, जैसे पानी की कमी हो जाती है ना शरीर में ज्यादा धूप में?
1: मैम हम नींबू पानी देते हैं, और
0: अच्छा
1: दिन में वो कई बार पी भी लेते हैं, और हमने घर पे ही एक्स्ट्रा ORS के पैकेट रखे हुए हैं।
0: अच्छा
1: जी ORS के पैकेट हम तुरंत रखते हैं मैम। जी
0: बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अपनी सेहत के लिए आप इतने जागरूक हैं।
1: मैम, हम मम्मी पापा को भी पिलाते हैं और भाई बहनों को पिलाते हैं, अगर ORS भी खत्म हो जाता है ना तो चीनी का पानी और नींबू का पानी घोल कर दे देते हैं मैम।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। सानिया जी, क्या सुनाया जाए आपको?
1: मैम जीने नहीं दूंगा मूवी का फिर गाना है। जी मैम, उसका नाम है गाना, तेरी याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया। थैंक
0: ठीक है सानिया जी,
1: यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू सानिया जी, कॉल करने के लिए
1: थैंक
0: धन्यवाद। तो प्रस्तुत है जीने नहीं दूंगा फिल्म का ये गीत।

0: हेलो रेडियो सखी,
1: हाँ जी मैम,
0: हमसे कौन बात कर रही हैं?
1: मैं कृष्णा बोल रही हूँ।
0: कृष्णा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ,
0: कहाँ रहती हैं कृष्णा जी?
1: मैं देहरादून में रहती हूँ।
0: देहरादून में। अच्छा, तो ये बताइए कि परिवार में कौन कौन है आपके?
1: परिवार में हस्बैंड और बच्चे।
0: कृष्णा जी, गर्मियों में बच्चों को बार बार बीमार होने से बचाने के लिए आप क्या करती हैं? कौन कौन से उपाय करती हैं?
1: बच्चों कोशिश करती कि बच्चे कम से कम बाहर जाएं, और खाने पीने में जैसे हल्का खाना, बाहर का खाना अवॉइड करते हैं।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि बाहर का खाना अवॉइड करती हैं, तो गर्मियों में बाहर का खाना खाने से कौन कौन सी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है?
1: बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि गर्मियों में खाना जल्दी से खराब हो जाता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप फ्रिज के पानी का यूज करती हैं या आजकल मटके का चलन बहुत हो गया है?
1: मटके का पानी यूज करती हूँ,
0: अच्छा, कोई खास कारण?
1: मतलब उसका पानी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी ठंडा रहता है। फ्रिज के पानी से तो गला पकड़ जाता है।
0: कृष्णा जी, जैसे गर्मी के मौसम में त्वचा और आंखों की समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में कौन सी सुरक्षा हमें अपनानी चाहिए ताकि हमारी आंखें और जो हमारी त्वचा है वो सुरक्षित रह सके? किस तरह से देखभाल करनी चाहिए?
1: नहीं, जैसे बार बार अपना फेस और आई बार बार धोनी चाहिए पानी, ठंडे पानी से, और धूल मिट्टी से अपने आप को बचाना चाहिए।
0: जी, अच्छा, घर में बच्चों को गर्मी में डिहाइड्रेशन से कैसे बचाया जाए?
1: बच्चों ने नींबू पानी पिलाओ।
0: अच्छा, ये बताइए कि क्या गर्मियों में योग और हल्का व्यायाम फायदेमंद होता है?
1: हाँ जी हाँ, थोड़ी बहुत करना चाहिए योग। और
0: कृष्णा जी, ये बताइए कि परिवार के लिए गर्मियों में सबसे अच्छा दैनिक रूटीन क्या हो सकता है?
1: मॉर्निंग में सुबह जैसे जल्दी 5 बजे उठ जाए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा घूम के आ जाए, और उसके बाद घर में आके थोड़े से योगा वगैरह कर लो, फिर नाश्ता हल्का सा करो और खूब पानी पियो। और जैसे आजकल तरबूज खीरा ये जो फ्रूट्स हैं जो हमें हाइड्रेट करते हैं, इनका इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा, और तला भुना अवॉइड करें गर्मियों में।
0: बिल्कुल सही कहा कृष्णा जी। कहिए कृष्णा जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप?
1: ये वाला गाना, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं।
0: ठीक है कृष्णा जी, आपके फरमाइशी गीत को हम कार्यक्रम में जरूर शामिल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

तो सखियों, इस गीत के साथ ही समय हो चला है अब कार्यक्रम को समेटने का। जो सखियां हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहती हैं और बनना चाहती हैं रेडियो सखी, उन्हें सिर्फ करना यह है कि प्रत्येक बुधवार को ठीक 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में हमें कॉल करना है। हमारा फोन नंबर है 7088001382। जी हाँ, 7088001382। फोन इन प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी सखियों के साथ करते हैं ढेर सारी बातें, साझा करते हैं उनके साथ जरूरी जानकारियां। और कार्यक्रम का प्रसारण अगले दिन गुरुवार को ठीक 12:30 पर कार्यक्रम महिला जगत में किया जाता है। तो कॉल करना ना भूलें। और जो सखियां अपने सुझाव हमसे साझा करना चाहती हैं वो हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। तो सखियों, इसी के साथ ही मैं कीर्ति जखमोला अब आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।

श्रोताओं, महिला जगत के अंतर्गत रेडियो सखी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा

0: के बाद स्वदेश लौट आए हैं श्री मोदी। संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज भी हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर रोक लगाने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। ऊर्जा निगम प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं और कामकाजी महिलाओं को

0: सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पौड़ी जिले के उत्तरी झंडी चौड़ में आधुनिक हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थी और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में अब जागरूकता बढ़ने लगी है। ऊर्जा निगम की ओर से जागरूकता अभियान के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर आम जनता के हित के लिए हैं। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक जीएस बुदियाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं कि इससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों को रोजाना बिजली खपत की पूरी जानकारी मिलेगी। इसके लगने के बाद बिजली चोरी भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि लोगों के जागरूक होने से स्मार्ट मीटर का विरोध भी अब कम हो रहा है।
1: हमारे जनता में या उपभोक्ता में एक भ्रांति है स्मार्ट मीटर को लेके कि इससे जो है बिल ज्यादा आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी का है। बिल ज्यादा आने का कोई सवाल ही नहीं उठा, और इसके बहुत फायदे हैं। एक तो बिजली चोरी रुकेगी, दूसरा आप अपने डेली के कंजम्पशन को मॉनिटर कर पाओगे। तो हम लोग ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे कि स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, और इसके फायदे से उनको बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, और धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है और विरोध कम हो रहा है।
0: आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए पिथौरागढ़ परिवहन विभाग ने आज सुबह पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने यात्रा मार्ग पर संचालित वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स परमिट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की। इस दौरान दिल्ली पंजीकरण की एक निजी कार यात्रियों को लेकर आदि कैलाश यात्रा पर जाती पाई गई। जांच में वाहन का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वाहन को सीज कर दिया गया और वाहन स्वामी तथा चालक के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं अनियमितताओं के चलते एक अन्य वाहन को भी सीज किया गया, जबकि 19 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। एआरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि यात्रा अवधि के दौरान सघन प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेंगे और निजी वाहनों में सवारी ले जाते पाए जाने पर वाहन को तत्काल सीज किया जाएगा।
2: जो चेकिंग है वो लगातार चुला आदि कैलाश पिथौरागढ़ इस मोटर मार्ग पर हम लगातार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों की विशेष रूप से चेकिंग कर रहे हैं, और जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं और जितने भी जो गाड़ी वाले हैं उनको हमने विशेष रूप से निर्देशित कर रखा है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही आप बुकिंग लें, और दूसरी चीज की प्राइवेट वाहनों में आप सवारी बिल्कुल न ढोएं। ऐसा करता पाए जाने पर आपके वाहन जो है वो तुरंत सीज किया जाएगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट।
3: IOCL उत्तराखंड के राज्य स्तरीय समन्वयक कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि तेल उद्योग अपने व्यापक आपूर्ति नेटवर्क के माध्यम से ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिसमें टर्मिनल, डिपो, LPG बॉटलिंग प्लांट और रिटेल आउटलेट शामिल हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है और निर्धारित सुरक्षा और परिचालन मानदंडों के अनुरूप बिना किसी प्रतिबंध के आपूर्ति जारी है। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को LPG की आपूर्ति भी सामान्य रूप से जारी है और राज्य भर में वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नागरिकों को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक की स्थिति और वितरण योजना पर मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे सामान्य रूप से खरीदारी करते रहें और अनावश्यक रूप से घबराकर खरीदारी न करें। उन्होंने कहा कि ईंधन की उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पौड़ी जिले के उत्तरी झंडी चौड़ में आधुनिक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। बाल विकास विभाग द्वारा लगभग 3,60,00,000 रुपए की लागत से बन रहा यह हॉस्टल क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी सौगात बनकर उभरेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि इसमें 28 कमरे बनाए जा रहे हैं, जहां कामकाजी महिलाएं सुरक्षित वातावरण में रह सकेंगी। इसके अलावा भवन में डाइनिंग हॉल, रसोई, शौचालय और बाथरूम की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कार्यों के लिए शहरों और कस्बों में रहकर कार्य कर रही हैं। राज्य में लगातार बढ़ते तापमान और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी स्वास्थ्य इकाइयों को गर्मी से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के जिला और उप जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष स्थापित करने को कहा गया है। इन कक्षों में मरीजों को तत्काल राहत देने के लिए कूलिंग सिस्टम, आइस पैक और पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। पहले ठंडा करें, फिर परिवहन करें प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है, ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि राज्य सरकार हीट वेव की चुनौती को लेकर पूरी तरह गंभीर है और सभी जिलों को समय रहते तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच चार धाम यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बनाए गए ऑफलाइन यात्री पंजीकरण केंद्र में अब तक पंजीकरण करने वालों की संख्या 2,28,000 के पार हो गई है। इनमें पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर रोक लगाने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। ऊर्जा निगम प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पौड़ी जिले के उत्तरी झंडी चौड़ में आधुनिक हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आई श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में ये पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल के मधुर स्वर में फिल्म मर्जावा से। गीत है रश्मि विराग का और संगीत निर्देशन है तनिष्का। तो सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए गीते को क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत AR रहमान और साथियों की खूबसूरत आवाज में फिल्म गुरु से। गीत है AR रहमान का और गीत है गुलजार का।

एफ एम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। तो ये सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म करण अर्जुन से। आवाज़ है अलका याग्निक कुमार सानू और साथी की। तो सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का अभी आप आनंद ले रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता।

0: लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
0: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को

0: संरक्षण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओ, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं, लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो, कान लगा कर सुनो सुनो, ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई।

0: एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू, तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता, उधर कूदता, उधर उछलता, इधर कूदता, इधर उछलता, उधर कूदता, उधर उछलता, इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
2: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में

0: जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे, फिर दादी माँ?
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खा

0: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
1: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
2: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
3: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
2: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
1: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
3: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
1: अच्छा ठीक है
2: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
3: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
0: क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
2: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
3: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
2: अरे वाह,
5: अरे वाह अटकू मटकू।
3: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
1: पेड़ हमारे
2: दोस्त हैं।
1: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: श्रोताओं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार।
11: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस: India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits the use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take

0: And is China 49 lakh crore and India is now 22 lakh crore. Our every year growth is 30 to 40%. Now our aim is to make Indian edible industry number one in the world.
1: The minister added that the government is also working on alternative fuel and biofuel, ethanol, methanol, biodiesel, LNG, electric and hydrogen. In an effort to decongest examination centres for the Civil Services Preliminary Examination 2026, the Union Public Service Commission, UPSC, has introduced three new examination centres at Bhubaneswar, Kanpur and Meerut. With the addition of these centres, the total number of centres for the preliminary examination has increased from 80 to 83. According to UPSC, nearly 23,000 candidates have applied to these new centres, easing the rush at the adjoining centres for civil services examination. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The West Bengal government has made the singing of Vande Mataram mandatory during morning assembly prayers in all madrasas across the state with immediate effect. The order has been issued by the Directorate of Madrasa Education. According to the notification, the directive will apply to government model madrasas, government aided madrasas, recognized unaided madrasas, as well as approved Shishu Shiksha Kendras and Madhyamik Shiksha Kendras functioning under the Minority Affairs and Madrasa Education Department. A report.
2: The move aims to bring uniformity in assembly practices across all educational institutions under the department. The order has been circulated to district magistrates, district inspectors of schools and the West Bengal Board of Madarsa Education for implementation. The development comes nearly a week after the state government made the singing of Vande Mataram compulsory in all state-run and aided schools. Heads of institutions were directed to ensure that all students participate in the national song before the commencement of classes. Meanwhile, the move also comes amid efforts by the union government to strengthen provisions related to respect for national symbols. The centre has proposed amendments to the Prevention of Insults to National Honour Act 1971, including making obstruction to the singing of Vande Mataram a punishable offence. Anuja Kumar for Akashwani News.
1: The repoll in the Paltta Assembly constituency is going on peacefully in West Bengal. Peaceful voting is being conducted in the Paltta Assembly constituency in South 24 Parganas district in the state today. Total 60.43% voting has been recorded till 1 p.m. After the withdrawal of TMC candidate Jahangir Khan from the contest, the main fight is among the BJP, Congress and CPI-M. In Tamil Nadu, the Joseph Vijay-led government expanded its ministry today, paving the way for a coalition cabinet in the state. 23 new ministers, including two members from the Congress Party, were inducted into the cabinet. With the latest expansion, the cabinet's strength has risen to 32, including Chief Minister C. Joseph Vijay. The Congress has now returned to the state cabinet after nearly 6 decades, with the National Party being represented in the Tamil Nadu ministry for the first time since 1967. The newly expanded cabinet also includes 4 women ministers. We have more from our correspondent.
3: The 10-day-old government led by Chief Minister Joseph Vijay has been on support given by the Congress, VCK, CPI, CPM, IUML and a part of the AIADMK. Earlier today, the newly inducted Congress ministers, accompanied by senior Congress leaders of the state, visited the Rajiv Gandhi Memorial at Sri Paramathur to pay their respects on his memorial day. The AIADMK faction supporting the government was not present at the expansion event today at Lok Bhavan. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
1: The first session of the newly constituted Keralam Assembly commenced in Thiruvananthapuram today. Pro Tem Speaker G. Sudhakaran administered the oaths to the newly elected members. The election for the Speaker's post will be held tomorrow. The ruling UDF has nominated Thiruvanchur Radhakrishnan as its candidate for the post. The BJP, which has 3 members in the assembly, is expected to field B.B. Gopakumar as its candidate, while the opposition LDF is yet to announce its decision on the election. In Jharkhand, 25 CPI Maoist insurgents and two members of the extremist outfit JJMP surrendered before the state police at the headquarters in Dhurwa, Ranchi today. The surrendered ultras also laid down a large cache of arms and ammunition, including an LMG, INSAS and SLR rifles, a pistol, magazines and nearly 3,000 live cartridges. Police said eight of the surrendered Maoists carried a combined bounty of 33 lakh rupees and a total of 426 criminal cases were registered against them. Director General of Police Tadasa Mishra said the state government will ensure rehabilitation of the surrendered insurgents and address their demands under the surrender policy. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border.
4: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a 4-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
5: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति. सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया. केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया. पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश. तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार. मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य. और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से. अब समाचार विस्तार से. भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
6: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
5: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
7: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
5: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
8: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत

0: चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
5: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। जान लिख दी देश के नाम जिन्होंने, जान लिख दी देश के नाम जिन्होंने, वो कहाँ मौत से डरते हैं। वतन रहे महफूज सदा, वतन रहे महफूज सदा, बस यही दुआ वो करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के उस महान योद्धा की जिनका नाम साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयर मार्शल अर्जन सिंह की। साथियों, ये भारतीय वायुसेना की पहले और अब तक के एकमात्र

कार्य रहे, जिन्हें मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की 5 सितारा रैंक से सम्मानित किया गया और उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने 1965 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

0: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए और आज हम बात कर रहे हैं मार्शल अर्जन सिंह की। तो साथियों, अर्जन सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश भारत के लॉयलपुर में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी थे। इन्होंने 1964 से 1969 तक तीसरे वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नेतृत्व किया। अर्जन सिंह ने मात्र 19 वर्ष की आयु में रॉयल एयरफोर्स कॉलेज क्रैनवेल में दाखिला लिया और 1939 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय वायुसेना के नंबर 1 स्क्वाड्रन में शामिल होकर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सेवा की और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने अराकन अभियान के दौरान इस स्क्वाड्रन की कमान संभाली और विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित हुए।
1: होशियार।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मार्शल हरिजन सिंह की। साथियों, 1945 में उन्होंने ब्रैकनेल स्थित आरएएफ स्टाफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1947 में भारत के विभाजन के बाद दिल्ली के लाल किले के ऊपर रॉयल इंडियन एयरफोर्स के विमानों की पहली फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। और इसके बाद उन्होंने ग्रुप कैप्टन के पद पर रहते हुए अम्बाला स्थित वायुसेना स्टेशन की कमान संभाली। 1950 में बकिंघम शायर के लैटिमर स्थित संयुक्त सेवा रक्षा कॉलेज में स्टाफ कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें एयर कमोडोर के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने ऑपरेशनल कमांड का कार्यभार संभाला। और उन्होंने दो बार ऑपरेशनल कमांड की कमान संभाली। 1958 में इस पद को एयर वाइस मार्शल के एक रैंक पर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद तक उन्नत किया गया था।

साथियों, सन 1964 में अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना प्रमुख बने, तब उनकी उम्र महज मात्र 45 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी संभालना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। फिर 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर में सेना भेजने का प्रयास किया था। इसके बाद पश्चिमी मोर्चे पर भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया, लेकिन अर्जन सिंह ने इसका जवाब अपने विशिष्ट अंदाज में दिया। एक घंटे में अपने वादे के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने एक घंटे के भीतर ही बख्तरबंद हमले को नाकाम कर दिया। हालांकि भारतीय वायुसेना को शुरुआत में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने वापसी की और संघर्ष के दौरान रणनीतिक जीत हासिल की, और युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व के लिए मार्शल अर्जन सिंह को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और 15 जनवरी 1966 को भारतीय वायु सेना के योगदान को मान्यता देते हुए सीएस के पद को एयर चीफ मार्शल के पद में अपग्रेड किया गया, और मार्शल अर्जन सिंह एयर चीफ मार्शल का पद धारण करने वाले पहले अधिकारी बन गए।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मार्शल अर्जुन सिंह की। साथियों, अर्जुन सिंह केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि बेहद विनम्र और अनुशासित व्यक्ति भी थे। वे हमेशा युवाओं को देश सेवा और अनुशासन का संदेश देते थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और साहस से कोई भी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि उनका साहस, उनकी देशभक्ति और उनका योगदान हमेशा हर भारतीय के दिलों में जीवित रहेगा।

0: श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मुद्दता से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश में पर्यटन और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई होम स्टे योजना के दुरुपयोग के मामलों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन और पर्यटन विभाग की संयुक्त जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाले होम स्टे के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए पिथौरागढ़ परिवहन विभाग ने पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सघन प्रवर्तन अभियान चलाया। कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पौड़ी जिले के उत्तरी झंडी चौड़ में आधुनिक हॉस्टल बनाया जा रहा है। ये हॉस्टल विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कार्यों के लिए शहरों और कस्बों में रहकर कार्य कर रही हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध मद महेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और उससे सटे उत्तरकाशी जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू चलने की चेतावनी जारी की गई है और मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर स्वास्थ्य

0: विभाग भी अलर्ट मोड पर है। चिकित्सकों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 MHz पे। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित गाने नए तराने। तो सुनते हैं प्यार, वफा और इंतजार की गहराई को बयां करता कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म जब तक है जैसे। गीत है गुलजार का, संगीत है आर रहमान का और आवाज़ है जावेद अली और शक्ति श्री गोपालन की। तो सुनिए ये गीत और जुड़े रहिए आकाशवाणी देहरादून के साथ।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अभी आप सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की खूबसूरत आवाज़ को सुन रहे थे फिल्म धूम 3 से FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने। तो आइए बढ़ाते कार्यक्रम को और आगे और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। अलीशा चेन्नई, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों से सजा ये अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म डॉन से। तो सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए आपको सुनवाते हैं दिल की धड़कनों में छुपा एक प्यार का एहसास से भरा ये गीत फिल्म दिल तो पागल है से। आवाज़ है लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

श्रोता, प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मोहब्बतें से। आवाज थी लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथी की। FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है गाने नए तराने। आई श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म गजनी से। गीत है प्रसून जोशी का, धुन सजाई है यार रहमान ने और गीत को आवाज़ दी है जावेद अली और सोनू निगम ने। तो सुनिए ये गीत।

मीका सिंह, सुनिधि चौहान और साजिद खान की खूबसूरत आवाजों से सजा ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हाउसफुल से। श्रोताओं, फिल्मी गीत गाने नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। तो आइए गीतों के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म कृष से। आवाज थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। श्रोता आप सुन रहे हैं गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म शेरशाह से। गीत और संगीत है तनिष बागची का और आवाज है जुबिन नौटियाल की।

FM 100.5 MHz भी आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आई श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं गाने नए तराने का ये अंतिम गीत फिल्म वंस अपॉन ए टाइम। आवाज़ है कार्तिक और साथी की, तो सुनिए ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने अब यहीं पर संपन्न हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
2: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है।
3: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीज़ों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जैन के असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, JNK पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब इतना बड़ा आतंकवादी और इतना
1: बड़ा जी कि
0: सब
1: कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिस पर अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। BSF की बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
0: जी।
1: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
0: जी।
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
0: जी,
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
0: जी
1: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
0: जी
1: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
0: बिल्कुल

0: ये सबको 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फख्र की बात है
1: बिल्कुल,
0: हम
1: बहुत
0: ऑर्गेनाइजेशन
1: सम्मान
0: के
1: की
0: लिए।
1: बात है और ये देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा, वो कैसे आप लोगों ने, आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ, जब फायरिंग हुई, फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई, जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ
0: खुद
1: बड़ा
0: कुछ
1: करना
0: अटैक
1: है।
0: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए, और तब तक तो ये खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
1: बिल्कुल
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है, और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं,
1: जी
0: मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
1: डिजाइन किया।
0: बनाया था, डिजाइन किया
1: अच्छा
0: था, और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई।
1: जी
0: अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया, या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया, तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था, और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल किए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली
1: ओके
0: सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका
1: जी
0: किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले, हमारे पर फायर करे,
1: या
0: हमारे
1: वो भागने की
0: हम
1: कोशिश करें।
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी,
1: अच्छा
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी स्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे,
1: जी
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकेंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। और थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ़ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद हम सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदम कद शीशे के, जो कि वॉल में फिट था और
1: अच्छा
0: बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था। नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं
1: कुछ
0: था,
1: भी नहीं।
0: लग रहा था खाली है, और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख
0: गाजी
1: रहा
0: बाबा
1: है
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था। तो
1: बिल्कुल
0: वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई, जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था पाकिस्तानी
1: अच्छा
0: टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं,
1: अच्छा
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके,
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती। और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा,
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों।
1: अच्छा,
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो दो ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। तीन ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया?
0: हाथ
1: आप
0: का,
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही OT में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज क्या संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया है,
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में वो गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई,

0: कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है बह के
1: जी
0: बाहर आता है।
1: जी
0: फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया।
1: जी आपने जैसे
0: और क्या,
1: बताई
0: उस
1: फायरिंग
0: कमरे
1: के
0: में
1: दौरान।
0: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल
1: और
0: सकता था।
1: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर में।
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था,
1: जी
0: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक
1: अच्छा अच्छा
0: यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी
1: जी
0: पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने
1: जी
0: एक जीवन रक्षक के तौर पे
1: बिल्कुल,
0: ड्राइंग रूम में लगा रखा
1: जिसने
0: है
1: आपका दिल
0: उसमें।
1: बचाया।
0: यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, बस सफिशियंट
1: बिल्कुल
0: थी वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस
1: एग्जैक्टली
0: भी दिमाग में आया
1: एग्जैक्टली
0: कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो
1: अच्छा
0: शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है। फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो
0: कि
1: जाता है और फिर
0: हाँ, कि मैं
1: होश
0: अगर कुछ
1: चले
0: दिन
1: जाते
0: बाद
1: हैं।
0: मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन
1: जी
0: है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने
1: आने
0: लगते हैं।
1: जी जी
0: बट
1: जी
0: मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए,
1: जी
0: जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं हो पाई
0: एस्टेब्लिश नहीं
1: होगी
0: हो पाया, शिनाख्त
1: जाहिर है।
0: बाद में हुई,
1: जी
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्टर जनरल BSF मिले मुझसे,
1: जी
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन ICU, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो,
1: जी
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना, मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा
1: जी
0: था।
1: जी
0: मैंने कहा सर फॉर वॉट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री, होल नेशन एंड BSF इज प्राउड ऑफ यू
1: क्या
0: एंड
1: बात कर
0: BSF
1: रहे।
0: टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफूर हो
1: हाँ
0: गया।
1: खत्म हो गया,
0: ये
1: सही कहा
0: नहीं
1: आपने।
0: लगा कि दर्द में तो हम थे,
1: जी
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी
1: बिल्कुल
0: पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट
1: सक्सेसफुल
0: होता है, अगर
1: बिल्कुल
0: आप फाइनल फतह कर लेते हैं,
1: जी जी
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना,
1: हाँ
0: वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो
1: कम
0: जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है,
0: हाँ,
1: यस
0: ये
1: उसका
0: है,
1: एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी
0: इतनी
1: थी
0: बड़ी
1: कि
0: थी।
1: उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल
0: हाँ
1: होगा।
0: बिल्कुल, ही वाज ए ड्रीम चेज फॉर एवरी
1: एग्जैक्टली
0: फोर्सेज, ही
1: बिल्कुल
0: वाज ए हॉट
1: बिल्कुल।
0: केक इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो
0: कर ही रहा
1: अपने
0: था
1: नमूने
0: फॉर
1: पेश
0: मोर देन
1: करता।
0: 9 ईयर्स वैली में, 1994 से 2001 तक ही वाज ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC 814 हाइजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस शालीमार किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001,
1: बिल्कुल, मैं
0: पार्लियामेंट
1: अनगिनत
0: पार्लियामेंट
1: पार्लियामेंट
0: अटैक
1: अटैक
0: तेरह
1: कितना
0: दिसंबर
1: बड़ा
0: दो हजार एक
1: बिल्कुल
0: तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा
1: बहुत
0: अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: भी
1: बहुत
0: दिन
1: बड़ी
0: में
1: बात
0: 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है,
1: जी।
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लानर
1: इतना
0: था,
1: बड़ा प्लान है, इतना बड़ा
0: पाकिस्तान से
1: आतंकवादी
0: लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के,
1: जी
0: लॉजिस्टिक्स वेपन ID एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस
1: बिल्कुल
0: और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतनी बड़े एम्बेसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी
1: बहुत
0: थी,
1: बड़ी बहुत
0: और
1: बड़ी। सर यहां
0: बहुत
1: पर
0: BSF का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ।
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं
1: क्योंकि
0: इसको
1: ये
0: अपॉर्चुनिटी
1: डेयर
0: मानता
1: डेविल।
0: हूँ क्योंकि
1: जी
0: BSF एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क, और जान पे जूझने वाले लड़के उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा।
1: बिल्कुल,
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है
1: जो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी, मेरे आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था मैं। चाहता तो अपने किसी नंबर टू को भेज सकता था, नंबर थ्री को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है।
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
1: मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो।
1: बिल्कुल,
0: गाजीबाव के माथे में घुसना कोई सिंपल।
1: और जैसे आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, हम
1: मिलता नहीं।
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते।
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बाडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी
1: जी,
0: बाय द आईसी स्काडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड इन दुबे सर को आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है या सिलजर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
1: जी,
0: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे, तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है।
1: बिल्कुल,
0: ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा,
0: उनके बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी बैज
0: बच्चन,
1: हाँ अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है,
1: रखी है वो आपकी यादगार।
0: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: फिल्म
1: अनबिलीवेबल,
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
1: जी,
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
1: बिल्कुल।
0: है
1: सर एक चीज, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं, लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान जाएगी या जान ली जाएगी।
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
1: या मरने का,
0: तीसरा कुछ नहीं होता,
1: तीसरा कुछ नहीं। या तो
0: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं।
0: दो ही कैटेगरी होती है, मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं,
1: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
1: जी,
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
1: बिल्कुल।

0: बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बीके दत्त है,
1: जी
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।
1: सर, देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए सर, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है,
0: जी
1: होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। ये
0: क्या बात,
1: उस फील्ड सिचुएशन का गाना है जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके।
1: तो बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब BSF आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक, अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई, जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए।
1: अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और 1 साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था, तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाई हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाई हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं, कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे,
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई

0: यंगस्टर कोई जाना चाहता है बीएसएफ में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: बीएसएफ में एंट्री के लिए तीन लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
0: जी,
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है।
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटर्न बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
0: बिल्कुल।
1: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
0: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
1: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया। 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से। उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में सरकारी,
0: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए, उसके अलावा
1: ये 9 वर्ष NIA में,
0: अच्छा,
1: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया।
0: जी,
1: और कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
0: अच्छा,
1: मेरे दिल से लगा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया।
0: अच्छा।
1: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
0: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से ग्रीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
0: अच्छा।
1: तो थैंक यू सो मच, हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
0: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
1: ये सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है।
0: जी,
1: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी।
0: जी,
1: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
0: बिल्कुल।
1: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी।
0: ओके।
1: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है।
0: जी,
1: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में।
0: जी,
1: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये।
0: जी सर, एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
1: क्या बात है।

0: उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके
1: जी
0: पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं।
1: जी
0: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के
1: बेशक,
0: चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज़ होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जैसी शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक
1: आप
0: यू,
1: सुन रहे हैं
0: थैंक
1: आकाशवाणी
0: यू।
1: रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और अधिक विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तथा इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वेन ओ यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग की कई घटनाओं की असामाजिक तत्वों के शामिल होने का पता चलता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रही है। बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां संयंत्र पूरे मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। LPG का उत्पादन बढ़ा दिया गया है और प्रतिदिन रिफाइनरियां संयंत्र में लगभग 46 से 47 हजार टन LPG का उत्पादन हो रहा है। नई दिल्ली

0: में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि इस क्षेत्र में सभी मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये फैसला लिया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। ठीक शाम 7:00 आप सुनेंगे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता उत्तराखंड में औषधीय पौधों की खेती। आरएनए देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण प्रसारित किया जाएगा शाम 7:50 पर।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर प्रियंका चौहान गर्ग से रमेश चंद्रा की बातचीत। कार्यक्रम स्पॉटलाइट का समय रहेगा रात्रि 9:15 पर और खेल पत्रिका का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, ये थी जानकारी। हमारी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब आपको कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। कल सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 23वें अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का सजीव प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शैल संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे संतोषी के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा प्रातः 8:30 पर। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम अनुभव में सुनिए डॉक्टर देश दीपक से संकल्प मिश्रा की बातचीत। सुबह 10:02 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे गोपाल दास और साथियों के स्वर में जौनसाली लोकगीत सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत श्रीमती गार्गी मिश्रा से कहानी एक नई शुरुआत। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे भरत शिंदे का तबला वादन, आप प्रस्तुत करेंगे ताल पंचम सवारी और तीन ताल। कार्यक्रम कृषि जगत आप सुनेंगे शाम 7 बजे, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे जैव विविधता और पर्यावरण विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे श्री सुमन कुमार।

ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम के 5:10 हुए हैं, अब सुनिए कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपका दोस्त सक्षम, मैं रहूंगा आज आपका साथी इस मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर सफर का। दोस्तों, आज के दौर में क्रिएटिविटी और इनोवेशन का दौर है। अब करियर जो है वो सिर्फ पारंपरिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें टैलेंट और क्रिएटिविटी के दम पर भी शानदार भविष्य बनाया जा सकता है। ऐसे में एक उभरता हुआ करियर क्षेत्र है डिजाइनिंग का। अब दोस्तों, ऐसा होता है कि हम जब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग का ही नाम आता है। लेकिन डिजाइनिंग का क्षेत्र ना सिर्फ इतना छोटा नहीं है, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ज्यादा रोचक है। आज ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और गेम डिजाइनिंग जैसे कई क्षेत्रों में युवा अपना करियर बना रहे हैं और औरों के लिए भी ये पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर आपको ड्राइंग, क्रिएटिविटी, कलर और नए आइडियाज़ पसंद हैं तो डिज़ाइनिंग का ये जो क्षेत्र है ना, ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आज के समय की अगर हम बात करें तो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए डिज़ाइनर्स की मदद ले रही हैं। चाहे कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, एडवर्टीजमेंट हो या फिर सोशल मीडिया कंटेंट, हर जगह क्रिएटिव डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा मांग है। विशेष रूप से ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आज के डिजिटल एरा में काफ़ी डिमांड में है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग वेबसाइट, एप्लीकेशंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेहतर और यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। दोस्तों, बातों का सफर रहेगा जारी, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है सुनिधि चौहान और मोहित चौहान ने और जिस लिया गया है फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, डिजाइनिंग के क्षेत्र की ना एक बहुत ही खास बात है कि आप इसे ना नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग के तौर पर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं। आज कई युवा घर बैठे ही ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से देश विदेश में बैठे क्लाइंट्स के साथ जुड़कर अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर आपको इस क्षेत्र में इंटरेस्ट है तो दोस्तों, क्रिएटिविटी के साथ साथ ना आपको टेक्निकल स्किल सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ऑटोकैड, फिग्मा और 3D डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हैं जो इसके लिए अलग अलग कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और लगातार प्रैक्टिस को आप हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। दोस्तों, आने वाले समय जो है वो AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला है, तो ऐसे में डिज़ाइनिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए इस क्षेत्र में युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस मिल पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कुछ नया सोचने की और चीज़ों को खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करने का हुनर है तो डिज़ाइनिंग की दुनिया आपके लिए ढेरों अवसरों से भरी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा आइडिया ना इंसान की पूरी पहचान बना देता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये गीत जिस लिया गया है फिल्म तारे ज़मीन पर से और जिसे गाया है विशाल ददलानी ने।

दोस्तों, हम युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हर गुरुवार आप सभी के लिए लेकर आते हैं रोजगार समाचार, जो रखते हैं आपको अपडेटेड सभी रोजगार अवसरों के बारे में। आइए सुनते हैं आज के रोजगार समाचार। भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लगभग 17,000 वैकेंसीज निकाली गई हैं। योग्यता 10वीं पास, ITI या फिर संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें आयु सीमा 18 से लेकर 33 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मई 2026 रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 9,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। योग्यता 10वीं या 12वीं पास मांगी गई है। आयु सीमा 18 से लेकर 27 वर्ष तक रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई 2026 है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एनालिस्ट और अन्य पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। योग्यता स्नातक या फिर संबंधित क्षेत्र में डिग्री मांगी गई है। आयु सीमा 21 से लेकर 35 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई 2026 है। आवेदन SBI करियर पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। IAS, IPS और केंद्रीय सेवाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है। आयु सीमा 21 से लेकर 32 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जून 2026 रखी गई है। आवेदन UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO में करीब 900 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें योग्यता ITI, 10वीं पास या फिर डिप्लोमा मांगी गई है। आयु सीमा 18 से लेकर 27 वर्ष है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 रखी गई है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपर PCS के 123 पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। इसमें डिप्टी कलेक्टर, DSP और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं। योग्यता इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगी गई है। आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की गई। इसके लिए जो परीक्षा रखी जाएगी वो अप्रैल की 2026 में रखी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में। आगे सुनते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म लक्ष्य से। गाया है शान ने।

दोस्तों, आज के समय में कार सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। नई कार खरीदते समय लोग अक्सर लुक्स, माइलेज, फीचर और प्राइस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसे वो अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है सेफ्टी रेटिंग। दोस्तों, सेफ्टी रेटिंग ये बताती है कि कार में बैठे यात्रियों की सुरक्षा कितनी मजबूत है और दुर्घटना के समय वो कार कितना सुरक्षित उन सभी लोगों को रख पाएगी। आज सड़क दुर्घटना काफ़ी बढ़ती जा रही है, ऐसे में सिर्फ अच्छी ड्राइविंग ही नहीं दोस्तों बल्कि सुरक्षित कार होना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेफ्टी रेटिंग होती क्या है। दरअसल, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कार्स की क्रैश टेस्टिंग करती हैं और इन्हीं टेस्ट में वो उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंट में कोई भी कार बिहेव करती है, उसका स्ट्रक्चर कितना मजबूत रहता है, एयरबैग्स कितने प्रभावी रूप से खुल पाते हैं और अंदर बैठे जो मैनिक्विन्स होते हैं क्या वो सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं। इसके बाद इसी के आधार पर कार्स को 1 से लेकर 5 स्टार्स के बीच में रेटिंग दी जाती है। जितने ज़्यादा स्टार्स उतनी ही ज़्यादा सेफ कार। आज के समय में ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप जैसी संस्थाएं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर काम कर रही हैं और लोगों को जागरूक बना रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ना कम कीमत और ज़्यादा फीचर्स को देखकर कार खरीद लेते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के समय यही छोटी सी लापरवाही कई बार बड़ी बन जाती है। एक अच्छी सेफ्टी रेटिंग वाली कार में मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, एयरबैग्स, एबीएस ब्रेक्स, साथ ही साथ सीट बेल्ट रिमाइंडर और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपकी जान बचा सकते हैं। आज के समय में जागरूक कस्टमर सिर्फ माइलेज देखकर नहीं बल्कि सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देकर कार्स खरीदते हैं और ये सोच सड़क सुरक्षा को बेहतर बना सकती है। अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो उसकी सेफ्टी रेटिंग को ज़रूर चेक करें, क्योंकि कार सिर्फ सफ़र आसान बनाने के लिए नहीं होती है बल्कि आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए भी होती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फीचर्स कंफर्ट दे सकते हैं लेकिन सेफ्टी आपकी जीवन बचा सकती है। तो अगली बार जब भी आप कार खरीदने जाएं तो स्टाइल और माइलेज के साथ साथ आप ये भी ज़रूर चेक करें कि उसकी सेफ्टी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि सुरक्षित सफ़र ही सही सफर होता है दोस्तों। आइए इसी के साथ सुनते हैं मीका सिंह की आवाज़ में ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म खिलाड़ी 786 से।

तनाव तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये हमारी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी हिस्सा बन चुका है। कई लोग मानते हैं कि AI आने वाले समय में इंसानों की नौकरियां छीन लेगा, लेकिन सच बात तो यह है कि दोस्तों, AI सिर्फ चुनौतियां ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए नए अवसर भी लेकर आया है। आज हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जिसे लोग पोस्ट AI वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां पर इंसान और AI साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि स्किल्स सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली हैं। जो युवा नई टेक्नोलॉजी को समझेंगे और उनके साथ काम करेंगे, वही आगे आने वाले समय में आगे बढ़ पाएंगे। आज AI के कारण कई नए करियर ऑप्शंस भी उभर रहे हैं, जैसे AI स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, रोबोटिक इंजीनियर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और UI/UX डिज़ाइनर्स। इसके अलावा दोस्तों, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, मीडिया और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी AI उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। पोस्ट AI दुनिया की सबसे ज़्यादा खास जो बात है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं बल्कि जो ह्यूमन स्किल्स है ना, उन्हें भी बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी जो क्वालिटीज़ हैं, वो AI कभी भी पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए युवाओं को टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी और सॉफ्ट स्किल्स पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोडिंग, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन जैसी फील्ड्स में स्किल्स रखते हैं, तो आगे आने वाले समय में आपके लिए अवसरों की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। आज कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कोर्सेज की मदद से युवा घर बैठे ही कई नई स्किल्स सीख पा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, ये आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर रिमोट जॉब्स कर सकते हैं और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसके ज़रिए ना, आपको कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ भी दोस्तों आप हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ज़रिए आप वहीं से अपना काम पूरा कर सकते हैं। इस बदलती दुनिया के साथ दोस्तों, हमें डरना नहीं है बल्कि हमें इसको समझना है और इसके साथ मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ही आई है। तो हमें इसको समझना होगा, जानना होगा कि आखिर इसके कौन से पहलू ऐसे हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमको इसमें अपना योगदान भी देना होगा, इसको समझकर सब चीज़ों को करना होगा। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम लोगों को खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा उन सभी चीज़ों के लिए जो आगे आने वाले समय में हैं। हमें उन्हें खुले मन से अपनाना होगा और पूरे साहस के साथ उन्हें सीखना होगा। तो पोस्ट AI की जो दुनिया है दोस्तों, इसमें संभावनाएं भरी पड़ी हैं। बस मौका चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो उसे ग्रास्प कर पाए। दोस्तों, भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो बदलाव के साथ खुद को बदलते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए इसी के साथ सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे लिया गया है फिल्म तारे ज़मीन पर से और जिसे गाया है रमन महादेवन ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: दोस्तों, आज युववाणी कार्यक्रम में हमने आपके साथ बात करी डिज़ाइनिंग के करियर में, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में करियर के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, हमने आपसे बात करी कार में सेफ्टी रेटिंग क्यों ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, हम लोगों ने ये भी जाना कि पोस्ट AI वर्ल्ड में युवाओं के लिए करियर कौन से ऑप्शंस हैं। अब दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद ज़रूर आया होगा और आपने आज के इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। जैसे डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हम सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हम लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें उसमें ईजाद कर ली हैं, काफ़ी विस्तार हम लोगों ने उस चीज़ का किया है, जो कि रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। साथ ही दोस्तों, क्यों कार्स में सेफ्टी रेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दोस्तों हमारी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं होता है। तो फ्लैशी फीचर्स देखकर या फिर माइलेज देखकर

हम कार ना लें, बल्कि हम हमेशा ये भी ध्यान रखें कि जो भी कार हम ले रहे हैं उसमें सेफ्टी रेटिंग होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, AI हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा अगर हम लोग साथ साथ काम करते रहेंगे, अगर हम उसको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का, मगर जाने से पहले आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम युववाणी, द्वारा निर्देशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड। हमारा पिन है 248001। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर भी हम पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-0007-31। साथ ही दोस्तों, आप ईमेल द्वारा भी हम तक अपने संदेश व सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com। इसी के साथ आप मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। आप सुनिए पर्वतीय जिलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम सुन रहा सभी श्रोताओं थे नमस्कार प्रणाम सिमरिया। हमारे स्टूडियो का घड़ी में ठीक 5:45 और 33 सेकंड होना चाहिए। यु बगच क्षेत्रीय बोली भाषा का विशेष कार्यक्रम ग्राम जगत को आज का कार्यक्रम में मिछो आप सभी का दगड़ी आशना कंडिया लेंगी स्वागत कर दूँ आप सभी को आज का ये कार्यक्रम में ग्राम जगत कार्यक्रम जखमा हम बात करदा आपा की हमारी बोली भाषा में अपना उत्तराखंड का क्षेत्र विशेष की संस्कृति समाज से जुड़िया विषयों पर कभी वार्ता तो कभी भेंट वार्ताओं का माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचांदा छा। दगड़ा में ही कविता कहानी नाटकों का माध्यम से अपनी बोली भाषा थे संजोए और बचे के रखने वाला लोगों थे न्यूतदा छा हम ये कार्यक्रम में। दगड़ा ही दूर दराज जयकर वखा की स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित जन समस्याओं थे आप सभी का बीच लेके आंदा छा। यहाँ का अलावा भी बहुत कुछ ये कार्यक्रम में तो आप सभी ठीक व्यखन भगत 5:45 पर सदनी सुना ये कार्यक्रम थे सूचना और जानकारी का दगड़ा दगड़ी मनोरंजन भी ये कार्यक्रम में हम आप थे करांदा छा। जी हाँ पुराना लोकगीत जो आप थे कखी भी नहीं सुनने को मिलना सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टूडियो से आप थे वो सुनने को मिलना और इनका मयाला गीत जो आपन कखी नहीं सुनी हुला अगर आप अभी भी इंटरनेट का माध्यम से यूट्यूब पर वो गीतों से सुनता चाहें तो कखी ना कखी वो गीत विलुप्त हुएगी ऊँकू जो एक हम्बुलदा ओरिजिनल रिकॉर्ड जो जो वो हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। तो इन्हें सुंदर कार्यक्रम से जुड़ना बहुत सुंदर एक बात होली कि लगी बोली भाषा का प्रति भी हम आप सभी लोगों थे सजग करदा। तो दोबारा आप सभी को स्वागत करूँ छो आज का ये कार्यक्रम में और श्रोताओं जिनकी आप जानते ही छा कि आज को हमारो कार्यक्रम को जो क्रम वो हुंदु चिट्ठी पत्रियों को। जी हाँ बिप्यारा का दिन हम आप सभी की चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में शामिल करदा हफ्ता भर की समीक्षात्मक रूप में। तो घड़ेक में ही ध्यान जी चिट्ठी पत्रियों का बक्सा लेके आप सभी का बीच कार्यक्रम में शामिल होला और ये का अलावा कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सभी उठे धैर्य लगाने छो चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com यो हमारो ईमेल को पता छे। ये पता पर आप लिख भेजा अपना बात विचार ठीक 7 बजे तक यो कार्यक्रम चलनु छो और हम आपकी चिट्ठियों का सार रहला किले कि आज को हमारा जो कार्यक्रम छो वो चिट्ठी पत्रियों को ही छे। तो कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर सी कुमावनी गीत का साथ करना छा तावा सुनला ललित कुमार का आवाज़ में यू सुंदर सी कुमावनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, रविवार से पहले आप सुनना चाह ललित कुमार का स्वर मायू सुंदर से कुमावनी गीत और जन की आप सभी जुड़ना चाह। आज तारीख छिन 21 मई और 21 मई का दिन हम मनाता चाह राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। यहाँ का दगड़ ही हम मनाता चाह आतंक विरोध दिवस। जी हाँ, जिनकी हम सभी थे पता चे कि 1991 में वो एक आतंकवादी हमला का दौरान उनकी मृत्यु वेगी है। ये दिन पर हम अपना जनमानस थे आतंकी हमला और हिंसा का बारे में बुरा परिणामों का बारे में जागरूक करता छा। देश में शांति सद्भाव और मानवता थे बढ़ावा देने को संकल्प को उद्देश्य ये दिन पर हम लेंदा छा। और आज का दिन पर हम उनकी पुण्यतिथि मनाना चाह ऊँ हम श्रद्धा सुमन अपनी पूरी ग्राम जगत कुटुंबदरी की तरफ से आप पटाना छा अर्पित करता छा। और अब कार्यक्रम

0: और आशीष भुलन खूब जोर जोर से थे लगे, लेकिन वही हिसाब से फिर वही छुई बल रुई छुई और फिर वही छुई कमी कम
1: नेटवर्क
0: चिट्ठे
1: को इशू होणो च बल।
0: हैं
1: हाँ
0: कन के पता
1: टावर नहीं
0: आप
1: आना चिंता भी तो चिट्ठी नहीं आनी।
0: आप पहले हम बोलता छा ना पता है आपने जब चिट्ठियों का जमान छा ना
1: जी
0: तो हम अपन गांव कनक इन बोलता छा कि भाई हो सके डाकवान भेजी कुजान कखली ओल चिट्ठी नहीं आवली या अपन पोस्ट ऑफिस में डाल ओलू तो सही पता नहीं लिया खोलू
1: जी
0: तो हम तो चिट्ठी नहीं मिली। अब ये बहाना अपन बहुत सुंदर बता दिया हम तक क्या साहब टॉक क्या चो टावर
1: टावर
0: और क्या बोल देने सिग्नल
1: सिग्नल।
0: है और क्या बोल देने नेटवर्क नहीं चाहे तब
1: जी
0: चिट्ठी नहीं आ साहब ये सॉन्ग तरीका छे। लेकिन फिर भी साहब अगर देहरादून मास वो क्या बोल देने नेटवर्क ठीक नहीं रहा तो कख रहे
1: आजकल जगह जगह सड़की जो छे ना खुदी छे तो कखी ना कखी जो छे की जो वो तार बाड़ जो होंदी छे ना खराब हो जांदी छे।
0: पक्की बात छे क्यों दगड़ मिले छो तुम है लेकिन फिर भी उन भाई बंधुओं को स्वागत जो उनके हम तक चिट्ठी पैटे चाहे एतवारा दिन पैटे और जब नेटवर्क ठेकरा हम तक पहुंचे
1: जी
0: शुरुआत करना।
1: जी हाँ कार्यक्रम की शुरुआत विनीता थपलियाल जी की चिट्ठी से कर दा। जागृति विहार नेहरू ग्राम बटे हम ते चिट्ठी पटांदी छिन सदनी, लेकिन छिन ग्राम जगत की पूरी कुटुंबदारी थे दिनेश चंद्र थपलियाल की तरफा बटे ब्योखंदा की सेवा सोली।
0: क्या
1: अब
0: चियो
1: देखा घबरोल है
0: हाँ
1: ईमेल क्या कू नौ क्या कू और चिट्ठी क्या हो रही।
0: भल भाई कि वो एक हमारा और छाप है उनको नौ बीस रिज्यूमे में
1: जी
0: उनको ईमेल पर तब यूं लोगों को चिट्ठी आन छा आज विनीता थपलियाल जी ईमेल पर दिनेश थपलियाल जी चिट्ठी गजब घबरोल ठीक बाला अपन के लगना छे ना
1: लेखना चिन्ह विगत 15 तारीख में स्तंभू प्रसाद की जो गढ़वली कहानी छे छोटी फूफू ये खूब भली लगी। कहानी से रतुड़ा गांव को ऐतिहासिक परिचय भी प्राप्त हुए। कहानी में कई लुप्त प्राय शब्द जन की घसण कई लव्वा पतपूड़ा आदि का प्रयोग से कहानी काफी रोचक वेगी छे।
0: जी
1: यहाँ का अलावा 16 तारीख में विनय ध्यानी जी और अलका पांडे की उत्तराखंड में ग्राम उद्योग पर आधारित नया उद्योगों का वास्ता जो भेंट वार्ता छे वो बहुत ही लाभदायक छे। साथ ही 18 तारीख में राजीव चौहान और विनय ध्यानी जी की वार्ता जौनसार क्षेत्र का खेती किसानी से जुड़े लोगों का वास्ता बड़ी उपयोगी छे। यहाँ का अलावा 19 तारीख में आयोजित गढ़वली कवि सम्मेलन जो छो यूं ते बहुत ही ज्यादा भलो लगी। और लिखना चिन्ह कवि सम्मेलन में शामिल होने वाला कवि कमल लिंगवाल दिनेश कुटारी और वीरेन पमार थे कविता पैटाण का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चिन्ह।
0: बहुत बहुत आभार आपको कि आपने हमारा सभी कार्यक्रम भला लगे इन छोड़ बटे शुरू कर दें कि आप था लोक कवि गोष्ठी पसंद है
1: जी
0: और जखमा सभी कवियों सुंदर रचना प्रस्तुत करें और कोशिश हमारी यह हों कि जब भी कोई लोक कवि गोष्ठी कहानी हम आप तक पहुँचवाऊँ वे माँ आपने एक जो पहाड़ की घर गाँव की खुशबू छो ना वो आना चाहिए। अगर कविता भी आनी छिन तो लगो कि हाँ कखी हिलास कखी कफू छ कखे काफल छन कखे डांडी कांटी छन ये होना चाहिए।
1: जी
0: यही तरीके से अपन कहानी का बाबत भी लिखी रतुड़ी जी कहानी छे छोटी फूफू बहुत पसंद करेगा हमारा काफी और श्रोताओं ने भी और सच में पहाड़ का जनजीवन से जुड़ा और हमार आम जीवन का जो शब्द छन अगर उन था गठिया कि हम कोई कहानी कोई रचना लिखदा ना तो वही में वाकई बहुत भली रस्याणान और लगु चुके हाँ ये शब्द कि हर चीज छा लेकिन फिर दोबारा हमारा जो साहित्यकार छन कहानीकार छन वार्ताकार छन वो दोबारा यूं शब्दों थे जिंदा करना छन। तो बहुत बहुत आभार सभी कार्यक्रम आप तक तो पसंद है और ऐथिर व्यापक चिट्ठी आने रे लेना हम तक खैर छे छो
1: लेकिन ध्यानी जी
0: भरोस
1: मैं ना थोड़ा सा यू सोचना चाहो धन्यवाद हम उनके कुकरण
0: हाँ ये बात भी ठीक दुयों था खैर दिन कोई बात नहीं
1: तीन यू थे
0: तीन तीसर को
1: तीसरो बिहुलु कोई ना कोई। हाँ
0: जेलिया खोल
1: जी
0: ठीक ठीक
1: तो सारा परिवार थे हम धन्यवाद करदा कि टक लगे कि आप हम कार्यक्रम सुनदा छा और हफ्ता भर का कार्यक्रमों का प्रति आप समीक्षा हम तक पहटांदा छा।
0: हैंक चिट्ठी
1: कार्यक्रम में आगने बढ़ना छा और एक चिट्ठी विकास सकलानी जी की लेना छा हम पौड़ी गढ़वाल बटे ग्राम जगत परिवार थे प्रणाम करना छिन बुना छिन ग्राम जगत अच्छी राह पर चलनु छे। रुद्रप्रयाग जिला की ग्राम झांकी बहुत प्यारी लगी। लोक कलाकार अंजलि का दगड़ी भेंट वार्ता बहुत सुंदर छे। उनका लोकगीत भी खूब भला लगिन। राजकीय आदर्श स्कूल संगला कोटी की किलकारी बहुत सुंदर लगी। प्यारा नांदिनों का दगड़े बल आनंद आगी छो। भगवान कार्तिक स्वामी का दर्शन कैरी की मन बल खुश वेगे।
0: ठीक
1: चार मई का दिन मेरी दादी को देहांत हो गई छो, जे कारण से मैं कुछ दिन तक ग्राम जगत नहीं सुन सक्यो, लेकिन दोबारा आप सुनो छो। स्वरोजगार खेती विषय पर राज

0: शिव चौहान का दगड़े भेंटवार्ता शानदार लगी। 19 तारीख की लोक कवि गोष्ठी भी बहुत सुंदर लगी। वन्य जीवों और मानव का टकराव पर योगेंद्र सिंह रावत जी का दगड़े जो भेंटवार्ता छे यू भी उन पसंद करी। और बुनाचिन विकास का नौ पर पहाड़ों को कटान और जंगलों थे बर्बाद करण परिणाम बल भयानक हुए सकदु छे एक और होणो छे।
1: सकलानी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन बहुत दिनों बाद हम तक चिट्ठी भेजी। कारण आपन लेख आयल तो दैदी जग भी हो हमारे तरफ बटकी हूँ तो श्रद्धा सुमन।
0: जी
1: और आप लिखना चाहें कि सभी कार्यक्रम भला लगें और भल बाट पर हिटणू चे। अब अट कब गुआ हम ये बताओ पहले।
0: ना ना इन्नी बुना छिन तारीफ करना छिन हमारी
1: अच्छा
0: जरा से थपथपाना छिन
1: ठीक
0: आपते
1: ठीक
0: हां।
1: ठीक ठीक ऐ तो लिखना चाहिए आपके सब जो कार्यक्रम आपन सुने चाहे वो रोजगार से जुड़े। संजीव चौहान छिन वहाँ पिछले चिट्ठी में भी यूं नो राजीव
0: राजीव
1: चौहान हो
0: जी
1: गया। तो ये संजीव चौहान छिन जो दगड़ मन आपते बातचीत सुना है। लोक कवि गोष्ठी भी आपते हैं पसंद है ब्याल की और परसक और ब्याल का आपते हैं यो योगेंद्र सिंह रावत जी को दगड़ जो भेंटवार्ता छे वो भी पसंद है। अभी आप ही देखा कि हाल फिलहाल ही में जो खिरसू क्षेत्र छो पौड़ी क्षेत्र छो वह बाघ को आतंक छो
0: जी
1: यही विषय पर हमन जब वो एक क्षेत्र में जाया छा तो हमन बोली भाई जो लोग ऐसे जूझना छे जो वे पर अध्ययन करना छे मानव जीव संघर्ष पर
0: जी
1: तो उनसे बातचीत करी जाए। कुल मिला के बात यह है ना कि जो हमारे स्थल रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम होंगे ना वो हमारे ये कार्यक्रम एक जान होंगे। जब हम चाहे कार्तिक स्वामी जाना छुआ चाहे हम खिरसो जाना छुआ चाहे हम रुद्रप्रयाग जाना छुआ चाहे हम संगलकोटी की किलकारी बटौना छो तो ये का खातिर हम तो क्षेत्र में जान पड़त।
0: जी
1: और जब हम वक बात करना चाहे नानतिनों से ग्रामीणों से वक की जन समस्या वक का विकास कार्यक्रम तो वो एक बिल्कुल अलग प्रतिबिंब हमारे कार्यक्रम में देखें।
0: जी
1: और आप जना लोग जो कि दिल्ली बैठे हैं चन कोई
0: हम
1: कुड़दर बैठे हैं चन
0: जी
1: कोई देहरादून बैठे हैं चन
0: जी
1: जब भी अपने घर गांव छुए सुन दिन ना तो वाकई चाहे कुछ हो ना हो शोर तो चली जान घर
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: जी
1: तो बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद विकास सकलानी जी सदैनी आप हमारे दगड़ जुड़े रहे और लगातार हम तय आप चिट्ठी भेजना रहे।
0: जी हाँ। कार्यक्रम में अब ध्यान जी हम एथर बढ़ला और एक सुंदर सी गढ़वाली पुराणों से गीत हम कार्यक्रम में शामिल करना चाह स्वर्ज प्रभा पंत को।

0: प्रभा पंत का स्वर में अपन सुन यो पुराण गीत और यो पुराण लोक छन जो कि आकाशवाणी नजीबा बाद बटक जौन अपन संगीत की यात्रा शुरू कर लगभग 3 दशक पहले ये गीत की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी नजीबाबाद का स्टूडियो में हुए। और ई कलाकार हमर बीच छन या जुन्नी भी छन, हमर कोशिश कि उनका गीतों तय उनकी आवाज़ तय हम जिंदा रखा। तो चिट्ठी पत्रिका अंक में सदन हम कोशिश कर दें कि एक पुराण गीत आप खातिर लेख अवा हम। तो आज कार्यक्रम में यू छ गढ़वाल लोकगीत और कलाकार छ प्रभा पंत। अब एक दा फिर चिट्ठी पत्रियों की बात हम कर ला, लेकिन वही से पहले हम अपन पता की भी बात कला और जोरदार धय लगौला कि लेकिन ब्याज भी लगा आज भी लगौला।
1: जी हाँ, हमारे ईमेल को पता है chittigramjagat@gmail.com ये पता पर आपन हम तक अपना बात विचार लिखण, हफ्ता भर का जितना भी कार्यक्रम आप हमारा सुनना छा वेका बाबत भी लिखण, कुछ आप दोबारा सुन चाहना छन तो वेका बाबत भी आप हमते जरूर लिख भेजा
0: आप चिट्ठी।
1: एक चिट्ठी कार्यक्रम में प्रेमनगर

0: लंबी वाला बटे हमारे पास आई छे हेमदरमणि थपलियाल जी हमते चिट्ठी पटाना छे कि मैंने अपने स्वरचित कविता पाठ और गीत आकाशवाणी का 90 साल इत्यादि प्रेषित कर रहे छिन बल। और अगर कविता पाठ रुचिकर होलू तो कृपया आप स्वर टेस्ट खून पुनः आमंत्रित करण को आदेश पारित करा
1: ये
0: बल।
1: बाबा आदेश है ना साहब ना, हम निवेदन करना
0: भारी से शब्द ना
1: और वही तो बना
0: आदेश।
1: बापा। लेकिन थपलियाल जी, हमने आप तक पिछली चिट्ठी में भी बताए, वैसे पिछली चिट्ठी में भी बताए कि कविता पाठ का खातिर कोई स्वर परीक्षा नहीं छो, गीत गाना खुणी, भजन गाना खुणी, जो आप बोना चाहे वही को बात हमने बोली कि गीत गाना खुणी आप ते स्वर परीक्षा देनी होली। लेकिन अगर आप कविता पाठ का खातिर आन चंदे ना, तो वो में कोई स्वर परीक्षा की बात नहीं छो, बल्कि आपका आलेख जो अपन हम तक भेजो छो वो को अध्ययन कला देखला कि कुकुर रचना प्रसारण का योग्य छन, और अगर प्रसारण का योग्य होला तो पक्की बात है कि आप ते आमंत्रित करे जाल, कोई आदेश की जरूरत नहीं होली, बल्कि हम आप ते आमंत्रण भेजला
0: जी
1: और आप ते बतौला कि फला दिन अपन हमारे स्टूडियो में अपन कविताओं की रिकॉर्डिंग का खातिर।
0: जी हाँ
1: ये बात बाकी और सुनदार भी सुनना होला हमारा कि अगर आप हमर केंद्र बटे कोई कहानी, कोई कविता, कोई वार्ता प्रसारित करण चंदन, तो वे का खातिर सबसे पहले काम आपक यो छे कि आपन वही रचना को आलेख हम तक भेजण, और उखमा अपन पूर्व पता, टेलीफोन नंबर ये सब दे देण। अगर वाकई हम तो लागल के हाँ भाई बुलाण चाहिए न्यू था, तो पक्की बात है कि हम सीधा फोन कर ला पहले तो आप, और तब जो एक औपचारिकताएं हो देन उन तभी पूर कला, और वो एक बात आप हमार ये कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपनी कहानी, अपनी वार्ता, अपना कविता पाठ का खातिर। तो आप जरूर लेखा कई भी विषय पर जो कि आपको अपन रुचिकर विषय चाहिए या जय मां आपक विशेषज्ञता चाहिए, वही पर आधारित आप आलेख हम तक भेज सकते हैं। जन कि आप जानना छन कि कोई कहानी लिख दो, कोई वार्ताओं में भी बहुत सारी वार्ताएं छन, स्वतंत्र वार्ताएं छन, पहाड़ से जुड़ी वो बात जो कि लोगों तक पहुंचना चाहते, तो ये तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं।
0: जी हाँ दीहानी जी। और जो लोग सदनी हमदगड़ी जुड़दन इतवार का दिन अपना फरमाइशी गीतों का साथ उनको भी हम धन्यवाद करना चाह।
1: जी
0: वे में शामिल छिन देवेंद्र सिंह चौहान जी, पीताम्बर सिंह चौहान जी, मंजू रावत, शिवलाल, मनोज फरसवाण, प्रेमा दानू, आयुषी भट्ट, विकास सकलानी, नीतू बिंजोला, सौम्या धूलिया, राकेश बमगाई, अनूप बमगाई और मंजुला तिवारी, वो लोग भी छिन जो सदनी हम तक चिट्ठी पटांदा छिन कखी ना कखी आजकल जगह वाला। और मनोरमा रावत जी भी बोला।
1: याद कह रहा अपन है,
0: जी
1: बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र चौहान ना बल्कि देवेंद्र रावत छनो,
0: रावत
1: और
0: जी
1: पीताम्बर चौहान छन, तो ये नाम तो हम तो सब याद हो गए ना, अब यहाँ
0: जी
1: खातिर कभी भी कुछ बोल तो हम ठीक ठाक कर देना।
0: जी
1: लेकिन भली बात है कि आप एतवारा दिन भी हमर दगड़ कार्यक्रम में रहने, और चिट्ठी पत्री में भी आपक स्वागत है। जब भी आप कुछ हमर दगड़ बचान चाहला तो आपक स्वागत है। हमारो जो साधारण डाक को पता चो वही था भी हम बताना चाहूँ आपने। चिट्ठी पत्र कार्यक्रम ग्राम जगत द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 24800001, तो ये पता पर आप अपन हतक लिखी चिट्ठी साधारण डाक से भेज सकते हैं, और जो हमार इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी को पता चो वो क्या चो एक बार फिर बताएं।
0: जी हाँ चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com ये पता पर भी आप हमसे संपर्क कर सकता।
1: तो यू चाहे हमार आज को चिट्ठी पत्री को अंक है एक धाप प्यारा दिन खारी चिट्ठियों था लेके उपस्थित होला आपका किना जा सुनारा।

श्रोताओं, अभी કાર્યક્રમમાં હમણ શામેલ કરીને આપકી હફતા ભર કી ચિઠ્ઠી જખમાં આપન હમારે કાર્યક્રમ કા બાબત આપણી વાત વિચાર લિખી છે. જિતના ભી કાર્યક્રમ યે હફતા પ્રસારિત કરેગે એનવા કા બાબત આપન ભલું લિખી દુબારા સુન કી ભી આપન ફરમાઇશ કરી તો વો આપથે દુબારા ભી સુનાયગે. તો હમ ઉમ્મીદ કરના આપ યહી તરહ સે કાર્યક્રમમાં હમારા સાથ બન્યા રહેલા ઓર આપણી ચિઠ્ઠી પત્રિયો કા માધ્યમ સે हम तक अपना बात विचार पहुँचाते रहना, किले की बहुत ज़्यादा ज़रूरी वे जानू छ. सिर्फ अगर हम मैक का पिछने बटे या आपका रेडियो का पैथर बटे आप थे सुनाना छा बुलना छा और आप हम थे सुनना छा, तो ईदगाह में ही बहुत नीचे भाई आप लोगों ते भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी छ. कार्यक्रम में कोई कमी पेशी आप थे लगनी छे तो वे बाबत भी आप निश्चिंत वे के लिख सकता, किले की ग्राम जगत परिवार छे जखमें आप और हम सभी मिली कर ये कार्यक्रम थे बढ़ांदा छा. जन की हम बुलदाय छा कि कुटुंबदारी छे और कुटुंबदारी में कुछ भी छोटू बड़ू अगर होंदू छे तो हम थे बुलण बहुत ज़्यादा ज़रूरी छे. तो उम्मीद कर ला आप सभी श्रोता हम दगड़ी चिट्ठी पत्रों का माध्यम से अपना बात विचारों का माध्यम से अपना सुझावों का

माध्यम से जरूर बनाए रहला। श्रोताओं, कार्यक्रम का क्रम हम अब एथिर बढ़ला और एक जौनसारी गीत आप सभी थे कार्यक्रम पेटाणु छो अनिल कुमार का स्वर में, लेकिन वैसे पहले कुछ रंत रेबार।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027, आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, रेबर का एथर पैथर आपन सुनी, यु गीत जो जौन सारी गीत छो अनिल कुमार का स्वर में, उम्मीद करता आपने गीत पसंद है होलू। और रंधरे बार भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विजावन छन, किला की वो जानकारी हम तक पटांदा छन। तो उम्मीद करता टक लगे कि आप हमारो कार्यक्रम में सुना होला। और चिट्ठी पत्रियों को आज को हमारो यू अंक छ, तो चिट्ठी पत्रियों का वास्ता एक बार पुनः आप थे दह लगाणु छो, चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com यू हमारो झटपटाक वाली चिट्ठी को पता छ। आप लिख भेजा हम तक अपना बात विचार, और जब कखी भी आप हम तक सुनना छा वो भी आप लिख भेजा। कार्यक्रम में एक छोटू सी गीत आप थे बताणु छो, बल्कि गीत ना, यू एक जागर छ, देवी गीत आप सभी का वास्ता, दीपा देवी का स्वर में।

0: श्रोताओं, ये देवी जागरण का दगड़ ही अब कार्यक्रममा बगच उत्तराखण्ड का प्रादेशिक समाचारको त आवा आप सबै सुना उत्तराखण्ड का प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह। श्रद्धालुओं की संख्या ने 16,50,000 का आंकड़ा पार किया। राजधानी देहरादून में भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना को देखते हुए अस्पतालों और चिकित्सा इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। और नैनीताल जिले के भवाली में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चारधाम यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। यात्रा शुरू होने के लगभग एक महीने में श्रद्धालुओं की संख्या 16,50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि प्रतिदिन 30,000 से अधिक यात्री विभिन्न धामों में दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल रहा है। इसके अलावा यात्रा को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर प्रदान करते हुए सामान्य कतार व्यवस्था लागू की गई है।
4: बार की यात्रा में एक विशेष बात देखी गई है कि लोगों में बहुत अधिक उत्साह है, और प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने हर संभव व्यवस्थाएं कर रखी हैं, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, चाहे वो पूरे ट्रैक रूट जहां जहां पर है वहां पर पेयजल की, स्वच्छ शौचालय, सभी चीजों की। वीआईपी दर्शन हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरे तरीके से बंद कर रखे हैं। किसी को गर्भगृह में जाकर पूजा करने का जो पहले होता था कि आप जलाभिषेक, रुद्राभिषेक सब कर रहे हो, वो केवल रात में जो विशेष पूजाएं होती हैं उसके लिए परमिटेड है। बाकी दिन में केवल स्पर्श दर्शन का एक समय निर्धारित है, उसके बाद हम स्पर्श दर्शन भी नहीं कराते हैं। तो कुल मिलाकर यात्रा की व्यवस्थाएं अभी तक ठीक चल रही हैं।
3: प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान और हीटवेव के प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। चिकित्सकों ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। देहरादून जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों और चिकित्सा इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ एस के झा ने लोगों से दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक आवश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। उन्होंने शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में तरबूज, नींबू पानी, जलजीरा, नारियल पानी और अन्य पानी युक्त फलों का सेवन लाभकारी होता है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें और गर्मी से बचाव के सभी आवश्यक उपाय अपनाएं। प्रशासन का कहना है कि सावधानी और जागरूकता से ही हीटवेव के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। ईंधन के वैश्विक संकट और राष्ट्र पर इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री की ऊर्जा संरक्षण की अपील का असर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वावधान में आज न्यायालय में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान के तहत नो व्हीकल डे मनाया गया। जिला जज सहित सभी न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता और कर्मचारी अपने आवासों से न्यायालय परिसर तक पैदल चलकर आए। प्राधिकरण के सचिव पुनीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की ऊर्जा बचाओ अपील पर जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से सप्ताह में दो दिन निजी या सरकारी वाहनों के बजाय पैदल आने की सलाह दी गई है।
5: प्रत्येक सप्ताह में जो दो दिन होंगे सोमवार और शनिवार, इसके लिए हमने एक अपील की है सभी अपने जो न्यायिक अधिकारी हैं उनसे, इसके अतिरिक्त अधिवक्तागण से और कर्मचारियों से कि वो सप्ताह में दो दिन निजी वाहनों से न्यायालय ना आकर पैदल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आए न्यायालय में आना सुनिश्चित करें। और इसमें हमने काफी सहयोग सभी अधिवक्तागण का भी और हमारे कर्मचारियों का भी और न्यायिक अधिकारियों का भी लगातार हमें प्राप्त हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
3: केंद्र सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। नैनीताल जिले के भवाली में सेनेटोरियम रातीघाट बाईपास मार्ग पर ढैला गांव के समीप आज एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से दो महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम ने सभी शवों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध मद महेश्वर मंदिर के कपाट आज श्रद्धा, भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कपाट खुलने की प्रक्रिया के अंतर्गत पुजारी शिवशंकर लिंग ने विधिवत पूजा अर्चना संपन्न कराई।
6: आज सभी श्रद्धालुओं को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि पांचों केदारों में ये आज जो द्वितीय केदार का कपाट है उद्घाटन हो गया है और आज से भगवान के जो नित्य पूजाएं हैं हिमालय में उपस्थित यह दिव्य मंदिर में होंगी। भगवान का प्रातः काल में अभिषेक, भगवान का महाभोग, सायंकालीन आरती, यह क्रम 6 माह तक चलता रहेगा। भगवान श्री मधुमेश्वर जी के दिव्य चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सब के मनोरथों को सिद्ध करें और अपनी भक्ति हृदय में बैठाएं और इस विश्व का कल्याण करें।
3: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में आयोजित दो दिवसीय परिवेशीय संसाधन आधारित अनुभवनात्मक भौतिकी कार्यशाला का आज समापन हो गया। कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षकों को स्थानीय संसाधनों और कम लागत की सामग्री के माध्यम से विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रयोगात्मक और विद्यार्थियों के जीवन से जोड़ने के तरीके सिखाए गए। कार्यशाला में देश के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, शिक्षाविद और पद्मश्री प्रोफेसर HC वर्मा ने मुख्य सूत्रधार के रूप में प्रतिभाग कर विज्ञान शिक्षण को सरल, रोचक और व्यावहारिक बनाने के गुण साझा किए।
7: विज्ञान ऐसा विषय है जो कि एक तरीके से देश के भविष्य को तय करता है, क्योंकि विज्ञान से टेक्नोलॉजी निकलती है, टेक्नोलॉजी से पावर निकलती है। तो जो बेसिक साइंसेज है जो हमारे स्कूल से शुरू होता है उसके प्रति लोगों का लगाव बढ़ना चाहिए और वो उनको उसके अंदर में आकर के शोध करने चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। तो इसी को एक लाने के लिए लोगों के अंदर में के कितना रोचक है, कितना अच्छा है, भविष्य के लिए कितना जरूरी है, इन सब बातों को लोगों लोगों तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा चल रही है।
3: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल की 5वीं वाहिनी मुख्यालय चंपावत में आज योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाहिनी के कमांडेंट सुरेंद्र विक्रम ने बताया कि 100 दिनों के योग काउंटडाउन अभियान के तहत वाहिनी मुख्यालय और वाहिनी के समवायों में योग सत्र का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह। श्रद्धालुओं की संख्या ने 16,50,000 का आंकड़ा पार किया। राजधानी देहरादून में भीषण गर्मी और हीट वेव की संभावना को देखते हुए अस्पतालों और चिकित्सा इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया और नैनीताल जिले के भवाली में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी श्रोताओं को अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम ग्राम जगत में। आज का कार्यक्रम में जो आपका दगड़ी आशना कंडियाल नेगी। उम्मीद करना आप कार्यक्रम की दूसरी पाली में अभी तक लगे कि हमारा दगड़ी जुड़िया होला। अभी आपन सुनिन प्रादेशिक समाचार और अब कार्यक्रम आपको जारी छे। श्रोताओं आज 21 मई छे और आज को दिन जो हम मनाना छा विश्व चाय दिवस का रूप में। जी हाँ, विश्व चाय दिवस हम किले मनांदा छा और क्या ये का पिछले कारण छे यू हम आपते बतौला, लेकिन चाय कितना महत्वपूर्ण छे। बस आप चाय को नाम सुनी कि आपते लगदू छे कि आहा बस एक प्याली चाय मिल जांदी। अगर हम थके आंदा तो हमते लगदू छे कि चाय हमारी पूरी थकान मिटा देली, या फिर आप क्या का घर जाना छा तो आतिथ्य के रूप में आपते अगर चाय नहीं मिली तो बाहरे तब तो भेजान दो कि उन हमते चाय ना पिले। तो चाय इतना ज़रूरी हम कुणे होंदी छे और कखी ना कखी अगर हम देखा तो आयुर्वेद का हिसाब से भी तमाम तरह की जड़ी बूटी चाय में डली जाती है तो वो हमारा शरीर का खातिर लाभदायक भी होती है। और 2005 की अगर हम बात करें, भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया और केनिया जन उत्पादक देशों मिलकर 15 दिसंबर थे अपना स्तर पर चाय दिवस मनान शुरू करी। वेका बाद संयुक्त राष्ट्र चाय का वैश्विक महत्व थे दिग्दावे 21 मई थे आधिकारिक तौर पर ये दिन थे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का रूप में घोषित करी। यु दिन खासकर इले मणे जांदू छे कि चाय उद्योग में काम करने वाला लाखों मजदूर जो छन उनका अधिकारों का प्रति, उनका सुरक्षित कार्यबल का प्रति और उचित मजदूरी का दगड़ा दगड़ी लैंगिक समानता की तरफ ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य से ये दिवस मनाए जांदू छे। दगड़ा में ही चाय थे अगर हम देखा तो कखी न कखी हमारो एक जुड़ाव होंद छे। अगर दुई लोग आपस में बैठा छे तो एक प्याली चाय बल मंगे लिंदा। अगर आप क्या का घर जाना छा, घर गाँव फुंडे अगर बेखन बगत हम घूमने कौन जाना छा तो चाय की कितली ना वो चूल्हा का मत चढ़ी रांधी छे। जितना भी लोग आना छे ऊँ थे लगातार चाय मन पर लगी छे। तो चाय कुछ ये प्रकार को पेय पदार्थ छे जो हमारी भावनाओं से जुड़ियो छे। मतलब हम थे इन लगदू छे कि शब्दों में भी हम ये थे व्यक्त नहीं कर सकता। तो आज का दिन हम मनाना छा उन सभी का खातिर जो चाय का बागानों में काम करना छन, चाहे वो असम दार्जिलिंग से लेकर अगर हम अपना गढ़वाल में ग्वालदम और कौसानी का उन मजदूरों की बात करें जो का हाथों से हमारे पास उनकी कड़ी मेहनत का बावजूद हमारे पास ये सुंदर से पेय पदार्थ मिल दो छे। तो आज आप सभी बोलता छे ना टी लवर चाय प्रेमियों खून बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज को दिन चाय दिवस का रूप में हम मनाना छा। श्रोताओं कार्यक्रम में एथर बढ़दा और अब आप सभी का वास्ता एक सुंदर सी गढ़वली लोकगीत बटाणु छो स्वर्च अनुराधा कोठियाल को।

0: श्रोताओं, अभी आप सुनना चाहा अनुराधा कोटियाल का स्वर में सुंदर सी युखुदेड़ गीत। अब कार्यक्रम में मठु मठु करी की बगत होणो छे गढ़वली में उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो आवा आप सभी सुना गढ़वली में उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटीन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ में मृणाल रतुड़ी। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटण खुण स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क। सभी स्वास्थ्य इकाइयों तय गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश। ऊर्जा निगम राज्य में स्मार्ट मीटर तय लेकी लोगों में फैलियां भरमू तय दूर कन खुण जागरूकता अभियान चलोणुच। रुद्रप्रयाग जिला में स्थित मदमहेश्वर मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं खुण खोली गया। और नैनीताल जिला का भवाली मां एक वाहन का गहरी खाई मां गिन से 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राज्य मां लगातार बढ़ता तापमान और मौसम विभाग की चेतावनी तय देखी स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटण खुण पूरी तरह सतर्क। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का तहत सभी स्वास्थ्य इकाइयों तय गर्मी से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया छन। राज्य का जिला और उप जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष स्थापित कन खुण बोल्यूच। यूं कक्षों में मरीजों तय तत्काल राहत देण खुण कूलिंग सिस्टम आइस पैक और पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था अनिवार्य करीच। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुरबेन बोली कि राज्य सरकार हीट वेव की चुनौती तय लेकी पूरी तरह गंभीर च और सभी जिलों तय समय का हिसाब से तैयार रहने का निर्देश दिया छन। उन बोली कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करी जानी च। प्रदेश में स्मार्ट मीटर खुण लोगों में अब जागरूकता बढ़नी च। ऊर्जा निगम की ओर से जागरूकता अभियान का तहत लोगों तय बते जाणुच कि स्मार्ट मीटर आम जनता का खातिर छन। ऊर्जा निगम का प्रबंध निर्देशक जीएस बुद्यालन बोली कि स्मार्ट मीटर तय लेकी लोगों में भ्रांतियां छन कि ये से बिजली को बिल ज्यादा औंदू। उन बोली कि यन बिल्कुल नीचे बल्कि स्मार्ट मीटर लगौण के बाद लोगों तय रोज बिजली खपत की पूरी जानकारी मिल ली, साथ ही बिजली चोरी में भी रोक लगली।
2: हमारे जनता में या उपभोक्ता में एक भ्रांति है स्मार्ट मीटर को लेके कि इससे जो है बिल ज्यादा आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी का है, बिल ज्यादा आने का कोई सवाल ही नहीं उठा। और इसके बहुत फायदे हैं, एक तो बिजली चोरी रुकेगी, दूसरा आप अपने डेली के कंजम्पशन को मॉनिटर कर पाओगे। तो हम लोग ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे कि स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इसके फायदे से उनको बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है और विरोध कम हो रहा है।
1: आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा का दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कन और अवैध वाहन संचालन पर रोक लगौण खुण पिथौरागढ़ परिवहन विभाग ने आज सुबह पिथौरागढ़ आदि कैलाश मार्ग यात्रा पर सघन प्रवर्तन अभियान चले। एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल का निर्देश मा प्रवर्तन दलन यात्रा मार्ग पर संचालित वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र, टैक्स परमिट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच करी। ये दौरान दिल्ली पंजीकरण की एक निजी कार यात्रियों से लेकर आदि कैलाश यात्रा पर जानी मिली। जांच में वाहन को व्यावसायिक उपयोग करी जानू पाई गई। मामला की गंभीरता ते देखी वाहन ते सीज करी गई और वाहन स्वामी चालक का विरुद्ध विभिन्न धाराओं में 35,000 रुपये को जुर्माना लगे गई, जबकि 19 वाहनों का विरुद्ध चालान की कार्रवाई करी गई। एआरटीओ प्रवर्तनन बोली की यात्रा अवधि का दौरान सघन प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रोलू और निजी वाहनों में सवारी लेकी जान पर वाहन तय तत्काल सीज कैरी जालू।
3: हमारी जो चेकिंग है वो लगातार चुला आदि कैलाश पिथौरागढ़ इस मोटर मार्ग पर हम लगातार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों की विशेष रूप से चेकिंग कर रहे हैं और जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं और जितने भी जो गाड़ी वाले हैं उनको हमने विशेष रूप से निर्देशित कर रखा है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही आप बुकिंग लें और दूसरी चीज की प्राइवेट वाहनों में आप सवारी बिल्कुल न ढोएं। ऐसा करता पाए जाने पर आपके वाहन जो है वो तुरंत सीज किया जाएगा।
1: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम का तहत सशस्त्र सीमा बल की 5वीं वाहिनी मुख्यालय चंपावत में आज योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करी गई। वाहिनी का कमांडेंट सुरेंद्र विक्रमन बताए कि 100 दिनों को योग काउंटडाउन अभियान का तहत वाहिनी मुख्यालय और वाहिनी का समवायों में योग सत्र को आयोजन करी गए। ये दौरान शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से तनाव मुक्त रखन कुण विभिन्न योगासन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और सशस्त्र सीमा बल कार्मिकों का दैनिक जीवन में योग के प्रति जागरूकता बढ़ोन और स्वस्थ जीवन शैली ते प्रोत्साहित कंच।
4: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: रुद्रप्रयाग जिला में द्वितीय केदार का नाम से प्रसिद्ध मदमहेश्वर मंदिर का कपाट आज श्रद्धा भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चार का बीच श्रद्धालुओं खुण दर्शनार्थ खोली गई। ये अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कपाट खुलन की प्रक्रिया का अंतर्गत पुजारी शिवशंकर लिंगन विधिवत पूजा अर्चना संपन्न करी।
5: आज सभी श्रद्धालुओं को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि पांचों केदारों में ये आज जो द्वितीय केदार का कपाट है उद्घाटन हो गया है और आज से भगवान के जो नित्य पूजाएं हैं हिमालय में उपस्थित यह दिव्य मंदिर में होंगी। भगवान का प्रातः काल में अभिषेक, भगवान का महाभोग, सायंकालीन आरती, यह क्रम 6 माह तक चलता रहेगा। भगवान श्री मधुमेश्वर जी के दिव्य चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सब के मनोरथों को सिद्ध करें और अपनी भक्ति हृदय में बैठाएं और इस विश्व का कल्याण करें।
1: ईंधन का वैश्विक संकट और राष्ट्र पर ये का बढ़ता प्रभाव तो देखी प्रधानमंत्री की ऊर्जा संरक्षण की अपील को असर प्रदेश का विभिन्न जिलों में देखी जानू छ। ये क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली का तत्वाधान में आज न्यायालय में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियान का तहत नो व्हीकल डे मनाई गये। जिला जज सहित सभी न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता और कर्मचारी अपना आवासों से न्यायालय परिसर तक पैदल चली की एन। ये अवसर पर सभी से ये अभियान में बढ़ चढ़ की योगदान देने की अपील करी। प्राधिकरण का सचिव पुनीत कुमारन बोली की प्रधानमंत्री की ऊर्जा बचाओ अपील पर जिला में यू अभियान चले जाणूच। उन बोली के अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ते हफ्ता में 2 दिन निजी या सरकारी वाहनों का बजाय पैदल आने की सलाह देनी च।
6: प्रत्येक सप्ताह में जो 2 दिन होंगे सोमवार और शनिवार, इसके लिए हमने एक अपील की है सभी अपने जो न्यायिक अधिकारी हैं उनसे, इसके अतिरिक्त अधिवक्तागण से और कर्मचारियों से कि वो सप्ताह में 2 दिन निजी वाहनों से न्यायालय ना आकर पैदल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आए न्यायालय में आना सुनिश्चित करें। और इसमें हमने काफी सहयोग सभी अधिवक्तागण का भी और हमारे कर्मचारियों का भी और न्यायिक अधिकारियों का भी लगातार हमें प्राप्त हुआ है।
1: नैनीताल जिला का भवाली मां सैनेटोरियम रातीघाट बाईपास मार्ग पर ढेला गांव का नजदीक आज एक वाहन का गहरी खाई में गिरने से 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हुई। स्थानीय पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीमन सभी समूह खाई से बाहर निकाली। पुलिस दुर्घटना का कारणों की जांच करनी च। भारत का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित पार्टी का वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी। कांग्रेस जनून बोली कि देश का प्रति स्वर्गीय राजीव गांधी को योगदान, दूरदर्शी सोच और आधुनिक भारत का निर्माण में उनकी भूमिका सदैव प्रेरणा स्रोत राली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटन खुण स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क। सभी स्वास्थ्य इकाइयों तक गर्मी से संबंधित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश। ऊर्जा निगम राज्य में स्मार्ट मीटर ते लेकी लोगों में फैलियां भरमू ते दूर कन खुण जागरूकता अभियान चलाणु छे।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय जिलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाइयों बहनों नमस्कार, मैं कंचन आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम कृषि जगत में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने खेतीबाड़ी के कामों को भी समय से कर रहे होंगे। तो चलिए अभी कार्यक्रम में बात करते हैं मक्के की खेती के बारे में। साथियों, मक्का भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। इसे खरीफ फसलों की महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। मक्का का उपयोग भोजन, पशु आहार और कई उद्योगों में किया जाता है। यही कारण है कि इसे किसानों की आय बढ़ाने वाली फसल भी कहा जाता है। साथियों, मक्के की अच्छी पैदावार के लिए उपजाऊ मिट्टी और उचित जल निकासी बहुत आवश्यक होती है। इसकी बुआई जून से जुलाई के बीच की जाती है। समय पर सिंचाई, संतुलित खाद और खरपतवार नियंत्रण से उत्पादन में वृद्धि होती है। साथियों, खेतों में हमेशा उन्नत बीजों का प्रयोग करना चाहिए और बीजों को पहले उपचारित अवश्य करें। मौसम की जानकारी के अनुसार यदि फसल लगाई जाए तो कम लागत में भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, आज के समय में मक्का सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स और पशुओं के लिए उन्नत चारा भी तैयार किया जाता है। किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती करनी चाहिए, इससे वे कम मेहनत में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। साथियों, तो ये थी जानकारी मक्के की खेती के बारे में। और अभी कार्यक्रम में वक्त हुआ है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत। साथियों, उत्तराखंड की जलवायु और पहाड़ी क्षेत्र औषधीय पौधों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। यहाँ अश्वगंधा, तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, तेजपत्ता और बुरांस जैसे पौधों की खेती की जाती है। औषधीय पौधों का उपयोग दवाइयों, सौंदर्य उत्पादनों और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं में किया जाता है। इन पौधों की खेती कर किसान साथी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनाते हैं आपको एक भेंटवार्ता। विषय है उत्तराखंड में औषधीय पौधों की खेती। जानकारी दे रहे हैं श्री अजय पाल पंवार और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी विकास चमोली।
2: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कीर्ति नगर टिहरी गढ़वाल से अजय पंवार जी। आप औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती कर रहे हैं और आज हमारे जो बातचीत का विषय रहने वाला है वो विषय है औषधीय और सुगंधित पौधों की व्यावसायिक खेती। जहाँ उत्तराखंड की बात करें तो जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए बहुत अनुकूल यहाँ की जलवायु है, तो किस तरह से जो हमारे साथी हैं वो यहाँ पर खेती शुरू कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो अजय पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
3: धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद आकाशवाणी का, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की बात करें तो शुरू से ही हमने पढ़ा है, देखा है कि हिमालयी जो भी राज्य रहे हैं वहाँ पर इस तरह की खेती खूब की जाती रही है, इस तरह का खूब उत्पादन हुआ है। या वो नेचुरल था या चाहे उसकी किसी ने पौध लगाई हो, लेकिन इस तरह का उत्पादन खूब रहा है। क्या कारण है जो पहाड़ हैं यहाँ पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती आसानी से हो जाती है?
3: बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बेसिकली क्या है कि अगर हम अपने उत्तराखंड की टोपोग्राफी देखें तो हम आज 500 मीटर से लेकर ऑलमोस्ट 35,000 मीटर तक की हमारे ऑल्टीट्यूड है, जिसे हम कहते हैं समुद्र लेवल से जो ऊंचाई होती है, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके का वातावरण है जो बेसिकली हमारे एक सोना उगाने वाली जमीन है। अगर आपने पुराने इतिहास पे देखा होगा तो जड़ी बूटियां पहले से ही यहाँ पे नेचुरल होती भी आई है। करने के बारी तो अब आई है क्योंकि लोगों ने अब खेतियां करना छोड़ दी हैं, तो अब वो समय आ गया कि वापस हम उसी वातावरण में जुड़ें और समझें अपने उत्तराखंड की पहचान को कि हम यहाँ पे सच में सोना उगा सकते हैं, जिसे हम एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट या औषधीय सुगंध पौधे कहते हैं
2: जी। जैसे आपने बताया कि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, तो दोबारा से औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से हम शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारी जो अनाज वाली फसलें हैं या जो हमारे बाग हैं, जैसे कई सारे समस्याएं उनके साथ होती हैं या हम देखते हैं कि जंगली जानवर भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या औषधीय और सुगंधित पौधों में इस तरह की संभावनाएं कम हो जाती हैं?
3: सबसे अच्छी बात क्या है कि औषधीय एवं सुगंध पौध को कोई जंगली जानवर नहीं खाता। अगर मैं जब मीटिंग में किसानों के साथ बैठता हूँ और उनसे बात करता हूँ तो कसम से उनका ना 2 किलो खून बढ़ता हुआ दिखता है कि अच्छा जानवर नहीं खाता, ठीक है। दूसरी बात क्या, हमें पानी कम चाहिए। तीसरा सबसे बड़ी बात, मतलब हमारा फार्मर इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि मैं इसे फ्रेश बेचूंगा, या तो हम ड्राई प्रोडक्ट में जा रहे हैं या फिर हम ऑयल प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो किसान अपने मन से उसको बेच सकता है। उत्तराखंड में जिस हिसाब का ऑल्टीट्यूड है उसी हिसाब के हम खेती करें, ये हमारा सही समय होता है विंटर्स, जिसमें हम जनवरी से लेकर टिल मार्च तक औषधीय एवं सुगंध पौध की खेतियां करते हैं
2: जी। इस समय हमें शुरुआत कर देनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
2: कौन कौन से प्लांट हैं जिनको लगाया जा सकता है?
3: बिल्कुल सर, बेसिकली अभी हम लोग यूरोपियन हब से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसका इंडियन मार्केट इन्हें नेशनल मार्केट ही बहुत बड़ा है। जैसे हो गया लैवेंडर हो गया, रोजमरी हो गया, थाइम हो गया, ओरिगेनो हो गया, इवन मेडिसिन प्लांट पर अगर हम जाते हो डमस्कस रोज हो गया, डैंडेलाइन हो गया, काफ़ी और भी प्लांट्स हैं जो बेसिकली आज तक एक डमस्कस रोज को छोड़ के ये जितनी हमने प्लांट्स की बात करी है ये यूरोपियन वेराइटीज़ हैं।
2: अच्छा,
3: जिसे हमने 2016 से यहाँ पे स्टार्टअप किया है और आज ऑलमोस्ट कम से कम 12-13 हज़ार किसान जो सिर्फ उत्तराखंड के ही हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और जो इसकी अच्छी खासी खेतियाँ कर रहे हैं
2: जी। आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं जो इस तरह के औषधीय जिनके गुण हैं?
3: हमारे किसान के साथ हम मिलके कह रहे हैं, जो मैंने अभी रिपीट किया पहले ही, लैवेंडर हो गया, रोजमेरी, थाइम, ओरिगेनो, डमस्कस, ये लगाए हैं। टिमूर पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं। टिमूर अगर हम पुराने जमाने में दंत मंजन करा करते थे, तो धीरे धीरे हम और भी काफी प्लांट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ लाके किसानों तक पहुंचाएं।
2: जैसे आपने बताया कि प्लांट का सही चयन होना जरूरी है, इसके अलावा कुछ और समस्याएं भी आ सकती हैं।
3: बेसिकली एरोमेटिक मेडिसिन को देखें तो सर, ना उसे ओला खराब कर रहा, ना उसे जानवर खराब कर रहा, ना उसे पानी की ज्यादा जरूरत है, तो जो नेचुरल मार है उनसे इन्हें कोई खतरा नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर हम ऑयल निकाल रहे हैं इनका मार्केट में, तो आप इनके रेट देखोगे तो बड़ी खुशी होगी आपको। किसी का 10,000 रुपये लीटर है, कोई 8,000 रुपये लीटर है, कोई 6,500, इवन हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा किसी का भी 5,500-6,000 लीटर से नीचे का ऑयल नहीं निकलता है।
2: अच्छा।
3: और घर में डिस्टिलेशन यूनिट सरकार दे रही है, अपने घर में निकाल रहे हैं, अपने यहाँ रख रहे हैं, और क्या चाहिए हमें
2: जी। जैसे आपने बताया कि ऑयल इसका हम निकालते हैं, अच्छा थोड़ा इसके इस्तेमाल के लिए भी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ इन औषधियों और सुगंधित पौधों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
3: देखिए सर, सबसे बड़ा तो इसकी मेडिसिंस बनती हैं, जो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पर जो आज मार्केट में जो सबसे ज्यादा गेम चल रहा है, वो चल रहा है कॉस्मेटिक में।
2: अच्छा।
3: कॉस्मेटिक में इसका बहुत बड़ा बोलबाला है, और बेसिकली जिसमें लैवेंडर, थाइम, ओरिगेनो या रोजमेरी

0: लावा होगा, वो एक हाई बिजनेस क्लास फैमिली ही यूज करती है बिकॉज ये पहाड़ों में उगती है, तो इसलिए इनका दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हम कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उन्हें इसकी नीड है।
1: जो किसान साथी शुरुआत करना चाहता है, तो शुरुआत बेसिक से अगर हम देखें तो कैसे उसको शुरुआत करनी चाहिए इस तरह पाने के लिए?
0: हमारा कहना है सबसे पहले ये है कि किसानों को ट्रेनिंग का मत होना चाहिए। किसान ट्रेनिंग से बहुत अच्छा समझ, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। वो गांव के लोग हैं, 90% हमारी महिलाएं हैं आज काम करने
1: जो
0: वाली
1: गांव में
0: हैं,
1: काम करनी है।
0: बिल्कुल। तो बेहतर है कि उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाए। ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो वो अपने हाथ से कर रहे हैं, जैसे हो गए हैं जो डैनलाइन की खेती कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पुरानी खेती को छोड़ ही
1: छोड़
0: दिया
1: दिया।
0: है ना। तो ट्रेनिंग का पार्ट हमारा एक ऐसा बड़ी, जैसे हम पाठशाला कहते हैं, एक पाठशाला का होना बहुत जरूरी है।
1: जी, जैसे ट्रेनिंग की बात आपने की, तो क्या सरकार के द्वारा कुछ ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जाते हैं?
0: बिल्कुल चलाए जा रहे हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल पे हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से,
1: जी
0: और जैसे अब हॉर्टिकल्चर का भी थोड़ा सा उतारू हुआ है इसमें, उसके पीछे हम अगर दें तो माननीय मंत्री जी को बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उन्होंने एरोमेटिक मेटल को बहुत बखूबी समझा है, और वो बेसिकली डीजी तक, मैम तक बात लेके गए हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमें बंजर दो, ये हार्डी क्रॉप्स, हम तो बंजर में उगाना चाह रहे हैं ना,
1: जी
0: ठीक है। आज स्प्रिंकलर सिस्टम सब जगह आ चुका है, एलडीपी टैंक सब जगह आ चुके हैं, ठीक है। बस समझाना किसान को ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पहाड़ की अगर देखी होगी टोपोग्राफी, तो किसी भी किसान के एक साथ खेत नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: तीन इधर होंगे, दो इधर
1: जी
0: होंगे,
1: जी
0: चार
1: जी
0: इधर होंगे। तो हम जिसमें जो बड़ा बंजर लैंड छू छूटा हुआ है उसको चुने, ताकि तीन खेत एक के, दो खेत एक के, एक खेत एक का, पर वो टैंक का पर्पज सबको सींचना होगा, इरीगेशन सबको देगी,
1: जी
0: क्योंकि हर किसान के लिए एक नया टैंक नहीं बना सकते। वो तभी आ सकता है जब उनका ट्रेनिंग सेशंस होंगे, उन्हें समझ में आएगा कि नहीं यार सच में अगर बंजर ये हम सब मिलके करें, उससे सबसे अच्छी बात क्या है, कंपटीशन आने लग जाएगा। बहुत से लोग हैं जो लेवेंडर के प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं कि यार कौन सी क्रॉप आ गई, क्या आ गई, क्योंकि विभाग में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। अब ये क्रॉप ऐसी है कि नहीं है।
1: जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि जो बंजर भूमि है यहाँ पे भी हमारे किसान साथी बहुत अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं। अच्छा पवार साहब, अगर हम ये जानें कि इसकी पौध या बीज जो किसान साथी लगाना चाहते हैं कहाँ से उनको मिल सकता है?
0: बेसिकली वो तो डिपार्टमेंट से उन्हें फोकस करना पड़ेगा, कृषि विभाग का अगर आप फोकस करते हो कहीं भी उत्तराखंड के किसी भी 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में से, तो कृषि विभाग जरूर उसको ग्रुप में आते हैं तो पक्का वो हेल्प करेंगे। बाकी इसका बीज नहीं है, ठीक है, ये कटिंग से कटिंग्स मिलती हैं।
1: जी
0: दूसरी बात क्या, बीज की गारंटी नहीं है, बीज में हम भी नहीं जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान जरूर रखना है कि ये ऑथेंटिक प्लांट है कि नहीं है, जिसमें आज बढ़ चढ़ के टिश्यू कल्चर बोलने लग गया है।
1: जी जैसे आपने टिशू कल्चर की बात की पवार जी, टिशू कल्चर से किस तरह से जो औषधि और सुगंधित पौधों की खेती है इसको बढ़ावा मिलने वाला है?
0: देखिए बेसिकली टिश्यू कल्चर, संक्षिप्त में मैं बताऊं कि जो प्लांट हार्डी हैं, जो बीज से नहीं पनप पाते हैं, वहां पे एक नया मुखड़ा है टिश्यू कल्चर। साइंटिस्ट काफी R&D करते हैं, और किसी को एक फॉर्मुलेशन बनाने में 7 साल भी लगते हैं, किसी को 10 साल भी लगते हैं, लेकिन जिस दिन वो उसमें कामयाब हो जाता है, अभी सपोज टू भी अगर हम इंडिया की बात करें तो आज सबसे बड़ा जो बोलबाला है G9 करके केला निकलता है, केले की वेरायटी है, ठीक है। आज इंडिया के 90% फार्मर्स सिर्फ टिश्यू कल्चर का ही केला लगाते हैं। वजह क्या, कि जो नॉर्मल था, जो हम शक्कर से लगाते थे पेड़ को, तो उसमें आता था 12 से 15 किलो के आसपास,
1: जी
0: टिश्यू कल्चर उसे 40 से 45 किलो लेके चला गया। किसान को अगर 3 गुने का फायदा हो रहा है,
1: जी
0: वो डायरेक्ट पैसा देके, क्योंकि पता है कि मैंने इससे पैसा कमाना ही कमाना है, जब मेहनत उतनी ही लगनी है तो वाई नॉट टिश्यू कल्चर,
1: जी
0: क्योंकि वो एक हेल्दी पौधा है, डिजीज फ्री पौधा है, जिसमें बीमारियां नहीं होंगी, है ना। तो टिश्यू
1: जी
0: कल्चर एक नया सिस्टम आ रहा है जिसमें हमें जाना चाहिए, और इसमें माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है, उनका कहना है कि नहीं, दो टिश्यू कल्चर लैब जरूर खुलनी चाहिए, है ना।
1: जी यानी कि उत्तराखंड में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के लिए अपार संभावना है। तो क्या कहेंगे हमारे तमाम किसान साथियों से जो इस ओर आना चाहते हैं, लेकिन हाँ अभी तक कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है कि मार्केट मिलेगा नहीं मिलेगा या अच्छा उत्पादन होगा नहीं होगा, तमाम सवाल उनके मन में चल रहे हैं।
0: देखिए सर, आज हर घर में स्मार्ट मोबाइल है, आज हाँ लेवेंडर की बात कर रहे हैं, रोजमेरी की बात कर रहे हैं, या विभिन्न टाइम और लाइन, इसका अपार भंडार पड़ा हुआ है
1: जी
0: इंटरनेट पे, उसके यूट्यूब देखें। देखो वो ज्ञान एक के लिए नहीं बना है, वो सबके लिए बना हुआ है,
1: सबके लिए बनाए।
0: ठीक है। किसी वीडियो में ज़्यादा बोला जा रहा है कम मजा, पर एक समझदार इंसान समझ जाएगा कि भाई अगर इसे करके, और बहुत से किसान वापिस भी आ रहे हैं, ऐसी बात, कई किसान हैं, ठीक है। अब बेसिकली आज अच्छी बात क्या है कि एरोमेटिक मेडिसिन सिर्फ एरोमेटिक मेडिसिन नहीं रह गया, आपको बड़ी खुशी होगी ये जानकर।

0: कि आज एरोमेटिक मेडिसिन का सबसे पहले तो हमने कहा कि भैया तो हम उसका ड्राई मेटल बेच देते हैं या ऑयल निकाल देते हैं, पर यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। जो ऑयल निकलने के पहले या साथ में हाइड्रोसोल निकलता है वो भी बिकता है,
1: अच्छा
0: उसके बाद जब हम उसे जला के पूरा ऑयल निकाल देते हैं जो हम समझिए आपके लिए कचरा है, उसे
1: जी
0: धूपबत्ती अगरबत्ती बन रही है। और अच्छी बात अगर आप सुनना चाहोगे तो लेवेंडर के यहाँ यूरोप में फार्मों के टिकट्स लगते हैं
1: अच्छा
0: जिसे हम एरोमा टूरिज्म से जोड़ते हैं,
1: जी।
0: ठीक है। तो इसका कोई खत्म नहीं है, एंड नहीं है। एरोमा थेरेपी तो आप कहीं केरला में जाके कराइए, हम जैसे लोग तो करा ही नहीं पाएंगे, वेरी
1: जी
0: एक्सपेंसिव, ठीक है। और लोगों को सच में बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन क्या है वो अब जिसका 10 लाख 10,000 रुपये किलो तेल होगा तो भाई उसकी क्वालिटी भी तो उस हिसाब से ही होगी,
1: बिल्कुल।
0: उसकी थेरेपीज भी उस हिसाब से ही होंगी, उसका डॉक्टर भी उस हिसाब से ही होगा। तो क्यों ना हम खेती के साथ साथ दिखा के भी पैसा कमाएं, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड क्या है, टूरिज्म का हब है। तो बिल्कुल सर, इसके तो इतनी सारी चीजें हैं कि वो हारने नहीं देगा अगर आप लगे हो तो।
1: जी तो अजयपाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे तमाम किसान साथियों तक औषधि और सुगंधित पौधों के विषय में साझा की। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था उत्तराखंड में औषधीय पौधों की खेती। जानकारी दे रहे थे श्री अजयपाल पंवार और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विकास चमोली। साथियों, में उम्मीद है कि आपने भेंटवार्ता ध्यान से सुनी होगी और आपको इसका पूरा लाभ होगा। तो चलिए, कार्यक्रम में वक्त हुआ है मनोरंजन का, सुनते हैं ये लोकगीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत। साथियों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। इसे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। साथियों, सुबह की शुरुआत हो, मेहमानों का स्वागत हो या दोस्तों के साथ कुछ खास पल बिताना हो, एक प्याली चाय हर एक मौके को यादगार बना देती है। भारत दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में से एक है। लाखों किसान दिन रात मेहनत करके चाय की खेती करते हैं। उनकी मेहनत से ही हर घर तक चाय की खुशबू पहुंचती है। साथियों, चाय केवल एक स्वाद नहीं है, बल्कि इससे शरीर को ताजगी और ऊर्जा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर आज हम उन किसानों के योगदान का सम्मान करते हैं जो चाय के बगीचों से हमारे घरों तक चाय पहुंचाते हैं। इसी के साथ अभी कार्यक्रम में वक्त हुआ है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

इसी गीत के बाद साथियों अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। यदि आप कृषि से संबंधित किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये सब आप अपने पत्रों के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथियों पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन 248001, या jagatkrishi@gmail.com पर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। साथियों में उम्मीद है कि आप हमें पत्र जरूर लिखेंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अब अपनी दोस्त कंचन को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। आप सुनिए कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचारक दगड़ी मी कुसुमलता पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में भयानक गर्मी और संभावित हीट वेव बटी निपटनक लिजी स्वास्थ्य विभाग पूर्व तरीकल सतर्क। सभी स्वास्थ्य इकाइयों के गर्मी बटी जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार पूर्व करने के लिए दी निर्देश। ऊर्जा निगम राज्य में स्मार्ट मीटर के लिबेर मनखियों में फैली भ्रमों के दूर करने के लिए जागरूकता अभियान ले चलानो। रुद्रप्रयाग जिल में स्थित मदमहेश्वर मंदिरक द्वार श्रद्धालुओं दर्शनार्थ खुली गई और नैनीताल जिलक भवाली में एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह 5 मनखियों की मौत। अब समाचार विस्तार सुनो। राज्य में लगातार बढ़ती तापमान और मौसम विभागक चेतावनी के देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भयानक गर्मी और संभावित हीट वेव बटी निपटने के लिए पूर्व तरीकल सतर्क छो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनक ओर बटी जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी स्वास्थ्य इकाइयों गर्मी बटी जुड़ी बीमारियों रोकथाम और प्रभावी उपचार पूर्व करने के लिए निर्देश दी। राज्य जिला और उप जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष स्थापित करने के लिए कई गो यह कक्षों में मरीजों के तुरंत राहत दिने के लिए कूलिंग सिस्टम आइस पैक और पूर्व वेंटिलेशन की व्यवस्था अनिवार्य करी जा रही। पहली ठंड करें फिर परिवहन करें प्रोटोकॉल के सख्ती लागू करने पर जोर दी गो ताकि गंभीर मरीजों की जान के बचाई जा सको। स्वास्थ्य सचिव सचिन कुरवेल को की राज्य सरकार हीट वेवक चुनौती के लिए पूर्व तरीकल गंभीर छु और सभी जिलों बखत रूते तैयार रहने के लिए निर्देश दी जा रही। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कक्ष जरूरी दवाओं की उपलब्धता और प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ के चुनौती ले सुनिश्चित करी जाने। प्रदेश में स्मार्ट मीटर के लिए मनखियों में अब जागरूकता बढ़ लग रहे। ऊर्जा निगमक ओर बटी जागरूकता अभियानक अंतर्गत मनखियों के बताई जानो कि स्मार्ट मीटर आम जनता के हितक लिजी छन। ऊर्जा निगमक प्रबंध निर्देशक GS बोदियालल को की स्मार्ट मीटर के लिए मनखियों में भ्रम छन की येल बिजली बिल सकरा। उन्होंने कहा कि एस बिल्कुल नहीं छू बल्कि स्मार्ट मीटर लगनक बाद मनखियों के रोजाना बिजली खपतक पूर्व जानकारी मिले दगड़ी ही बिजली चोरी माले रोक लगेल। उन्होंने कहा कि मनखियों जागरूक होने वजह स्मार्ट मीटरक विरोध ले अब कम होनो।
2: हमारे जनता में या उपभोक्ता में एक भ्रांति है स्मार्ट मीटर को लेके कि इससे जो है बिल ज्यादा आता है। ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि ये तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी का है। बिल ज्यादा आने का कोई सवाल ही नहीं उठा और इसके बहुत फायदे हैं। एक तो बिजली चोरी रुकेगी, दूसरा आप अपने डेली के कंजम्पशन को मॉनिटर कर पाओगे। तो हम लोग ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे कि स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इसके फायदे से उनको बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है और धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है और विरोध कम हो रहा है।
1: आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा पक्का करने और अवैध वाहन संचालन पर रोक लगाने के लिए पिथौरागढ़ परिवहन विभागल आज रत्ती पिथौरागढ़ आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर सघन परिवर्तन अभियान चला। ARTO परिवर्तन सिवांश कांडपाल लक निर्देश में परिवर्तन दलल यात्रा मार्ग पर संचालित वाहनों फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्स परमिट बीमा ड्राइविंग लाइसेंस और दोहर आवश्यक कागजातों गहन जांच ले करी। यो दौरान दिल्ली पंजीकरणक एक निजी कार यात्रियों के लिबेर आदि कैलाश यात्रा पर जाती पाई गई। जांच में वाहनक व्यावसायिक उपयोग करी जान पाई गो। मामले गंभीरता के देखते हुए वाहनक के सीज कर दी गो और वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में 35,000 रुपये जुर्माना लगाई गो। वे गड़बड़ी के चलते एक दोहर वाहन के लिए सीज करी गो जबकि 19 वाहनों के खिलाफ चालनक कार्रवाई करी गई। ARTO परिवर्तनल को की यात्रा अवधि दौरान सघन परिवर्तन अभियान निरंतर जारी रोल और निजी वाहनों में सवारी कैली जाती पाई जान पर वाहन के तुरंत सीज कर दी जाल।
3: हमारी जो चेकिंग है वो लगातार चूला आदि कैलाश पिथौरागढ़ इस मोटर मार्ग पर हम लगातार

0: कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों की विशेष रूप से चेकिंग कर रहे हैं, और जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं और जितने भी जो गाड़ी वाले हैं उनको हमने विशेष रूप से निर्देशित कर रखा है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही आप बुकिंग लें, और दूसरी चीज की प्राइवेट वाहनों में आप सवारी बिल्कुल न ढोएं, ऐसा करता पाए जाने पर आपके वाहन जो है वो तुरंत सीज किया जाएगा।
1: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक काउंटडाउन कार्यक्रमक तहत सशस्त्र सीमा बलक पांचों वाहिनी मुख्यालय चंपावत में आज योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित करीगो। वाहिनी कमांडेंट सुरेंद्र विक्रमल बता की 100 दिनों योग काउंटडाउन अभियानक तहत वाहिनी मुख्यालय और वाहिनी समवायों में योग सत्रक आयोजन करीगो। यो दौरान शारीरिक रूपल स्वस्थ और मानसिक रूपल तनाव मुक्त रोनक लीजी अलग अलग योगासन प्राणायाम और ध्यानक अभ्यास कराईगो। कार्यक्रमक मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और सशस्त्र सीमा बल कार्मिकों के दैनिक जीवन में योग के अपराणक प्रति जागरूकता बढ़ान और स्वास्थ्य जीवन शैली प्रोत्साहित करने रो।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: रुद्रप्रयाग जिल्मा द्वितीय केदारक नामल प्रसिद्ध मदमहेश्वर मंदिरक द्वार आज श्रद्धा भक्ति और वैदिक मंत्रोच्चारक बीच श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दी गई। यह अवसर पर ठुल संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहीं। द्वार खुलने प्रक्रिया के अंतर्गत पुजारी शिवशंकर लिंगल विधिवत पूजा अर्चन न संपन्न करे।
3: आज सभी श्रद्धालुओं को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि पांचों केदारों में ये आज जो द्वितीय केदार का कपाट है उद्घाटन हो गया है, और आज से भगवान के जो नित्य पूजाएं हैं हिमालय में उपस्थित यह दिव्य मंदिर में होंगी। भगवान का प्रातः काल में अभिषेक, भगवान का महाभोग, सायंकालीन आरती, यह क्रम 6 माह तक चलता रहेगा। भगवान श्री मदमेश्वर जी के दिव्य चरणों में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सब के मनोरथों को सिद्ध करें और अपनी भक्ति हृदय में बैठाएं और इस विश्व का कल्याण करें।
1: ईंधनक वैश्विक संकट और राष्ट्र में यह बढ़ती प्रभाव के देखते हुए प्रधानमंत्री ऊर्जा संरक्षणक अपीलक असर प्रदेशक अलग अलग जिलों में दिखाई दिनो। यह क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली तत्वाधान में आज न्यायालय में सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन अभियानक तहत नो व्हीकल डे मनाई गो। जिला जज दगड़े सभी न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता और कर्मचारी अपू आवासों बटी न्यायालय परिसर ताले पैदल चलबेर आई। यह अवसर पर संबंध यो अभियान में बढ़ चढ़ योगदान देने के लिए अपील करी गई। प्राधिकरणक सचिव पुनित कुमारल को की प्रधानमंत्री ऊर्जा बचाओ अपील पर जिल मा यो अभियान चलाई जानो। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं और कर्मचारियों का हफ्त मा द्वे दिन निजी या सरकारी वाहनों के बजाय पैदल आनक सलाह ले दी गई।
4: प्रत्येक सप्ताह में जो 2 दिन होंगे सोमवार और शनिवार, इसके लिए हमने एक अपील की है सभी अपने जो न्यायिक अधिकारी हैं उनसे, इसके अतिरिक्त अधिवक्तागण से और कर्मचारियों से कि वो सप्ताह में 2 दिन निजी वाहनों से न्यायालय ना आकर पैदल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आए न्यायालय में आना सुनिश्चित करें। और इसमें हमने काफी सहयोग सभी अधिवक्तागण का भी और हमारे कर्मचारियों का भी और न्यायिक अधिकारियों का भी लगातार हमें प्राप्त हो रहा है।
1: नैनीताल जिलक भवाली मां सेनिटोरियम रतिघाट बाईपास मार्ग पर ढेला गांवक नजदीक आज एक गाड़ी गहरी खाई मां गिरनक वजह द्वि श्रेणियों दगड़े ही 5 मनख्यों की मौत हैगी। स्थानीय पुलिस और राज्य आपदा मोचन बलक टीमल सभी शवों के खाई बटी भय निकालो। पुलिस दुर्घटना कारणों की जांच करने। भारत तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पुण्यतिथि पर देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य दगड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं उनर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी। कांग्रेस जनों को की देशक प्रति स्वर्गीय राजीव गांधी योगदान दूरदर्शी सोच और आधुनिक भारत तक निर्माण मान निभाई जरी उनर भूमिका हमेशा प्रेरणा स्रोत रोली। आखिर में मुख्य समाचार आई सुनो। प्रदेश में भयानक गर्मी और संभावित हीट वेव बटी निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तरीकल सतर्क। सभी स्वास्थ्य इकाइयों के गर्मी बटी जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी उपचार पक्का करने के लिए दी निर्देश। ऊर्जा निगम राज्य में स्मार्ट मीटर

0: पहली बेर मनखियों में फैली भ्रमों के दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाई जानो। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मध महेश्वर मंदिरक द्वार श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोली गई और नैनीताल जिले भवाली में एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने की वजह 5 मनखियों की मौत। योका दगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार यो अंक इति के समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:40 हुए हैं। आप सुनिए फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिमान से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतकार एसडी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:50 हुए हैं। अब सुनिए RNU देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण।

श्रोताओं नमस्कार, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून से आप सुन रहे हैं उम्मीद की किरण, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हर कहानी संघर्ष से शुरू होकर सफलता की नई मिसाल बनती है। यहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही प्रेरक कहानी जो ये एहसास दिलाती हैं कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। आइए जानते हैं उन हौसलों के बारे में जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी बन रहे हैं।

0: उत्तराखंड की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। जहां कभी गांवों की महिलाएं सिर्फ घर और खेतों तक सीमित मानी जाती थीं, वहीं अब वही महिलाएं अपने हुनर, मेहनत और सरकारी योजनाओं के सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। देहरादून के विकासनगर ब्लॉक के गांव सोरना ढोबरी की एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला हैं कल्पना बिष्ट। उन्होंने गांव में स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट शुरू कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि कई महिलाओं को रोजगार भी दिया। कल्पना बिष्ट के मन में ये सोच थी कि गांव की महिलाओं को ऐसा काम मिले जिससे वे घर के साथ साथ अपनी कमाई भी कर सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामोत्थान द्वीप परियोजनाओं ने कल्पना के सपनों को उड़ान दी। कल्पना कहती हैं उन्होंने रीप परियोजना की मदद से वर्ष 2024 में बेकरी यूनिट की शुरुआत की। करीब 10 लाख रुपए की लागत से इस बेकरी यूनिट की शुरुआत हुई। आज ये छोटी शुरुआत सफलता की बड़ी कहानी बन चुकी है।
1: मेरा नाम कल्पना बिष्ट है और मैं सोना डोबरी गांव में हूँ और हमारी ये जो बेकरी है ये जो संचालित हो रही है ये डोबरी गाँव में ही हो रही है और ये 2024 में रिप द्वारा हमें प्रोजेक्ट के द्वारा हमें मिला था। 10 लाख का उनका प्रोजेक्ट था और आज करते करते हमें 1.5 साल हो गया और हम अच्छा टर्नओवर दे रहे हैं।
0: इस बेकरी यूनिट की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ तैयार होने वाले पारंपरिक मिलेट्स आधारित उत्पाद। आज जब लोग हेल्दी और पौष्टिक खान पान की ओर लौट रहे हैं तब पहाड़ के पारंपरिक अनाजों से बने उत्पाद बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बेकरी में पहाड़ के पारंपरिक अनाजों से कई स्वादिष्ट और पौष्टिक चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ मंडुवे के बिस्कुट, गुड़ मक्खन कुकीज, मिल्क रस, झिंगोरे से बने उत्पाद, हनी ओट्स बिस्कुट और गुड़ की चॉकलेट कैंडी जैसी कई चीजें तैयार की जाती हैं। इन उत्पादों में न केवल स्वाद है बल्कि पहाड़ की मिट्टी और परंपरा की खुशबू भी है। यूनिट के कई उत्पाद जैसे मक्खन बिस्कुट, मिल्क रस और गुड़ की चॉकलेट कैंडी हाउस ऑफ हिमालयास में भी अपनी विशेष पहचान बना चुकी हैं। स्थानीय स्वाद और पौष्टिकता के कारण इन उत्पादों की मांग देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ती जा रही है। कल्पना कहती हैं आज हमारे उत्पादों की लगातार मांग बढ़ रही है। उनका कहना है कि हमारे साथ गांव की महिलाएं भी रोजगार से जुड़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस यूनिट ने गांव की 9 महिलाओं को रोजगार देकर उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। जो महिलाएं कभी सिर्फ घरेलू काम तक सीमित थी आज वे उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केटिंग और सप्लाई जैसे कार्यों में अहम भूमिका निभा रही हैं।
1: गांव की आसपास की हमारे समूह की बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। 9 लोग हम इसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और जो सैलरीड है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन का वेजिस, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा महीना हमारे साथ काम करते हैं और हमारा जो टर्नओवर है वो अच्छा खासा 3+ जा रहा है और इसी तरह से परियोजना आगे धीरे धीरे, अभी हमारे पास राइस मिल का भी एक प्रोजेक्ट आया है रिप द्वारा, तो वो भी है और इसी परियोजना के माध्यम से सबको धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हम महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया, रोजगार दिया।
0: कल्पना बिष्ट ने अपने

0: फैशन डिजाइनिंग के हुनर को भी इस व्यवसाय में प्रभावी ढंग से उपयोग किया। बेकरी उत्पादों की आकर्षक और प्रीमियम पैकेजिंग कल्पना स्वयं तैयार करती हैं। यही वजह है कि लोगों को ये उत्पाद और ज्यादा पसंद आ रहे हैं। शुरुआत में ये यूनिट केवल प्रेमनगर, सेलाकुई, सहसपुर, हर्बटपुर, विकासनगर, कालसी और देहरादून तक सीमित थी, लेकिन अब इसके उत्पाद उत्तरकाशी, टिहरी सहित राज्य के अन्य जगहों तक पहुंच रहे हैं। हर सप्ताह इन जिलों से मिल्क रस और मडवे के बिस्कुटों के बड़े ऑर्डर आ रहे हैं। उत्पादों की सप्लाई को आसान बनाने के लिए महिला समूह ने 0% ब्याज पर एक इको वैन भी खरीदी है। अब इस वाहन की मदद से दूरस्थ बाजारों तक आसानी से उत्पाद पहुंचाए जा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी इस यूनिट के उत्पादों को काफी पसंद किया गया। खिलाड़ियों और मेहमानों को पहाड़ के मिलेट्स आधारित उत्पादों का स्वाद चखाया गया। स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट के किए गए इन प्रयासों से पहाड़ के पुराने स्वाद को लोग नए तरीके से पहचान रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट आज महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। ये यूनिट बेहद स्वच्छ और प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर रही है। उनका कहना है, राज्य सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर कल्पना बिष्ट की ये पहल न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि गांव की महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह भी दिखा रही है।
1: खंड विकास नगर में स्वाभिमान महिला की अध्यक्षा कल्पना बिष्ट द्वारा ये एक बेकरी का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में रीप परियोजना के अंतर्गत 10 लाख में हमने उनका एक सीईओ लेवल एंटरप्राइज सेटअप कराया था, जिसकी कॉस्ट 10 लाख है और उसमें उनकी पूरी बेकरी से संबंधित मशीनरीज वगैरह सेटअप की गई थी और इसकी मार्केटिंग और सेल्स के लिए भी हमने पूरा प्रयास किया है। आज वर्तमान में इनका एक मम्मी टमी करके प्राइवेट एंटरप्राइज है, उनके साथ हमने टाइप कराया, यूटी मीडिया वेंचर से उनके साथ टाइप कराया, जिसमें उनका एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया। प्लस लोकल मार्केट या फिर हमारे जो विभिन्न स्टॉल्स लगते हैं उसमें बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है और एक आउटकम उसका ये रहा है कि आज 3-4 लाख रुपये प्रति माह उनकी अर्निंग्स हो रही हैं और पूरा समूह भी इसमें कार्यरत है और जो उनकी यूनिट है वो भी बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से और पैकेजिंग भी बहुत प्रोफेशनल ढंग से की जा रही है। तो इसको हम बहुत ही एक देखते हैं कि हमारी महिलाएं जो है रीप परियोजना एवं एनआरएलएम योजना के अंतर्गत जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा लाभ इससे प्राप्त कर रही है।
0: श्रोताओं, कल्पना बिष्ट और उनकी टीम ने ये साबित कर दिया है कि यदि महिलाओं को सही मंच, प्रशिक्षण और सहयोग मिले तो वे गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती हैं। मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। जब इरादे मजबूत हों तो छोटे छोटे कदम भी बड़ी सफलता की राह बना देते हैं। उम्मीद की ये रोशनी समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और दूसरों के जीवन में भी नया विश्वास जगाती है। इसी सकारात्मक सोच और नई प्रेरणा के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए उत्साह और नई उम्मीद की किरण के साथ। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आरएनयू देहरादून की विशेष प्रस्तुति उम्मीद की किरण। श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दें, कल सुबह 11 बजे सुनिएगा विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में सीमा सुरक्षा बल के 23वें अलंकरण समारोह और रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 का सजीव प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:30 पर सुनिएगा डॉक्टर देश दीपक से संकल्प मिश्रा की बातचीत।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।

0: हर माँ की सेहत से जुड़ा है, मासिक धर्म स्वच्छता और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रियंका चौहान गर्ग को। आप प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रियंका चौहान गर्ग जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, मासिक धर्म स्वच्छता क्या है?
1: मासिक धर्म बेसिकली हर महीने आने वाला पीरियड्स है, जिसमें कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग वजाइना के थ्रू होके बाहर निकलती है, और उसमें हमें हाइजीन को मेंटेन रखना होता है। अगर हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और फ्यूचर में बहुत सारी डिजीजेस हमें झेलनी पड़ सकती है।
0: डॉक्टर प्रियंका जी, पीरियड्स आना शरीर के लिए जरूरी क्यों है?
1: हर लड़की को हर साइकिल में एक एग बनता है, जो कि रिलीज होने पर प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। अगर जो पीरियड्स ही नहीं होंगे तो ये एग भी रिलीज नहीं होगा और ना ही कोई प्रेग्नेंट हो पाएगा। तो जो एक संसार जिस तरह से चलता है वो कभी नहीं चल पाएगा। तो पीरियड्स होने की अपनी इम्पोर्टेंस है, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी नहीं भी हो रही है तो उस कंडीशन में भी एटलीस्ट जो हार्मोनल बैलेंस है वो बना रहता है हर लड़की के अंदर।
0: डॉक्टर प्रियंका जी, पीरियड्स के दौरान हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है?
1: फीमेल वजाइनल पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, तो उसमें कुछ स्पेशल और बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलाई, जो कि ग्रो करते हैं। नॉर्मली क्या होता है पीरियड्स में, जो ब्लड जब आता है तो ब्लड का जो पीएच है वो बहुत हाई होता है, मतलब वो 7.2 to 7.5 तक जाता है, जो कि वजाइनल पीएच को जो नॉर्मली 4 to 4.5 तक रहता है उसको एसिडिक कर देता है और ये लैक्टोबैसिलाई को किल कर देता है।
0: जी
1: जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो नहीं है, और जो बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहे हैं वो अंदर आ सकते हैं, जो कि अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं।
0: पीरियड्स के दौरान हाइजीन कैसे बनाए रखें?
1: इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, एक तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि पीरियड्स के टाइम पे नहाना
0: जी
1: बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं कि नहीं, नहाने की जरूरत नहीं है, उससे मासिक धर्म जो है कम हो जाता है, कुछ बीमारी लग जाती है, तो ये सब बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। हमें पीरियड्स के टाइम पे जरूर नहाना चाहिए, जेनाइटल्स को अपने जो प्राइवेट पार्ट है उनको अच्छे से साफ रखना चाहिए। साफ रखने का भी एक तरीका होता है कि बिफोर बैकवर्ड वॉशिंग होनी चाहिए, कभी भी बैकवर्ड बिफोर वॉशिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बहुत माइल्ड सोप और पानी से ही इसको साफ करना चाहिए, कोई भी केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं होती है।
0: जी
1: तीसरा, इसमें यूज करने वाले मेथड्स जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि आजकल सब मोस्ट कॉमन तो है सैनिटरी पैड्स। दूसरा, कुछ लोग रीयूजेबल क्लोथ्स यानी कि जो घर में कपड़ा होता है उसको धो के सुखा के यूज करते हैं। तीसरा, मेंस्ट्रुअल कप, और चौथा टेम्पून्स, ये सब यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने के तरीके और सबको इनको साफ रखने का, डिस्पोज करने का तरीका जरूर आना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपने कपड़े की बात की, ये कितना सुरक्षित है?
1: अगर इसको हम ठीक प्रकार से यूज करते हैं तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। नॉर्मली अगर जो आप कोई भी कपड़ा यूज करते हैं, एक तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आप जो भी कपड़ा यूज कर रहे हो उसको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करते रहना है। ये डिपेंड करता है कि किसका कितना पीरियड हो रहा है। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि एवरी 4 to 6 आवर्स आपको कोई भी पैड या कपड़ा जो भी आप यूज करते हैं वो चेंज करना ही करना है, चाहे वो खराब नहीं भी हो रहा है, तो आप उसको चेंज करिए। अगर जो आप रीयूजेबल क्लोथ ले रहे हैं तो आप उसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा के किसी कूल ड्राई प्लेस पे स्टोर कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तब यूज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, किशोरियों की माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती है? जब बच्चियाँ छोटी होती हैं उन्हें पता ही नहीं होता पीरियड्स के बारे में।
1: बिल्कुल, सबको ये एजुकेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ तो आजकल हमारे करिकुलम में, बुक्स में भी बता देते हैं कि कैसे कैसे होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हाइजीन है। पर हमें भी एज अ पेरेंट अपने बच्चों को जरूर ये सिखाना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल पीरियड कोई ऐसे कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे कि हर लड़की को गुजरना है और वो इम्पोर्टेंट है, तो ये जरूर बताना है। इससे होने वाले फायदे सबको पता होने चाहिए। दूसरा, इसमें कैसे हाइजीन रखें और कैसे अपना आप को स्वस्थ रखें, ये हर माँ बाप को सिखाना है कि क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, स्कूल से छुट्टी कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, पढ़ाई में कैसे ध्यान लगाए, तो ये सब जरूर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।
0: डॉक्टर प्रियंका चौहान जी, आप पैड की बात कर रही थी, तो जानना चाहेंगे जो पैड्स हैं या जो टेम्पोन्स होते हैं, इनको कितनी समय बाद बदल देना चाहिए?
1: देखिए, जो पैड्स है जैसे मैंने कहा जो कपड़े के लिए अप्लाई करते हैं हम, वही पैड्स के लिए भी अप्लाइड होता है। आपको एवरी 4 to 6 आवर्स पैड को चेंज करना ही करना है,
0: जी
1: चाहे, मैं फिर से रिपीट करूंगी, चाहे वो पूरा सॉइल्ड हो चाहे नहीं हो, पर आपको 4 to 6 आवर्स में चेंज कर देना है। दूसरा, टेम्पून्स की अगर जो हम बात करें तो every 6 आवर्स इसको भी चेंज करना है। मेंस्ट्रुअल कप आप यूज कर सकते हैं for 10 to 12 आवर्स, पर उसको आपको अच्छे से स्टरलाइज करके फिर वापस बॉइल करके और फिर दोबारा रीयूज करना है, तब तक आप दूसरा कप यूज करेंगे। चौथा, कपड़े की बात सेम हो गई जैसा कि हमने पैड के लिए बताया कि उसको भी every 4 to 6 आवर्स आपको चेंज करना ही करना है। पर ये सब जो है ये चीजें सबके लिए अलग अलग होती है। किसी को अगर जो 2 घंटे में ही ब्लीडिंग ज्यादा होकर पैड सोक हो गया है तो उसको जल्दी भी चेंज करना पड़ सकता है।
0: डॉक्टर साहब, अगर हमारे पहाड़ों की बात करें तो

0: दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां पर पीरियड्स के दौरान यूज की जो आधुनिक चीजें आई हैं, इनका मिल पाना आसान नहीं होता। तो ऐसे एरियाज में महिलाएं ज्यादातर कपड़ा या कॉटन का इस्तेमाल करती हैं। इसको लेके कुछ हिदायत देना चाहेंगी?
1: नहीं, मैं ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ कि कपड़ा सेफ है, बस उसको तरीका उसका यूज़ करने का इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा उसको धो के अच्छे से धूप में सुखा के तब आपको उसको स्टोर करना है किसी अच्छी साफ स्वच्छ जगह पर, ताकि जब जरूरत पड़े तब आप उसको यूज कर सके, वरना गलत नहीं है कपड़ा यूज करना। बाकी सैनिटरी पैड्स आजकल बहुत ईजिली मिल जाते हैं, प्लस गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स भी होते हैं जिसमें कि सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। यूजली हमारी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने भी एक मुहिम चलाई थी सैनिटरी नैपकिन स्कीम करके, उसमें भी ये कुछ 6 रुपए का एक पैड पूरा मिलता था,
0: पूरा
1: पैकेट।
0: पैक
1: जी, पूरा
0: जी।
1: पैकेट, उसमें एक 6 रुपए का पैकेट में, जो बहुत ही कम रेट पे है, तो वो मुझे लगता है हर कोई इस्तेमाल कर सकता है।
0: डॉक्टर साहब, अगर कोई बहन या बेटी जो पीरियड्स के दौरान हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही है, तो उसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?
1: अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहला जो सिम्टम हमें दिखता है वो वजाइनल इन्फेक्शन है। वजाइनल इन्फेक्शन आपको यूजुअली पता चलता है गाढ़ा पीला पानी आना, हरा रंग का पानी आना, उसमें बहुत स्मेल आना, ऑर्डर बहुत खराब होना, तीसरा उसके साथ में बहुत इचिंग एसोसिएटेड रहना। तो सबसे पहली तो वजाइनल इन्फेक्शन ही होते हैं। दूसरा, जब वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यही इन्फेक्शन यूट्रस में और ट्यूब्स में और ओवरीज में फैल जाता है, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं।
0: जी
1: तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक तो बहुत लंबे टाइम तक होने वाला पेन, जिसे हम यूजली क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो देता है। दूसरा, अगर जो आपको यंग एज में पीआईडी हो जा रहा है और वो बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है, तो उस कंडीशन में ये इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी कर सकता है।
0: जी
1: तीसरी बात, अगर जो किसी को बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहे हैं वजाइनल इन्फेक्शन, तो एक एचपीवी वायरस होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर कोज करता है, तो एचपीवी वायरस को भी ये वजाइना में स्टोर करके रख लेता है और उसको बॉडी को इम्यूनिटी नहीं देता है कि वो खुद से क्लीन कर पाए उसको, इसलिए परसिस्टेंस ऑफ एचपीवी इसकी वजह से भी रह सकता है
0: जी
1: मेंस्ट्रुअल हाइजीन ना मेंटेन करने से।
0: कुछ ऐसी चीजें बाजार में उपलब्ध हों जिनका प्रयोग करके जो भी महिलाएं हैं वो पीरियड्स के दौरान जो हाइजीन है उसको मेंटेन रख सकें?
1: देखिए, बाजार में मिलने वाली बहुत सारी चीजें, तो कई सारे वॉशेज आते हैं, पर अगर जो आप एक नॉर्मल पानी से
0: जी
1: रूटीनली, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, आप नॉर्मल पानी से और बहुत माइल्ड सोप से जिससे आप नहाते हैं उससे भी वॉश करेंगे, बिफोर बैकवर्ड, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, बिफोर बैकवर्ड ही आपको वॉश करना है, तो उससे भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन आप अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, पीरियड्स के दौरान कुछ आम समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि पेट दर्द होता है या कमर दर्द होता है, कब इसे सामान्य माना जाए और कब माना जाए कि ये खतरे की घंटी है?
1: थोड़ा पेट दर्द होना, कमर दर्द होना पीरियड्स में नॉर्मल होता है,
0: जी
1: पर अगर जो किसी को इतना दर्द है कि वो स्कूल से छुट्टी ले रहा है, अपने काम से छुट्टी ले रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो इसके लिए आपको जरूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है ये। तो इसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिल लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड और ये सब भी सुविधाएं रहती हैं, ये भी देखना चाहिए।
0: डॉक्टर प्रियंका जी, कभी कभी पीरियड्स के दौरान महिलाएं कोई टैबलेट ले लेती हैं दर्द से बचने के लिए, क्या कहेंगे इसको लेके?
1: देखिए, अगर जो इतना दर्द है कि आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, पर आपको उसका आदी नहीं होना चाहिए। प्लस कुछ सेफ मेडिसिन्स होती है पेन को रिलीव करने के लिए, कुछ अनसेफ होती है,
0: जी
1: तो उसमें आप हमेशा डॉक्टर की सलाह से जो सेफ मेडिसिन्स है वही ले।
0: डॉक्टर साहब, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा खून आना या बहुत कम खून आना, क्या कारण होते हैं इसके?
1: पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के मल्टीपल रीजंस है, स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है डेट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, कि अगर जो हार्मोन्स ठीक से नहीं बैठ पा रहे आपकी बॉडी में किसी भी वजह से, चाहे आप स्ट्रेस में हैं, चाहे मेंटल फिजिकल कोई भी स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, या आपके यूट्रस में कोई स्ट्रक्चरल एनोमली है जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया है, या कोई ओवेरियन सिस्ट बन गई है, या फिर एक कंडीशन होती है एडिनोमायोसिस, इन सब में जो है ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। लाइकवाइज, जो ब्लीडिंग कम होने के कारण भी यूजली हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जो कि आजकल हम हर तीसरी किशोरी में जो हम देखते हैं पीसीओडी की समस्या, उसमें भी पीरियड्स बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखना होता है ताकि हमारे हार्मोन जो है हमारे शरीर के अनुकूल बैठ पाए।
0: डॉक्टर प्रियंका चौहान जी, अगर महीनों तक किसी महिला को पीरियड नहीं आ रहे हैं तो क्या करें?
1: अगर जो किसी को पीरियड नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो हमें रूल आउट करनी है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। दूसरा, अगर जो वो बढ़ती उम्र में है, 45 के अराउंड है या उससे ऊपर है, तो हमें ये देखना है कहीं उसका मेनोपॉज तो नहीं हो गया है।
0: अगर वो कम उम्र की हो तो?
1: जी, अगर वो कम उम्र की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है तो जैसा मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें कि पीसीओडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के सिनेरियो में।

0: आज से 15 साल पहले की हम बात करें तो इतना पीसीओडी हमें देखने को नहीं मिलता था, पर आजकल जो खान पान का बदलाव, सोने उठने का जो हमारा रूटीन बदल गया है, उससे ये सबसे इम्पोर्टेंट हमने पाया है कि पीसीओडी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है, जिसमें कि 2-2 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्या खाना पीरियड्स के दौरान फायदेमंद है?
0: देखिए, पीरियड्स के दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल रहा है, नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि एक पीरियड में एक लड़की को या महिला को ऑलमोस्ट 60-80 ml का ब्लड लॉस हो जाता है,
1: जी
0: जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो आयरन रिच डाइट है, जैसे कि राजमा, छोले, ये सब आप ज़्यादा करके लीजिए,
1: जी
0: अनार, फल। दूसरा इम्पॉर्टेंट रहता है हाइड्रेशन,
1: जी
0: क्योंकि जब ब्लीडिंग हो रही है तो बेसिक आपके बॉडी से फ्लूइड भी जा रहा है,
1: जी
0: तो आपको कम से कम, चाहे ठंडी है चाहे गर्मी है, आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए अपनी डाइट में।
1: डॉक्टर प्रियंका जी, क्या कोई महिला पीरियड्स के दौरान काम या हल्के फुल्के जो व्यायाम है वो कर सकती हैं?
0: जी बिल्कुल, हर महिला हर समय हर कुछ कर सकती है, पीरियड्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। पर हाँ, अगर जो आपको इतना पेन है कि जिसकी वजह से आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं अपनी एक्टिविटी, तो उसमें भी मैं ये कहूंगी पहले आप डॉक्टर को दिखा लीजिए कि इतना आपको रेस्ट्रिक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है। बट पीरियड्स एक नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि हर एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेनुअस वर्क अगर जो आप नहीं करना चाहे तो वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, बट जो नॉर्मल रूटीन घर के काम या कोई नॉर्मल योगा एक्सरसाइजेज आप करना चाहें तो बिल्कुल अलाउड है।
1: डॉक्टर साहब, पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग की समस्या भी महिलाओं को या किशोरियों को फेस करनी पड़ती है?
0: मूड स्विंग्स भी बेसिकली जो है हार्मोनल इम्बैलेंस बताता है आपका। नॉर्मली सबको मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, पर हाँ, पीरियड के आने से पहले, स्पेसिफिकली उसके हफ्ता भर पहले से
1: जी
0: थोड़े चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लोटिंग और चिड़चिड़ापन रहने लगता है। तो इस कंडीशन में एक तो आपको अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा नमक की चीज़ें ना खाएं,
1: जी
0: दूसरा बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, तीसरा हल्का खाना खाएं, और जीवन शैली को और दिनचर्या को थोड़ा बदल सकते हैं अपने आप को दूसरी और अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके। आपको गाने सुनने हैं तो गाने सुन के, जैसे आप डांस करना चाहते हो डांस करके, या अगर जो आपको लगता है कि मेरे को एक्सरसाइज करके अच्छा लगता है, तो बेसिकली आपको थोड़ा वो टाइम अवॉइड करना चाहिए।
1: डॉक्टर प्रियंका जी, आप गाने सुनने की बात कर रही हैं, लेकिन इसी देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर महिलाओं को घर से बाहर किसी एकांत जगह पर पीरियड्स के दौरान छोड़ दिया जाता है। कितना सुरक्षित है उनके लिए ये?
0: इतना एडवांस हो गया है वैसे देश हमारा कि काफी जगह, मतलब अब बहुत कुछ लोग जानते हैं
1: जी
0: मासिक धर्म के बारे में, इसके स्वच्छता के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में। पर हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ जगहें अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, जहाँ पर कि अभी भी औरतों को किचन में नहीं जाने देते, बाहर रखते हैं, घर से बाहर कुछ जगह बना देते हैं कि यहाँ रहेंगे, तो वो गलत है। स्पेशली मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर जो आप एक कमरे में एक फीमेल को रख दें मेंस्ट्रुअल डेज में, तो
1: जी
0: उसका हाइजीन आपने नहीं मेंटेन किया, क्योंकि वो बाकी 25 दिन तो बंद पड़ा था, वो 5 दिन खुला है, उसमें कितनी उन्होंने हाइजीन रखा कुछ नहीं पता, नहाने का क्या साधन है, साफ करने के लिए क्या सामान है, उसको पैड्स की जरूरत पड़ रही है तो कौन उसको लाके देगा, किसी ने टाइम से नहीं दिया तो उसको इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाएंगे,
1: जी
0: तो ये गलत एक धारणा है।
1: डॉक्टर प्रियंका जी, छोटी बच्चियों को लेके क्या कहेंगी, क्योंकि उनको पता नहीं होता जब पीरियड्स उनके पहली पहली बार आ रहे होते हैं, तो किस तरह से वो अपनी केयर करें?
0: देखिए, छोटी बच्चियों के लिए मैं यही कहूंगी कि सबसे पहला टीचर जो हमें भगवान देता है वो हमारी माँ होती है। तो हर माँ को अपनी लड़की को जब वो 11 से 12 साल की उम्र में आ जाए, तो
1: जी
0: उसको जरूर बताना है कि पीरियड्स क्या होते हैं और ये कितने नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई टैबू नहीं है। सबसे पहले माँ को समझाना है।
1: जी
0: दूसरा, जो हमारा गुरु, जो हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स को बेसिकली एक करिकुलम में, वैसे ये सब में एनरोल्ड है, सारे NCERTs में और CBSE ICSE सब बोर्ड्स में इसके लिए चैप्टर्स होते हैं,
1: जी
0: पर फिर भी टीचर्स को एक 5th 6th क्लास की लड़कियों को हमेशा, मुझे लगता है कि 4-6 महीने में एक क्लास करके जरूर बताना चाहिए मेंस्ट्रुएशन क्या होता है और उसका हाइजीन कैसे रख सकते हैं।
1: डॉक्टर प्रियंका जी, कार्यक्रम के समापन में हमारे श्रोताओं से, खास तौर से जो छोटी बच्चियां और महिलाएं, क्या कहेंगी मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर?
0: स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो आप नहीं रखते हैं तो बहुत सारे इन्फेक्शंस जो कि बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकते हैं, भले ही वो उस समय छोटी बीमारियां लगती है स्टार्टिंग में, जैसे कि वजाइनल इन्फेक्शन, UTI, और पर आगे जब वो लंबे टाइम तक परसिस्ट करती हैं तो वो बड़ी बीमारियों का रूप भी ले सकते हैं, जैसे कि बांझपन जिसे हम कहते हैं। और दूसरा, अगर जो हम लंबे टाइम तक किसी को इन्फेक्शन रहता है, जैसे मैंने अभी बीच में भी बताया कि वो HPV वायरस को कंटेन करके रखता है जो कि सर्वाइकल कैंसर को कोज कर सकता है। तो मतलब एक छोटी सी चीज जो हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसे ना ठीक करने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो कृपया सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बच्चे, जो माएं हैं वो अपने बच्चों के मासिक धर्म स्वच्छता को लेके बहुत सजग रहें, उनको सिखाएं, खान पान अच्छे से बताएं, उनको जो एक्सरसाइजेस है इस टाइम पे वो अच्छे से बताएं, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये समझाएं ये बीमारी नहीं है, इसको अच्छे से हम सबको अपने दिनचर्या में ढाल लेना चाहिए।
1: डॉक्टर प्रियंका चौहान गर्ग जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आप सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत अब आप सुनेंगे सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर के गाए गीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है अमर प्रेम। संगीतकार हैं RD बर्मन और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: अरे आनंद बाबू, आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ
1: गाओ।

0: Akashvani at 90.
1: FM 107.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अनाड़ी। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और गीतकार हजरत जयपुरी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य

0: एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
1: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी, आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
2: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
1: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने

0: के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
7: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
6: Highlighting the role of MSMEs in strengthening global supply chains, Mr. Goyal said that the government has initiated coordinated efforts to support technology upgradation and skill development for MSMEs. The minister said that the government is also adopting an area-based approach to industrial development through the Bhavya scheme aimed at creating 100 new industrial parks across the country. Mr. Goyal said that the country's GDP growth forecast was upgraded from 6.4% to 6.5% despite challenges such as the Ukraine conflict and the West Asia crisis. He said this reflects country's capability, decisive leadership and growing confidence in engaging with the world as a reliable and favoured investment destination. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization FAO Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honour is a symbol of the growing prestige of New India. He said the world looks upon India's policies, leadership and humanitarian vision with respect. He said that this award is a living testament to the country's hard-working farmers.
8: Yesterday, the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, honored the Prime Minister with the Agricola Medal. This has filled every Indian with the pride and raised the nation's stature. The FAO has recognized Prime Minister Modi's efforts towards eliminating hunger, reducing poverty, ensuring food security and increasing productivity in the agriculture sector. These are truly unprecedented and remarkable achievements.
6: Railway Minister Ashwini Vaishnav today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents have been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the security review meeting focused on strengthening intelligence gathering mechanisms from the field through an improved reporting system. Emphasis was also laid on enhancing technology-driven security systems, expanding CCTV coverage across the railway network, and improving operational security. The meeting also highlighted strengthening cyber security, upgrading camera specifications, and deploying AI-based surveillance and monitoring systems. The government today reassured that India has sufficient supplies of crude petrol, diesel, natural gas, and LPG. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refineries are operating at optimum capacity to meet the demand.
9: We have a sufficient supply of crude oil, natural gas, petrol and diesel. Our refineries are operating at the optimum capacity to meet the country's demand. Furthermore, LPG production has been ramped up at the refineries with around 46 to 47,000 tons of LPG being produced in the country.
6: Ms. Sharma said steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes is stable, and in the last 3 days, delivery of 1 crore 34 lakh domestic LPG cylinders has been made, while the supply of commercial LPG remained 1 lakh 32,000 tons since the 1st of this month. Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, said they are continuously coordinating with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure the safety of seafarers and smooth maritime operations.
10: The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel or foreign flagged vessel with Indian crew has been reported in past 72 hours.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Director General of Health Services has issued an advisory regarding Ebola disease for passengers arriving from or transiting through affected countries. According to the advisory, travelers who have visited high-risk countries, including the Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan, and experiencing symptoms such as fever, headache, muscle pain, unexplained bleeding and vomiting, sore throat, have been urged to seek immediate medical attention.

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे जयदेव। फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे। गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने। गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: Akashwadi at 90.
1: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पाकीज़ा का। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। संगीत निर्देशन है गुलाम मोहम्मद का और शब्द रचना कैफी आजमी की।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी, वही सुकून वाली वाइब।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:49 हुए हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपके लिए लेके आए हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम तकदीर। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा है FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अंतिम गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अप्रैल फूल से। गीत को आवाजते हैं लता मंगेशकर ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी।

इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: Akashvani at 90.
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:06 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, मैं हूं आपकी उद्घोषिका, लेकर आई हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी फरमाइश। तो बस भेज दीजिए अपनी पसंद के गीत के बोल, साथ में फिल्म का नाम और अपना नाम व पता। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। इसी के साथ बढ़ते हैं पहले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है PS नवाकर, निर्मला, विशाल, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से। इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मलकापुर से श्रोता है नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा, सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। गाँव चौहलदा बागपत से श्रोता है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गांव जाखोद राजस्थान से फरमाइश लिख भेजी है शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशा और पूजा परिहार। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म अनपढ़ से इस गीत की।

जो लिसनर्स हमसे भी अभी जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे, कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश, और आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं 7088-000-731 पर। बढ़ते हैं अगले गीत की फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी और इशिका तेजल ने। जवाहरनगर दुर्ग से श्रोता हैं आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांवड़े। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। गांव नथाना पंजाब से फरमाइश लिख भेजी है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक। नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल खान, अनम अब्बासी, यशव सिकंदर, मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। मारहरा दलवारा एटा से ही इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। पद्मा टॉकीज निपानगर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। सहारनपुर से श्रोता हैं सैयद मसूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौशर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से।

FM 106.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 10:23 हुए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसकी फरमाइश हमें लिख भेजी है। श्रोता है राहुल देहरादून से, साथ ही फरमाइश लिख भेजी है शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से दीपक कुरहाड़े, वंदना आशीष और कल्पना कुरहाड़े ने। करणवीर हाउस भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह चौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सोमू, एकम, दमन।

और अभिजोत गुजरात गांधीग्राम से श्रोता हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी और सभी परिवारजन। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। रफत साहब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज। मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। गांव जाखोद राजस्थान से फरमाइश करता है शंभोदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, निरम गुड़िया और शोएब खान। साथी फरमाइश लिख भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल दिशानी और निमित आहूजा। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना ग्राम व पोस्ट लदावली से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मनोज जेठवा, हर्षा और अविरा बोरव के नगर श्रीरामपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि, नीलम, शारदा, कुसुम और रूपा इलाहाबादी। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। रमेश चंद्र चौहान, हार्दिक, सेक्टर 5, कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश कुबरखेड़े, शिवसागर इंद्राबाई, छकुलीताई, खांडवी बुलढाणा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े और सुनैना। दिल्ली छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म शागिर्द से इस गीत की।

ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र।

नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दसे दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ए दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गज।

इस तन्हाई में ऐ हसी इतनी दूरी भली नहीं। आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का मेरे हाथों तो मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा, जा।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 10:32 हुए हैं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश बढ़ते हैं श्रोताओं अगले गीत की फरमाइश की ओर जिसकी फरमाइश करता है ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित वयाल प्रथमेश प्रणाली सरवत सानवी और कल्पना साथी फरमाइश लिख भेजी है मजनू कटीला से कमल मधु सागर उमंग मलिक आकांक्षा और माही मलिक ने चंडीगढ़ से श्रोता हैं सतीश अनेजा विमला अनेजा सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्य मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक विनोदपुरी और जयपाल यादव अनारकली बाजार जगराव से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत और रोजस चंडीगढ़ से शेफाली सैफी डेविस विमला और सतीश अनेजा इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं समशुल कमर राही शाहिन फातिमा अदनान फैजान अनु उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी गंजुंडवारा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल कुमार विनीत कुमार और सोनम वर्मा अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी रजिया बेगम मोहम्मद शादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवाना प्रवीण और अब्दुल्ला आजाद मुकेश भट्ट नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश भट्ट कनेरा मोहल्ला पटियाला से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म अंजाम से इस गीत की

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, अगला गीत सुनना चाहा है हिल्स रोड जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार और वसुधा वज्रसेन ने। ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, ससरानी और हिना कौसर बिजनौर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से जरीफ अंसारी, नयम अंसारी, अमीर, मुन्ना, नसीम, कमल पाठक, सुनील, दीपिका मल्होत्रा, गव्य, सुच्चा सिंह, विनोद पुरी और इनके सभी साथी। अनारकली बाजार जगराव से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नगमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। इसके साथ ही फरमाइश लिख भेजी है अधिकारी निवास मिलन विहार GMS रोड से राजेश्वरी सागर, उत्तम कुमार दिल्ली से कमला बोधराज, भानु खोरवाल और गीतिका खोरवाल, गुलरे सिद्दीकी, शादमानी सिद्दीकी, अनम हसन सिद्दीकी, गांव सापला, खत्री देवबंद सहारनपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा। आदर्श नगर मलौर पंजाब से श्रोता हैं राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा, रियासत हुसैन, नगमा बेगम जसपुर उत्तराखंड से, शेरकोट बिजनौर से नदीम, कलीम, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म पड़ोसन से इस गीत की।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अगले गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके ने। दिलीप रामेकर, हर्षा अक्षय, रुद्रा रुचिका रामेकर राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, भूषण खेड़ा और विशु खेड़ा फजिल का पंजाब से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं अधिकारी निवास मिलन विहार जीएमएस रोड देहरादून से आकाश। साथ ही फरमाइश लिख भेजी है छोटे अंसारी, फैजल अंसारी और शहनवाज अंसारी संभल से। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू लवली, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील, आरफा, इल्मा, एस असलम सैफी, जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, आमिर हुसैन, तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल, अरहान और इनके परिवार के सभी सदस्य। पटियाली रोड गंजुनवारा से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। इसके अलावा जिनकी फरमाइश हम तक पहुंची है श्रोता हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अंसारी, मोहम्मद आयन अंसारी, उस्मान अंसारी, यासीन, शमशुल कमर राही गंजुनवारा से, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, जॉन डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अंतिम फरमाइश की ओर, जो हमें लिख भेजी है जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर, सरोजबाई ठाकुर, पप्पू ठाकुर और ईश्वर राज ठाकुर ने। साथ ही फरमाइश लिख भेजी

है शब्बीर हुसैन शहजाद मुजबाबा सब्जी मंडी बुलढाणा से, उत्तर प्रदेश से फरमाइश लिख भेजी है नदीम ने, साथ ही फरमाइश लिख भेजी है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत ने। शेरवानी स्कूल गंजुनवारा उत्तर प्रदेश से आफताब रियाज मोहम्मद, लुबना और आलिया, सैयद आलम हाशमी गुलनास, नास पैलेस अजमेर शरीफ से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूड़ी, प्रमोद कुमार दूड़ी और पुष्पेंद्र कुमार दूड़ी, आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, सादिक अली खान और सारिज, कस्बा अग्रवाल, मंडी टटीरी बागपत उत्तर प्रदेश से, फातिमा सोगरा, दिलशाद हुसैन, वकार हैदर और हसीना दिलशाद उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से इन्होंने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। और हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से इस गीत की।

0: इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64

और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals in Kuala Lumpur today. She will next face 8th seed Line Hoymar Kjelsfark of Denmark. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 14.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सेवा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सेवा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी।